मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल ट्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है।

0: गिरिबाला ट्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

हम भारतवासियों के मन में अविरल बहता राष्ट्र प्रेम ही वास्तव में राष्ट्र है, जिसकी पावन भूमि हमें माता तुल्य है, जहाँ की मिट्टी हमारे मस्तक का तिलक है, जिसका गौरव हमारा बल है और जिसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करना हमारा संकल्प और

आंख दृष्टि का पर्याय है, कान श्रवण का। हमारी सभी इंद्रियां अपने मूल स्वरूप से कहीं ज्यादा जरूरी हैं उसके मूल कर्म से जुड़कर। ठीक इसी तरह मन मात्र माया नहीं, भाव का पर्याय है। ये भाव जितने निश्चल और सहज होंगे, जीवन उतना

कृपा दया वो भाव हैं जो परहित के पर्याय हैं। जिस कृपा के हम अभिलाषी हैं उसका एक अंश मात्र भी हमारे जीवन की लय बदल सकता है। ये कृपा सिर्फ ईश्वरीय चमत्कार से नहीं होती, कभी कभी हमें दूसरों की सहायता, सेवा और सद्भाव से भी मिलती है।

कहते हैं अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, रोशनी की, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। मन के, भाव के, विचार के अंधेरे को कर्म और कर्तव्य के प्रकाश से जगमगाया जा सकता है। सद्भाव, सद्विचार और सत्संग से उजियारा फैल सकता है।

लगातार कोशिश, निरंतर प्रयास सुफल तक पहुंचते ही है। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। हमारी हर चाह संकल्पों से सज कोशिश की राह बढ़ती है तो परिणाम सुनिश्चित है। फिर वो उस परम शक्ति को पाने का ही क्यों न हो।

0: आज की वंदना आपने सुनी हरिओम शरण, गोपाल सुखदेव, कौशेंद्र राघवेंद्र शर्मा, उषा अमोनकर और कल्याण चौधरी के स्वर में। आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है।

0: आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: कवि श्री राग तेलंग,
6: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है, इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
7: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, स्वर ए हरिहरन और साथियों का है, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

जगत के समस्त जीव मनह रोग से ग्रस्त हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज करुड़, सभी जीव हर्ष, विषाद, भय, प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त हैं, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में यह रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाएं तो मिट जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मनह रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। अब समय है आज के चिंतन का। आलेख डॉक्टर TN शुक्ल का है।
1: श्रद्धा लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरक शक्ति है, जिससे मानव आराध्य बन सकता है। श्रद्धा सभ्य शक्ति के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। अतः कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, अर्थात शक्ति या देवी दुर्गा सब जीवों में श्रद्धा के रूप में निवास करती है। ऋग्वेद में श्रद्धा को अग्नि प्रज्वलित करने वाली सौभाग्य प्रदायिनी तथा अभीष्ट वस्तु प्राप्त कराने वाली बताया गया है। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में भी श्रद्धा को सम्मान के साथ स्मरण किया गया है। उसे श्री, मेधा, वाक, सूर्या, सावित्री तथा सुमेधा के साथ ऋषिका कहा गया है। श्रद्धा का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। श्रद्धा हृदय की सत्ता के रूप में प्रयुक्त होती है। श्रद्धा सुमेधा का प्रतीक है। श्रद्धा

0: ऐश्वर्य के साथ साथ सावित्री का प्रतीक है। श्रद्धा ऋचा के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। श्रद्धा शब्द का प्रयोग समिधा के रूप में भी होता है। गुरु के पास शिष्य खाली हाथ नहीं अपितु समर्पित होकर समिधा लेकर जाता है। सर्वनियंता द्रव्य का भूखा नहीं, क्योंकि सारा संसार उसी का है। अतः ऋग्वेद में कहा गया है कि श्रद्धया विन्दते वसु, अर्थात श्रद्धा से धन प्राप्त होता है। ईश्वर का सारा धन उसकी पूजा के लिए है। श्रद्धा का प्रयोग निष्ठा के अर्थ में भी किया जाता है। प्रथमतः श्रद्धा आंतरिक रूप में होती है, तदनंतर व्यवहार से वह बाह्य विश्व में प्रकाशित होती है। श्रद्धा हृदय में उत्पन्न होकर क्रिया को प्रेरित करती है, अतः उसका आंतरिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर भक्त के लिए हृदय में श्रद्धा का उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही भक्ति को गतिमान बनाती है। श्रद्धा के द्वारा ही भक्ति का वैभव प्राप्त होता है। हृदय के पुष्प की सुगंध श्रद्धा में निहित है। ध्रुव को ईश्वरत्व की प्राप्ति, प्रहलाद को आस्तिकता की प्राप्ति इसी श्रद्धा के कारण हुई, जिससे दोनों ही विघ्नों के अंबारों को हटाकर चरम लक्ष्य तक पहुंच सके। ध्रुव की विमाता तथा प्रहलाद की बुआ होलिका विघ्न के अंबारों की प्रतीक है, जिन्हें साधकों की श्रद्धा ने पल भर में छूमंतर कर उन्हें ईश्वरत्व की प्राप्ति करवाई। अंततः सत्य की विजय हुई और श्रद्धा के साथ ऋचा गूंजने लगी, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है। श्रद्धा आत्मोत्कर्ष के लिए ही नहीं अपितु लोक मंगल के लिए भी होती है। हनुमान की श्रद्धा में उन्हें राम का अनन्य भक्त बना दिया। श्रद्धा ने ही अर्जुन को लक्ष्य भेद में सफलता दिलाई। श्रद्धा के कारण ही एकलव्य ने लक्ष्य भेद के क्षेत्र में कीर्तिमान विस्थापित किया। श्रद्धा से आपूरित मन सुपरिवर्तन का प्रेरक है, जिससे कठिन से कठिन कार्य सहज साध्य हो सकता है। श्रद्धा की चेतना का अभाव अनर्थ का प्रेरक है। श्रद्धा दो रूपों में देखने को मिलती है, विवेक से प्रेरित सच्ची और सजग श्रद्धा, दूसरी अविवेक से प्रेरित अंधश्रद्धा जो अर्थहीन होती है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधक अंधश्रद्धा मन को भ्रमित करती है। ऋग्वेद की ऋचा के अनुसार ईश्वर ही लोक तथा ज्ञान का उत्पादक है, जिसे श्रद्धा युक्त होकर ही प्राप्त किया जा सकता है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। वार्ताकार हैं डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। वार्ता का विषय है कृषि उद्यमिता से आय।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे कृषि उद्यमिता से आय के बारे में। कृषि उद्यमिता क्या है? कृषि उद्यमिता जैसे पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर कृषि आधारित गतिविधियों को व्यवसाय के रूप में अपनाना है, जिसमें आप बहुत सारी गतिविधियां जैसे कि वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग जैसे कार्य को शामिल कर सकते हैं। आप कैसे ये कृषि उद्यमिता पारंपरिक खेती से अलग है, ये हम जानेंगे कि कैसे आप अपने उत्पाद को रूपांतरित करके, फसल को रूपांतरित करके एक उत्पाद बना सकते हैं और उसको अपनी मनचाही कीमतों पर बेच सकते हैं बाजार से, जिससे आपको लाभ कमा सकते हैं। और कृषि उद्यमिता में कैसे आप, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं, जैसे दूध एवं डेयरी उत्पाद, फसल प्रसंस्करण, फल उत्पाद जैसे कि जैम, अचार, मुरब्बा, डेयरी, प्यूरी, ये सब आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप जैविक खेती कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, जैविक कीटनाशक बना सकते हैं, ये सब एक क्षेत्र हैं, ये इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां आप कृषि उद्यमी बन सकते हैं। आप जैसे कि कृषि विपणन में कौन कौन से आजकल नए

0: नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, ई कॉमर्स हो गया, या फिर और भी ऐसे स्थान जहाँ पे आप अपना उत्पाद को सीधे ग्राहक तक पहुँचा सकते हैं, या आपकी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो जाती हैं। आपको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, पर उन चुनौतियों से हम कैसे उभरेंगे, हम उनका क्या समाधान दे सकते हैं, ये हम कृषि उद्यमिता में बताएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये कैसे कार्य करते हैं, इनकी क्या क्या प्रक्रिया होती हैं, ये सब कृषि उद्यमिता में हम समझकर अपने कृषि उद्यमिता को आगे बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी अपने व्यवसाय को, खेती व्यवसाय को एक अच्छे आय सृजन का स्रोत बना सकते हैं। जैसे उसमें आप एग्री स्टार्टअप करना चाहते हैं, एग्री स्टार्टअप में क्या क्या कि आप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, या आप आपूर्ति श्रृंखला बना रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला मीन्स है एक ऐसा नेटवर्क या एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपको उत्पाद बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, और वहाँ पे प्रसंस्करण भी कर रहे हैं, और सारी सारी ये जो चीज़ें हैं वो एक जगह पर आपको उपलब्ध हो रही हैं। आप औषधीय पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि हमारे जो श्रीराम रोचन जी हैं, उन्होंने बरसीम की खेती करके जबलपुर में 393 लाख की आय कमाई। तो ये सब क्या है, कृषि उद्यमिता की एक उदाहरण है, जिनके आप प्रेरणा उनसे ले सकते हैं कि कैसे हम एक कृषि उद्यमी बन सकते हैं। और इसमें आपकी भूमिका क्या क्या है, युवाओं की भूमिका क्या है, कि आजकल के युवा तकनीकी जानकारी रखते हैं, उनके अंदर बहुत ऊर्जा और नवाचारों की सोच होती है। जैसे कि अगर वो मोबाइल ऐप और जो ड्रोन टेक्निक्स आ रही हैं आजकल, स्मार्ट सिंचाई जो हो रही है, उन तरीकों को अगर वो खेती में यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो वो उसको एक आधुनिक खेती बना सकते हैं। अगर युवा कृषि को स्टार्टअप की तरह नहीं ले, केवल उनकी आय बढ़ाने के लिए देखे, तो उसकी आय तो बढ़ेगी और वो बेरोजगारों को भी रोजगार प्रदान करा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कृषि उद्यमिता क्या है, किसानों को एक आत्मनिर्भर बनाने का क्या है, सशक्त माध्यम है, जिसमें आप आधुनिक तकनीक, शासकीय सहायता और नवाचार के साथ यदि किसान कदम मिलाकर चले तो आय सृजन के नए द्वार खोल सकते हैं। आज की कृषि चर्चा में इतना ही, नमस्कार।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
7: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मंचस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्री मोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृहसहकारितामन्त्री अमितशाहः पुनरेकदा अवैधप्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमासुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे 40,30,00,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकासपरियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्रीशाहः पश्चिमबङ्गालसर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमासुरक्षाबलाय

0: षट्शत हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनी ओलंपिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां, विशेषतः महिलानां, निर्धनानां, बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरणसञ्चलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवम् उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशद्दिनाङ्कपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरलराज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेङ्गलूरुनगरे आर्ट् आफ् लिविङ्ग् फौण्डेशन् इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशद्वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विकसमारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय BDT अभियान्त्रिकी महाविद्यालयस्य प्लेटिनम जुबली इति महारजतजयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 36-अधिक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्णबहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तरपश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपयक्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, IPL क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्तिचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर

0: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अलविदा बशीर बद्र साहब। बशीर साहब की पत्नी डॉक्टर राहत बद्र से पूर्व में ली गई बातचीत के अंश आप इस कार्यक्रम में सुन सकेंगे। साथ ही आपको सुनवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस पर पर्वतारोही श्री भगवान सिंह से एक मुलाकात। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एवं ग्रीन बिल्डिंग के संबंध में युवा आर्किटेक्ट सुश्री अदिति काशिव से चर्चा होगी। साथ ही समाजसेवी और पर्यावरणविद श्री विनोद कुमार तिवारी से राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार 2026 पर चर्चा हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सुरमई सवेरा। 9:15 पर गांधी चर्चा का प्रसारण होगा। 9:30 पर फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे। रोजाना की तरह जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे। महिला कार्यक्रम का प्रसारण

सुबह 10:05 पर होगा। आज आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला सुनवाया जाएगा। आज सुनिएगा पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन, राग होगा चारुकेशी। दिन में 11:00 सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण होगा। दिन में 12:00 2:30 पर और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से सुना जा सकेगा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे धारावाहिक सिसकियां की तीसरी कड़ी। दिन में 1:00 महिला संसार, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, शाम 5:02 पर युवा साथियों का अपना कार्यक्रम होगा युववाणी। इन चारों कार्यक्रमों में प्रस्तुति आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की होगी। दिन में 2:00 शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और रात्रि 9:45 पर फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा, जिसमें आज का आकर्षण है आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में। खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 9:30 पर होगा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी, जिसमें आज आप सुनेंगे पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन, राग होगा भाव कौस। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही पलों में होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजाति समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजाति समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के दा नांग में आयोजित 2026 अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्रीस्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते। उन्होंने बताया कि पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने 4 स्वर्ण पदकों सहित 9 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, जो कि चैंपियनशिप के इतिहास में देश के अब तक के सर्वाधिक पदक हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि महिला कुश्ती दल ने भी 6 स्वर्ण पदकों के सहित 10 पदक जीतकर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मास्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ हैं या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए हॉर्मुज जल डबरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। मध्य प्रदेश ने देश भर में किसानों से सर्वाधिक गेहूं खरीदने का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 13,46,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 1,03,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके साथ ही राज्य ने जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान हासिल किया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश में 2,00,000 से अधिक जल संरचनाओं पर काम किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं खरीदी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि
1: देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का कार्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। 13,46,000 से ज्यादा किसानों ने जिनका पंजीयन हुआ था उनके माध्यम से 1,03,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी हमारे द्वारा की गई। ये पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य द्वारा किसानों से सर्वाधिक खरीदी का हमारा अपना रिकॉर्ड है, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को हमने तोड़कर बनाया।
0: भोपाल में त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरबाला सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई की मुख्य सूचना अधिकारी ने बताया कि भोपाल स्थित घर में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ और जांच के बाद सीबीआई ने गिरबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत बुधवार 27 मई को रद्द कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और जाँच की स्थिति को देखते हुए उन्हें राहत देना उचित नहीं था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी, मितव्ययिता और सुशासन के मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में एक नई कार्य संस्कृति स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा प्रशासनिक खर्चों में संयम और संसाधनों के संतुलित उपयोग को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल अपने काफिले में वाहनों की संख्या को सीमित करते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक ही बस में सवार होकर इंदौर से उज्जैन तक की यात्रा की। इस दौरान सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्था के लिए केवल 3 अन्य वाहन ही साथ रहे। विदिशा जिले की सशक्त वाहिनी युवनी शिवानी रघुवंशी की सूझबूझ और संवेदनशीलता के चलते एक सराहनीय पहल हुई है। बिहार में अपने घर से भटककर विदिशा पहुंचकर इधर उधर घूम रही एक मासूम बच्ची को देखकर शिवानी ने तत्काल जिला प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद मासूम को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया गया। गौरतलब है कि विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता के द्वारा सशक्त वाहिनी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सजग बनाया जा रहा है। अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 12वीं पास और न्यूनतम 18 वर्ष की युवतियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर पुलिस भर्ती के लिए तैयार किया जाता है, जिसके तहत बालिकाओं को प्रतिदिन 2 घंटे की निःशुल्क लिखित कोचिंग और पुलिस लाइन में 1 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के साथ पोषण आहार भी प्रदान किया जाता है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान जबलपुर में सबसे तेज 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। प्रदेश में

अधिकतम तापमान खजुराहो और नौगांव में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजगढ़, रीवा और दतिया सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। आज ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कलां, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और भिंड जिलों में तीव्र लू के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की और वज्रपात का अलर्ट है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और गुना सहित अन्य जिलों में लू और गर्म रात का असर बना रह सकता है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक 31 मई को नवीन मांगलिक भवन में आयोजित की जाएगी। शिवपुरी जिले में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण एवं वितरण शिविर का आयोजन 31 मई तक किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में रात्रिकालीन कैंप लगाकर वन पट्टाधारी किसानों को ई विकास प्रणाली में पंजीयन किया जा रहा है। धार जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ऐतिहासिक मुंज सागर तालाब में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SDERF, होमगार्ड और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने तालाब परिसर से कचरा और खरपतवार हटाकर स्वच्छता का संकल्प लिया। डिंडौरी जिले में किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण देने के लिए 30 जून तक किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर जिले में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने NHAI के निर्माणाधीन इंदौर राघवगढ़ सड़क का निरीक्षण किया। भोपाल में नगर निगम के द्वारा स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 91 स्थानों से पानी के नमूने लेकर जाँच करवाई जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो आज और कल मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। और पन्ना जिले के देवेंद्र नगर रेंज के अंतर्गत जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई माँ और बेटी भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गईं। वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। पेश है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है सभी श्रोताओं का आज कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं जूही राव। श्रोताओं, वैश्विक स्तर पर शांति सद्भावना सभी देशों में हो, ये सुनिश्चित करने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक प्रयास करते रहते हैं। आज 29 मई के दिन को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये दिवस उन शांति सैनिकों को समर्पित भी है जो कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हो गए। 7 दशक

दशकों से भी अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने दुनिया की सबसे नाजुक स्थितियों में भी नागरिकों का जीवन बचाने और बदलने का काम किया है, और इस कार्य को वे लगातार करते रहेंगे। इस दिवस को शांति सैनिकों के सम्मान, उनके समर्थन और प्रोत्साहन करने के लिए घोषित किया गया है। ये दिवस वैश्विक रूप से समुदायों में शांति सैनिकों के कार्यों और उनके योगदान को बताता है और उनके प्रति जागरूकता भी फैलाता है। शांति सैनिकों में विभिन्न देशों के महिला और पुरुष अपनी सेवाएं देते हैं और विश्व शांति के लिए, सद्भावना के लिए बिना किसी भेदभाव के कार्य करते हैं। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं आज के दिन, और ये उम्मीद करते हैं कि विश्व में सभी ओर शांति की और सद्भावना की स्थिति रहे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आपको बता दें आज के समाचार पत्रों से कुछ मुख्य समाचार और उपयोगी जानकारियां। श्रोताओं, भोपाल शहर के लिए एक दुखद खबर है जिसे सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आधुनिक उर्दू शायरी की सबसे प्रभावशाली आवाज़ बशीर बद्र साहब का 91 वर्ष की उम्र में इंतकाल, जिंदगी की शाम हो गई। उर्दू शायरी को आम लोगों की ज़ुबान तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र साहब का गुरुवार दोपहर 12:35 बजे

निधन हुआ उनके निवास पर। वे लंबे समय से बीमार थे और डिमेंशिया के शिकार भी थे। उन्होंने लंबे समय से मुशायरों में भाग लेना बंद कर दिया था। वे पद्मश्री और साहित्य अकादमी जैसे सम्मानों से नवाजे गए थे। बशीर साहब के निधन से साहित्य जगत और शायरी जगत में शोक की लहर है। इसी खबर के साथ में एक अन्य अखबार लिखता है, उन्होंने 18,000 से ज़्यादा शेर लिखे, पुलिस की नौकरी की, प्रोफेसर भी रहे, पर शायरी से इश्क बरकरार रहा। नहीं रहे मोहब्बत का पैगाम बांटने वाले शायर बशीर बद्र, लोगों की जुबान पर हैं बशीर साहब के शेर। उर्दू साहित्य की सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री व साहित्य अकादमी जैसे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया।

0: श्रोताओं कुछ अन्य खबरों में। हम आपको बताना चाहेंगे आज होने जा रहे आयोजनों के बारे में। इस समय सदानीरा का आयोजन भारत भवन में किया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें सांगीतिक प्रस्तुतियाँ भी हैं, नृत्य नाटिका भी है, जिन्हें आप देख सकते हैं भारत भवन में जाकर। श्रोताओं, जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, कुछ समय पूर्व बशीर साहब के जन्मदिवस यानी 15 फरवरी को हमने उनकी पत्नी डॉक्टर राहत बद्र से उनके समक्ष बातचीत की थी। चूंकि बशीर साहब बोल पाने में असमर्थ हो गए थे, इस वजह से उनकी पत्नी ने ही उनकी शायरी आप तक पहुंचाई थी। उस बातचीत के कुछ अंश हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं।
1: तो उनके चाहने वाले उनकी आवाज़ में गज़लें सुनना ज़्यादा पसंद करते थे, तरन्नुम में बहुत पसंद करते थे उनको। और उनके शेरों की खूबी ये थी कि वो आसान लफ्ज़ों में बहुत बड़े मानी की बात कह देते थे। और हर तरह के अशआर उन्होंने लिखे हैं, मोहब्बत पे ज़्यादा लिखे हैं। खुलूस और मोहब्बत होना चाहिए इंसान के अंदर। उनका इस उस पर एक शेर है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। और इसी तरह मोहब्बत पे एक शेर है कि मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है, कभी इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। ये कहा है कि मेरे बाप दादा कोई शायर नहीं थे, तो उसके लिए इन्होंने कहा था कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जब से इन्होंने शायरी शुरू की और उसके बाद आगे बढ़ते चले गए, तो उस वक्त एक ये शेर इन्होंने कहा था कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ परेशानियाँ दुश्वारियाँ आती हैं, तो उससे इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये बशीर साहब की एक हमेशा से वो रही कोशिश कि उन्होंने किसी भी परेशानी को अपने ऊपर नहीं लिया, अपने दिल और दिमाग में नहीं आने दिया, और हर परेशानी को उन्होंने ये समझा कि ये सब ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं, ये वक्ती होती हैं और आगे निकल जाते हैं हम।
0: क्या ऐसा कोई शेर या ऐसी कोई गज़ल है जो कि बशीर साहब और आप दोनों पर ही उन्होंने लिखी हो?
1: जी, ऐसी एक गज़ल है जिसके 2-4 शेर मैं आपको सुना देती हूँ कि चंदा सूरज जैसी जोड़ी हम दोनों, दिन का राजा रात की रानी हम दोनों, और एक दूजे से मिलकर पूरे होते हैं, आधी आधी एक कहानी हम दोनों। तो इस तरह की वो एक लंबी गज़ल है जिसके शेर हम दोनों की रदीफ पे वो ख़त्म होते हैं। और एक और शेर कहा था कि वो धूप के छप्पर हों के छाँव की

0: दीवारें अब जो भी उठाएंगे मिलजुल के उठाएंगे। बशीर साहब का एक बहुत उनका मशहूर शेर है वो भी, कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो।
1: ये कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि इसी बात को ध्यान में रखें और स्वस्थ रहें।
0: जी जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इनका एक शेर जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और सबको बहुत पसंद आता है वो है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
2: नमस्कार, मैं सुलेखा भट्ट, शास्त्रीय गायिका।
3: नमस्कार, मैं प्रवीण शिवलिकर, वायलिन वादक।
4: मैं डॉक्टर लता सिंह मुंशी, नृत्यांगना एवं गुरु भरतनाट्यम।
5: नमस्कार जी, मेरा नाम अखिलेश गुंदेचा है, मैं पखावज वादक हूँ।
6: आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
2: आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
4: नमस्कार भोपाल के सभी श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाइयां, नमस्ते।
5: नमस्कार भोपाल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं।
1: श्रोताओं, आपको कुछ और जानकारियां हम देना चाहेंगे। खेल जगत से जुड़ी हुई नॉर्वे शतरंज प्रागन नंदा ने नंबर वन कार्लसन को हराया। ग्रैंड मास्टर भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रागन नंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। मॉनसून में देरी, 3 या 4 जून तक केरल आएगा, 5 दिन से 35 किलोमीटर दूर अटका, 6 माह में समुद्री तापमान जितना बढ़ा, दावा 100 साल में सबसे ज़्यादा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पूनम 42 के अंतर्गत कल पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन का आयोजन होगा और संगत में रचनात्मक संवाद का आयोजन किया जाएगा छतनारा आर्ट होम में। ये थी कुछ जानकारियां आज के समाचार पत्रों से।

0: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। हमने बातचीत की है आज के दिन पर्वतारोही श्री भगवान सिंह से, उनके अनुभव जाने और किस तरह की चुनौतियाँ आई उनके समक्ष ये भी हमने जाना। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
1: जय हिंद, मेरा नाम भगवान सिंह है। मैं एमपी फर्स्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइमर हूँ और करीब 20 साल से मैं पहाड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। एवरेस्ट चढ़ने से मैंने करीब 75 नेशनल लेवल पर ट्रैकिंग करी। मेरा पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूरा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख मैंने ट्रैकिंग में निकाला हुआ है। और उसके बाद मैं 19 मई 2016 को मैंने अपने देश का, प्रदेश का झंडा टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वही सबसे ऊँची छोटी माउंट एवरेस्ट पर फहराया।
0: 2025 में आप साइकिल से पहुंचे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, ये किस तरह से आपने किया और इसके बारे में किस तरह से सोचा आपने?
1: एवरेस्ट गेम 5364 मीटर पे है। जब मैंने पता करा था कि वहाँ तक साइकिल से कोई नहीं गया, मैंने कहा मैं इसको कोशिश करूँगा। और वहाँ साइकिल से पहुँचने वाला 52 साल की उम्र में मैं दुनिया का सबसे पहला बना। वहाँ पे कोई रास्ते नहीं है, पूरा बर्फ़ और पत्थर है। तो 15 किलो की साइकिल और 12 किलो का मेरा बैग मैंने पीठ पे टांग के एक दिन में 8-9 घंटे चढ़ाई करना, ऐसे 12 दिन में मैंने क्लाइम करके और एवरेस्ट बेस कैंप पे साइकिल से पहुंचने वाला मैं पहला बना।
0: सर आपने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं तो उनके बारे में भी बताएं।
1: बर्ड की सबसे ऊंची सड़क पहले खारडुंगला थी, वहाँ मैं एमपी से पहुंचने वाला लगातार 3 साल, 2016 में एवरेस्ट क्लाइम करा, 17, 18, 19 3 साल साइकिल से पहुंचने वाला मैं पहला था। उसके बाद बर्ड की दूसरी सड़क उमिंगला, वो भी हमारे इंडिया में, वो 19 फीट की ऊंचाई पे है। जब मेरे को उसके बारे में मालूम पड़ा, वहाँ मैं साइकिल से पहुंचने वाला दुनिया का पहला बना। और मैं हर साल एक रिकॉर्ड अपने दिमाग में रखता हूँ और पता करता हूँ एमपी से जहाँ कोई नहीं पहुंचा हो, और जिनकी मेरा एक एवरेस्ट हो गया। हर साल जो मेरा टारगेट रहता है, जो मुझे सोने नहीं देता, और मैं करते करते आज 2016 से 2025 तक हर साल मेरा एक रिकॉर्ड बन गया है।
0: सर इस वर्ष का क्या टारगेट रहेगा आपका?
1: 2026 का भी मेरा टारगेट है, मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ।

0: हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। ये जानना चाहेंगे कि माउंटेनियरिंग करने के लिए किस तरह की फिटनेस की आवश्यकता होती है।
1: एडवेंचर गेम 50% पावर और 50% आपकी विल पावर। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप किसी भी चोटी के लिए, किसी भी पहाड़ के लिए, किसी भी एडवेंचर चीज़ के लिए आप तैयार रह सकते हैं। अगर और गेम आप इंडोर हॉल में खेलते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम भी कोई आप गलती करते हैं, फाउल करते हैं, तो आपको रेफरी कार्ड दिखा के बाहर निकाल देता है। मगर ये एडवेंचर गेम, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, आइस क्लाइंबिंग, यहाँ पर अगर आप गलती करते तो आपकी सीधी जान जाती है। मैं भी एवरेस्ट गया था, मेरे 8 लोग थे, 8 में हम 5 ही पहुँचे थे, हमारे 3 लोग मर गए थे। तो एडवेंचर जब तक प्रॉपर दिमाग से और अपने फिजिकल से तैयार देंगे, अगर आप सोच ले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।
0: सर, माउंटेनियरिंग करते हुए खास तौर से जब आप एवरेस्ट पे क्लाइंब किया आपने और जब आप अभी साइकिल पर बेस कैंप तक पहुंचे हैं, तो क्या चुनौतियां आई हैं आपके सामने?
1: मेरा जो भी टारगेट होता है मैं उसके 3 जीने बनाता हूँ। उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए फंड इकट्ठा करना, और उसके लिए ना अपनी तैयारी के साथ साथ कि क्या क्या दिक्कतें मेरे को आएंगी। तो फिजिकल तो साइसिक गेम में बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए मैं एवरेस्ट जाने से पहले जो रनिंग करता था, आज दौड़ते दौड़ते इंडिया के अंदर मेरी 129 मैराथन हो गई, जो मैं

0: तक पहुंचे हैं, तो क्या चुनौतियां आई हैं आपके सामने?
1: मेरा जो भी टारगेट होता है मैं उसके 3 जीने बनाता हूँ। उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए फंड इकट्ठा करना, और उसके लिए ना अपनी जो तैयारी के साथ साथ कि क्या क्या दिक्कतें मेरे को आएंगी। तो फिजिकल तो साइंसिक गेम में बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए मैं एवरेस्ट जाने से पहले जो रनिंग करता था, आज दौड़ते दौड़ते इंडिया के अंदर मेरी 129 मैराथन हो गई। जो मैं साइकिल फिजिकल पावर के लिए करता था, आज साइकिल से मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। तो अगर आप एक ही टारगेट को लेकर आगे बढ़ाते जाएं, और तो आप अपने आप ही अंदर खुद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और एक दो क्लाइम करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि हाँ मैं बड़ी क्लाइम कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ऊपर खुद पावर पर विश्वास होनी चाहिए।
0: एवरेस्ट के बारे में आप क्या खास बातें बताना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को?
1: इस साल माउंट एवरेस्ट 427 लोग गए हुए हैं। हमारे टाइम पे से आप ओनली 170 से लोग जाते थे, अब वो इतना ज्यादा क्राउड होता जा रहा है, इतना ज्यादा भीड़ हो रहा है। हमारे टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी, आज हेलीकॉप्टर से भी लोग भाग जा रहे हैं। मेरे एवरेस्ट जाने से पहले मेरे को एमपी से बताने वाला कोई नहीं था। उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल भी नहीं थे, और सबसे बड़ी उसकी आर्थिक चुनौती, उसके लिए पैसे इकट्ठे करना। मैंने 9 साल इंतजार करा। आजकल के बच्चे 1 साल इंतजार नहीं कर सकते। मैंने शादी नहीं करी, मैंने घर छोड़ा, बस एक ही टारगेट, एक ही चीज सपना कि मध्य प्रदेश को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचाना है। तो आजकल के लोगों को तो फैसिलिटी है, मजे की जो शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं वो एक ही साल में सक्सेस होना चाह रहे हैं। कोशिश अच्छी से करें, तैयारी अच्छी से करें, किसी चीज की नकल ना करें। आजकल की युवा पीढ़ी को बताऊंगा कि देखिए मोबाइल तो आज भी हो कल भी रहेगा, मगर अपनी जिंदगी का जो डेली एक एक दिन कम होता जा रहा है वो वापस नहीं आने वाला। किसी को सफलता 2 महीने में मिलती है, किसी को सफलता 2 साल में मिलती है, मगर मिलती जरूर है। आप अपने टारगेट को अपने दिमाग में रखिए, कोशिश करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
0: सर, माउंट एवरेस्ट जब इतने सारे माउंटेनियर्स जाते हैं वहाँ, तो क्या उस पे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है?
1: बिल्कुल सही बात है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, इस बार 400 लोग भी जा रहे हैं, मगर उनको गाइडलाइंस की आप जो भी खाते पीते हैं वो अपना कचरा आपको नीचे लेके आना है, मगर गंदगी तो फिर भी होती है। मगर ये कि हाँ उसे अब दिन पे दिन ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। हम एवरेस्ट बेस कैंप पे गए थे, तब -10 टेम्परेचर स्टार्ट हुआ था, और टॉप तक पे -52 डिग्री टेम्परेचर था। इस साल का मैंने बेस कैंप देखा था, वहाँ पे बर्फ बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे इतने टेंट, इतने पर्यटक लोग जा रहे हैं कि धीरे धीरे वो ओरिजिनलिटी खत्म होती जा रही है।
0: तो सर, जो सुनने वाले हैं और जो माउंटेनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं युवा, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे रेडियो के जरिए?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि साहसिक खेल हमें विषम परिस्थितियों में रहना और करना सिखाते हैं, और नेचुरलिटी से जोड़ते हैं। हमारी भी अपने देश के प्रदेश के लिए जिम्मेदारियां हैं। अगर नेचुरलिटी बचा के रखना है, बर्फ़ पानी पहाड़, तो हम जहां भी जाएं, चाहे पिकनिक मनाने जाएं, घूमने जाएं, ट्रैकिंग करने जाएं, मगर हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें। आप जो भी खाए पिए अपना कचरा खुद लेके आएं और नीचे ला कर डस्टबिन में डालें, और इस चीज़ के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें।
0: सर, आप यहाँ मध्य प्रदेश खेल अकादमी में पोस्टेड हैं, तो आप किस तरह से समय निकाल पाते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको माउंटेनियरिंग में हेल्प करती है?
1: जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी से भी मेरे को सुनने को मिलती है, मैं जहाँ भी लेक्चर देने में आता हूँ वो कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ भगवान ने वही 12 घंटे आपको दिए, वही 12 घंटे हमको दिए। हम भी सुबह 5 से 10 बजे तक जॉब करते हैं, शाम को 4 से 7 बजे तक बाटा स्पोर्ट पर मैं जॉब करता हूँ। उसके बीच में मेरे को जो टाइम मिलता है उसमें अपनी मैं 50 किलोमीटर साइकिल, 1 घंटा जिम या रनिंग करके आता हूँ। शाम को 7:30 बजे डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 50 किलोमीटर साइकिल करता हूँ। तो जिनके टारगेट होते हैं उनके एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती होता है, और वो अपने टारगेट लिए कहीं ना कहीं से समय निकाल ही लेते हैं।
0: आपने से अपने अनुभव शेयर किए और बताया किस तरह से माउंटेनियरिंग करनी चाहिए, अपनी फिटनेस बनाए रखनी चाहिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद। बस एक आखिरी लाइन बोलेंगे, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी बोल के गए हैं कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने सच करने के लिए नींद नहीं आती। और वही लाइन में फॉलो करता हूँ और अपने नए नए टारगेट पूरे करता हूँ।
0: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थे पर्वतारोही श्री भगवान सिंह, बता रहे थे अपने टारगेट्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, किस तरह से वो अपनी फिटनेस मेंटेन करते हैं।

0: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को इस बार मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के जैव शिक्षक, समाजसेवी और पर्यावरणविद श्री विनोद कुमार तिवारी को राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित एक समारोह में वर्ष 2025 के लिए अशासकीय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। हमने उनसे बातचीत की और जाना वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए।
1: ये जो राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार 2025 के लिए जो प्राप्त हुआ, इसके लिए ये केवल एक ही दिन की काम नहीं होता है, ये अपितु मैंने लगभग 30 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए हम लोगों ने 3 वर्ष करके मेहनत करके सारे यूथ को जोड़कर और एक बड़ा लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज पर्यावरणीय गतिविधि से जो पहले जुड़े थे, वो आज भी कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पे बेहतर पर्यावरण हितैषी के रूप में काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने लंबे समय से जैसे पचमढ़ी या अमरकंटक या अन्य कोई ऐसे स्थल जो पर्यटन स्थल है या बायोडाइवर्सिटी के पर्पज से बहुत अच्छे वहाँ पे संभावनाएं हैं या अचानक मार्ग या तमाम, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत लंबे समय से बच्चों के कैंप लगाए हैं, छोटे छोटे बच्चों के, आदिवासी अंचल के बच्चों के कैंप लगाए हैं। जैसे पातालकोट के जो बच्चे हैं वहाँ के, तामिया के, छिंदवाड़ा के आसपास के जितने भी ग्रामीण अंचल, इन बच्चों को वहाँ पे हमने लेके 3-3 दिन का नेचर सिटी कैंप है, उनको पर्यावरण गतिविधि से जोड़ने का प्रयास किया है। ये उसी का प्रतिफल है। इसका ही नहीं, अभी जो WWF के साथ मैंने जुड़े थे लंबे समय से, हम लोगों ने इस तरीके से काम भी किया है कि जो छोटे छोटे लेवल पे जो होते हैं, जो जागरूकता वाले कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कपड़े के थैले बांटना, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना या लोगों को रासायनिक खाद का उपयोग ना हो, इसके लिए हम लोगों ने जागरूक किया है। तो ये बहुत छोटे छोटे स्तर के काम उस समय से शुरू किए और मेरा स्वभाव था कि मैं लंबे समय से जितने भी जिले में इको क्लब है उसमें मैं जुड़ा रहा, मैं उसके जिला प्रभारी के रूप में था और मैंने सारे इको क्लब के जो बच्चे वो हमारे लिए पर्यावरण हितैषी सैनिक के रूप में काम करते, तो उनके स्कूलों में, सारे सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में हम लोगों ने बहुत सारे औषधि प्रौद्योगिकी वाटिका का निर्माण करवाया, उन बच्चों को आगे रखा, उन बच्चों के साथ हम लोगों ने कोशिश की कि हम केवल कम बताए वो ज्यादा समझे, इस तरीके से कुछ ऐसे भावनात्मक काम करके उन सभी बच्चों को पर्यावरण हितैषी बनाने का पूरा काम किया। विगत 15 वर्षों से मैं जो हमारा मध्य प्रदेश शासन का राज मोगली बाल महोत्सव होता है वो अधिकतम जो हुआ है वो है पेज नेशनल पार्क में, तो मैंने पेज नेशनल पार्क में और मंडला के पास जो खाना नेशनल पार्क है, इनमें दोनों में मैंने अपनी सेवाएं दी है। 15 सालों से हम लोग लगातार सहजकर्ता के रूप में मैं जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है इनके माध्यम से मैं वहाँ पे हर साल जाता हूँ और इन बच्चों को पर्यावरणीय गतिविधियां, जैव विविधता की बारीकियां और इनसे बहुत सारे इनके खेल ये हमें सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे पूरे प्रदेश के जो बच्चे वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ आगे आ पाए। विद्युत संरक्षण के लिए हम लोगों ने वर्ष में एक दिन होता है, उसमें हमने सांकेतिक रूप से ये भी लोगों को बताने का काम किया है कि इस तरीके से विद्युत के जिसके उपकरण उसका कम से कम उपयोग हो, जिससे कि हमारी विद्युत संरक्षण भी बच सके। तो इस

0: चारों पांचों दिशाओं में जो काम किया गया उसी का परिणाम है कि ये जो पुरस्कार है ये मिल पाया है।
1: बच्चों के साथ में जो आप काम करते हैं तो इससे क्या ज्यादा जागरूकता फैलती है?
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम जब ये काम करते हैं उसके बाद जब बच्चे अपने अपने घरों में जाते हैं, चाहे वो मुगली उत्सव के बाद लौट के अपने घरों में जाए हैं या इस तरीके से, तो उसमें बहुत सारी चीजें उनकी पर्यावरणीय गतिविधियां नजरिया बदल जाता है। मैं चरावाड़ा का एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। एक स्कूल है यहाँ पे कैंडी स्कूल, जिसमें हमने कुछ पर्यावरण जागरूकता के संबंधित कुछ कार्यक्रम किए सेवंथ एट के बच्चे थे। उनके पड़ोस में एक बिल्ली कुएं में गिर गई, वो 3 घंटे लगातार परेशान रहे, फोन लगाया, रेस्क्यू करवाया, जब कहीं जाके उनकी ये जो छोटी छोटी सी जागरूकता वाला काम है ना, ये उनके दिलो दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो वो हमेशा के लिए वो पर्यावरण हितैषी हो जाएंगे। और उन्होंने स्नेक का भी एक बहुत अच्छा काम हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं लंबे समय से। स्नेक में जो सांप है उसकी प्रजाति भी बचे और साथ में लोगों की जान भी बचे, उसके लिए हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। वो बच्चों के लिए बहुत कारगर हुआ। वो जब कभी ऐसा कुछ होता है तो वो संबंधित नंबर पे तुरंत कॉल करते हैं, अगर कहीं कुछ हुआ, कोई बर्ड छोटी सी गिर गई अगर कहीं नीचे, तो वो उसको भी उठा के पानी पिलाने का प्रयास करते हैं कि चलिए हम इसका संरक्षण करेंगे। अभी बच्चों ने इसी सब चीजों से प्रेरित होकर अपने अपने घरों में आर्टिफिशियल बर्ड हाउस बना लिए हैं अलग अलग तरीके से, तो पक्षियों को कैसे संरक्षित करें उसके लिए भी वो बच्चे प्रयास करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें अब दिखने लगी है और ये अच्छी बात है कि हम जितने ज्यादा ज्यादा, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे आम जनों, जितने भी ज्यादा हम लोग अगर पर्यावरण के संरक्षण के लिए उसके हितैषी के रूप में काम कर पाएंगे, उतनी हमारी वसुंधरा ये सुरक्षित होगी।
1: सर, आप रेडियो के जरिए जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें जैव विविधता को किस तरह से समझाना चाहेंगे?
0: मैं आम जनों से अनुरोध भी करना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ये देखिए जैव विविधता में जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, तमाम चीजें आती है। जो विलुप्त हो रही चीजें उसे बचाने का पूरा प्रयास करें। आज के समय में सारी चीजें, धान की वेरायटी बहुत सारी चीजें, चावल, इनको सबको बचाने का प्रयास करें। बहुत सारे फ्लावर हैं उनको बचाने का प्रयास करें, बहुत सारे हमारे बर्ड्स है उसको बचाने का प्रयास करें। तो जो बायोडाइवर्सिटी बहुत ब्रॉड है, चाहे आंखों से दिख पाए चाहे न दिख पाए, जितनी भी चीजें इन सबको संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए हम सबका योगदान होना चाहिए। हमारा नजरिया बदलना चाहिए और सतत हमारा जो जीवन शैली है उसमें हम ये अगर अपना लेंगे कि हम जैव विविधता को बचाने के लिए अगर आगे आएंगे तो हम जैव विविधता को समझ भी पाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने सरल शब्दों में हमारे सुनने वालों को बताया जैव विविधता संरक्षण कैसे किया जा सकता है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कार्य आप कर रहे हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थे श्री विनोद कुमार तिवारी, जिन्हें इस वर्ष का राज्य स्तरीय जैव विविधता संरक्षण का पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2025 अशासकीय सेवा के लिए। तो आप भी अगर अपने आसपास की धरा को, पर्यावरण को जैव विविधता संरक्षण को करें तो बहुत अच्छा होगा।

मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हमारे घर भी इस तरह के बन रहे हैं जिनमें गर्मी ज़्यादा देर तक रहती है, तो क्या किया जाए आज हम जानेंगे। हमारे साथ में आज कार्यक्रम में मौजूद हैं आर्किटेक्ट जिन्होंने सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में मास्टर्स किया है। हमारे साथ में हैं

0: अदिति काशिप, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्ते सभी को। आज हम लोग बात करेंगे कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, एक ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, और हम लोगों को जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हैं, ऊर्जा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम किस तरीके से कम बिल्डिंग सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं।
0: तो जिस फील्ड में आपने किया है अपना मास्टर्स, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, उस चीज़ को आप इस समय किस तरह से प्रैक्टिकल उसमें लेकर के आ रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे।
1: जी, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि हम किस तरीके से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम कितना ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम पे, ताकि वो ख़त्म ना हो आगे जाके, और फ्यूचर जनरेशन्स को हम क्या दें। तो एक सेंसिटिव आर्किटेक्ट होने के नाते इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा कि कैसे हम नेचर को बचाएं और किस तरीके से अपना ही काम, क्योंकि हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो हम इस तरीके से बनाएं कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, इस पर्पस से इस सब्जेक्ट में जाने का ज़्यादा रुचि रही।
0: जानना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों की ओर से कि जैसे आजकल कई कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं जहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं या फिर डुप्लेक्सेस बन रहे हैं या प्लॉट्स हुए, तो उनमें किस तरह का कंस्ट्रक्शन या किस तरह का आप उन्हें सजेशन देंगे, क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए?
1: बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम ज़मीन देख रहे हैं जहाँ पे हमको ये चीज़ें बना रहे हैं लोग, तो वहाँ पे पेड़ पौधे कितने हैं, तो हमको कितने बचा के रखने हैं, कितने काटने हैं, और अगर हम काट रहे हैं तो किस तरीके से हम उनको नई जगह लगा के उस कॉलोनी को हरा भरा कर रहे हैं या उस जगह को पूरा ग्रीन बना रहे हैं। एक बेसिक चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन है या बिल्डिंग का जो लोकेशन है वो क्या रहेगा, तो हमको इस पे दिशाओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस क्लाइमेट में हम रह रहे हैं, कि जैसे हम भोपाल में हैं तो हम कॉम्पोजिट क्लाइमेट में कहलाते हैं, तो यहाँ पे हमको गर्मी जो है वो अवॉइड करनी होती है और ठंड के टाइम पे हमें थोड़ी धूप चाहिए होती है, तो उस टाइप से हमको ओरिएंटेशन करना रहता है हमारी बिल्डिंग्स का। कोशिश ये रहती है कि हमारी जो बिल्डिंग की लॉन्ग एक्सेस है वो नॉर्थ साउथ की तरफ फेस करें, ईस्ट और वेस्ट की तरफ थोड़ी कम ओपनिंग्स हो हमारी। उसके बाद हम लोग को ये ध्यान में रखना होता है कि इसके साथ साथ हम कूलिंग और कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्रॉस वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग फिर विंड एनालिसिस करेंगे, तो हमारे एरिया में हमारे क्लाइमेट में किस डायरेक्शन से जो हवा की तीव्रता है किस तरफ से ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम ब्लॉक ना करें, तो क्रॉस वेंटिलेशन उस तरीके से बना रहे। तो हो सकता है कि जो हम अपार्टमेंट्स बना रहे हैं उसमें जो ब्लॉक्स हैं उसके बीच में गैप्स हो, एक कोर्टयार्ड हो सकता है, तो उस तरीके की चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो आजकल सीमेंट भी अलग टाइप की बनने लगी हैं जो इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है उसमें। मटेरियल्स अगर हम लोकली अवेलेबल यूज़ करें, जैसे कि हमारे पास स्टोन्स हैं तो हम स्टोन की नींव भी बना सकते हैं, पत्थर की नींव भी बना सकते हैं, प्लस हम जैसे ईंट यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम भट्टी से निकली हुई ईंटें जो बर्न ब्रिक्स कहलाती हैं, रेड ब्रिक्स कहलाती हैं, तो उसको हम अभी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं कि मिनिमम हम सीमेंट यूज़ करें और मैक्सिमम जो है वो इस टाइप की, या तो हम मड ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, AAC ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे साउंड और हीट इंसुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो मटेरियल्स बन रहे हैं इसमें जो कार्बन एमिशन है वो कम किया ही जा रहा है, मतलब ये सब रिसाइकल्ड मटेरियल से बन रहे हैं। तो AAC ब्लॉक से एक तो लाइट वेट रहेगा, तो आपका बिल्डिंग का जो लोड है वो कम से कम रहेगा, तो अर्थक्वेक्स के टाइम या ऐसी सब उसमें हम बच सकते हैं, प्लस हमारा इंटरनल जो टेम्परेचर है वो आपका कोशिश करेंगे अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो कम से कम हम 4 से 5 डिग्री कम कर सकते हैं, प्लस हमारा जो रूफ़ है सबसे ज़्यादा हीट गेन हमारी छतों से होती है, तो छतों पे हम या तो हम रिफ्लेक्टिव टाइल्स जो होती हैं या मोजाइक टाइल्स कहलाती है, कूल रूफ पेंट होता है जिससे कि हम 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर कम कर सकते हैं उसको यूज़ कर से।
0: जो घर पहले से बने हुए हैं अगर उनमें टेम्परेचर लोग कम करवाना चाहें, उन्हें क्या चीज़ें उसमें चेंजेस करने होंगे?
1: टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा राइज होता जा रहा है दिन पे दिन, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे घर हैं उसमें नेचुरल वेंटिलेशन बनाए रखें, तो हम कोशिश ये करें कि रात में और अर्ली मॉर्निंग हमारी खिड़कियाँ खुली रखें ताकि एक एयर फ्लो बना रहे, तो उससे क्या होगा कि जो हॉट एयर होगी वो बाहर रिलीज़ हो जाती है रात में। प्लस अगर आप डे टाइम में हैं तो खस के पर्दे हम ज़रूर लगा सकते हैं, बैम्बू के पर्दे लगा सकते हैं, जिसमें आप पानी कुछ कुछ टाइम में छिड़कते रहेंगे तो जो गर्म हवा होगी वो आपको ठंडी होकर अंदर मिलेगी। एग्जॉस्ट फैंस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, तो उससे ये होगा कि जो हॉट एयर है वो ऊपर उठती है, नेचुरल साइंस जो कहता है। उसके बाद

0: छोटी छोटी जाली टाइप की ओपनिंग्स हम दे सकते हैं, अगर आपके यहाँ बालकनीज है, वरांडाज हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगा आपके अंदर रूम्स को ठंडा रखने में। और अगर बालकनी से डायरेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि हीट आ रही है, तो उसमें आप जाली वगैरह लगा सकते, छोटी छोटी ओपनिंग्स दे सकते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली ठंडा रखेंगे। जो आपकी खिड़कियां हैं, अगर मान लीजिए वो वेस्ट और साउथ की तरफ हैं, तो आपको छज्जे देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल फैंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके सामने आप एक बाउल रख सकते हैं आइस से भरा हुआ, तो इवेपोरेटिव कूलिंग बोलते हैं इसको बेसिकली। तो जो फैन है उससे हवा आएगी आपके आइस के थ्रू, ठंडी होते हुए आप तक पहुँचेगी। अगर आप एसी भी यूज़ कर रहे हैं, तो एसी का टेम्परेचर आप 24 डिग्री तक मेंटेन रखें। अगर आपका रूफ़ बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है सन के, उसमें तो हम रूफ़ गार्डन की बात करते हैं, उसमें प्रॉपर हम ड्रिप इरिगेशन वगैरह सिस्टम लगा के, आजकल नेचुरल प्रोडक्ट सारे मिल रहे हैं, तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे
1: क्या प्लांटेशन करने से कुछ टेम्परेचर कम होता है अगर हम घर के अंदर या बाहर करते हैं?
0: जी बिल्कुल, एक जैसे अगर हम घर के अंदर की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे इंडोर प्लांट्स के ऑप्शन हैं आज के टाइम पे। आउटडोर की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि साउथ और वेस्ट की तरफ से हीट बहुत ज़्यादा आएगी हमारे क्लाइमेट में, तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ऐसे सीजनल ट्रीज लगाएं जो अभी के टाइम पे उसमें अच्छी ग्रोथ रहती है, तो वो उससे ऑटोमेटिकली एक बैरियर बनता है। हमारे यहाँ इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम्स हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स को सर्टिफाई करते हैं। बेसिकली वो एनालाइज करते हैं कि हमारा जो बिल्ड स्ट्रक्चर है, वो एक पूरी लाइफ उसकी जो चलेगी, उसमें हमको कितना फ़ायदा दे रहा है, कितना कम एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, कितना हम पानी बचा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं उस लेवल पे।
1: आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थी युवा आर्किटेक्ट सुश्री अदिति काशिफ।

0: श्रोताओं, इसी के साथ में आज का नमस्कार भोपाल समाप्त होता है। आगे दीजिए जूही राव को नमस्कार।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक

0: चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
0: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों

0: बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law

श्रोताओं, रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। जी हाँ, हमारे कितने जन्मों के सफल जो सार्थक होते हैं उसके बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। तो हमें ये मनुष्य का जीवन जो मिला है उस जीवन को किस तरह से सार्थक करना चाहिए, कभी आपने सोचा है? सोचा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक रिवीजन करते हैं, कुछ याद कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो अपने लिए तो हर कोई जीता है। अगर हमारे जीवन का एक क्षण भी किसी दूसरे के काम आ जाए, हमारा किया हुआ कोई ऐसा काम जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ले आए, तो इससे बड़ी सार्थकता जीवन की कुछ नहीं हो सकती। तो हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, दूसरों की मदद करना है, प्रेम

बांटना है। जो काम आपको जीवन में मिला है, अगर हम उसे अच्छे से करते हैं तो ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होती है और यही हमारे जीवन की सार्थकता भी है दोस्तों।

का काम नहीं होता, और जो काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती। यानी जीवन में सुई और तलवार दोनों का महत्व है। हर एक चीज़ की महत्ता अपनी अपनी जगह पर होती है, तो किसी को घमंड नहीं करना चाहिए अपनी खूबी पर दोस्तों।

श्रोताओं, कहा गया है कि जीवन की सार्थकता प्रेम बांटने में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे हैं इसका हमें घमंड हो जाता है और यही घमंड, यही अहंकार हमारे जीवन की उन्नति में बाधा बन जाता है। भाई, किसी को किसी से कमतर समझना अच्छी बात नहीं है। अगर हम सोचें कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, तो ये तो गलत बात है। भाई, आप में ज़्यादा खूबियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दूसरे में खूबी ना हो। कहते हैं ना कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
2: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
2: देखा
1: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
1: फ्री वाईफाई है ना
2: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: सुरमई सवेरा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से श्रोताओं हमें इतना सुंदर जीवन मिला है तो क्यों ना इसे प्रेम में गुजारा जाए कहा गया है प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए राजा परजा

जहरुचे सीस दे ले जाए। तो भाई प्रेम की जब इतनी महत्ता है तो क्यों ना हम जिस भी रिश्ते में हों उस रिश्ते में स्नेह प्रेम और अपनापन बिखेरते रहें।

सुरमई सवेरा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, किसी ने कितनी सुंदर बात कही है। कहा गया है, सफलता के बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके बारे में चुप रहा जाए। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी सी सफलता पर इतना शोर मचा देते हैं कि वो सफलता जो है वो सफलता नहीं रह जाती, वो प्रचार बन जाता है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि शांति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कहा जाता है ना कि सफलता वही है जो दूसरे आपकी तारीफ में कहें, आपकी सफलता के बारे में बात करें, ना कि आप ही खुद अपने बारे में प्रचार करते रहें। भाई, प्रचार भी ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि दूसरा उससे परेशान ही हो जाए।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल पर सुरमई सवेरा का सफर जारी रहेगा इस घंटे की खास खबरों के बाद भी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। सादगी, मितव्ययिता और सुशासन के मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक ही बस में सवार होकर इंदौर से उज्जैन तक की यात्रा की। मध्य प्रदेश ने देशभर में किसानों से सर्वाधिक गेहूं खरीदने का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 13,46,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 1,03,00,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। भोपाल में तुषार शर्मा की मौत के मामले में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरबाला सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया। बहू की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। भोपाल में नगर निगम द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए 91 स्थानों से पानी के नमूने लेकर जांच करवाई जा रही है। महापौर और निगम आयुक्त के निर्देश पर अमले ने 27 पाइपलाइन लीकेज सुधारे हैं और हेल्पलाइन की 4 शिकायतों का निवारण किया है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। और आज ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कला, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया तथा भिंड जिलों में तीव्र लू के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। एक बार फिर लौटते हैं सुरमई सवेरा के सफर की ओर।

श्रोताओं, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। करना ये चाहिए कि हम जिस तरह अपने लिए जीते हैं, अपने लिए पानी पीते हैं, अपनों का ख्याल रखते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि किसी को भी पानी की कमी ना होने पाए। तो कुछ ऐसी कोशिश की जाए कि हमारे आसपास जो पौधे हैं, पंछी हैं, उनके लिए भी पानी का इंतज़ाम किया जाए। पौधों को सुबह सींचा जाए और शाम को अगर आप उन्हें पानी देंगे तो वो पानी उनके लिए नुकसानदायक होगा। इसी तरह आप पौधों के साथ साथ पंछियों के लिए आप पानी रखिए, उनके लिए दाना रखिए, ताकि उन पेड़ों पर जो पंछी बैठे हैं उनके लिए दाने और पानी का इंतज़ाम हो सके। इसी तरह अगर आप कोई सामान मंगवाते हैं, कोई डिलीवरी बॉय आता है, तो उससे भी एक बार ये ज़रूर पूछिए कि क्या आप पानी पिएंगे। अगर आपके यहाँ कोई हाउस हेल्प है, उससे भी आप पानी के बारे में बात करते रहें, उसको पानी पीने के लिए प्रेरित करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, प्यास लगी होने के बाद भी वो सोचते हैं कि पहले आपका काम कर दें, उसके बाद चैन से पानी पिएंगे। तो भाई, उनको भी आप 2 मिनट का आराम दीजिए, उन्हें पानी पूछिए, पानी पिलाइए, उसके बाद ही उन्हें काम करने दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपका ख्याल कोई ना कोई तो ज़रूर रखेगा ही। तो यही है जीवन की सार्थकता दोस्तों, कि ये कड़ी है, एक से दूसरी कड़ी, दूसरे से तीसरी कड़ी जुड़ी हुई है। कहते हैं ना कि अगर आप नेकी करते हैं तो घूम फिर कर वो नेकी आप तक पहुंचती ही है। तो नेकी समझकर ही सही आप पानी पिलाना एक धर्म समझिए, एक कर्तव्य समझिए, और इस गर्मी में किसी को भी अपने घर से प्यासा मत जाने दीजिए।

श्रोताओं, सुरमई सवेरा में चलते चलते आखिरी गीत सुनवाने से पहले हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस गर्मी में अपना ख्याल आप रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए, साथ ही उनका ख्याल रखिए जो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो आप खुद में जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी किसी और चीज़ में आपको नहीं मिल सकती।

0: इसी गीत के साथ सुरमई सवेरा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

अवज्ञा सविनय तभी मानी जा सकती है जब वो सच्चे हृदय से की जाए, आदर भाव लिए हो, संयमित हो, कभी उद्धत रूप ग्रहण न करे, सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित हो, स्वेच्छाचारिता के दोष से मुक्त हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पीछे कोई द्वेष या घृणा की भावना न हो। मेरी निश्चित राय है कि सविनय अवज्ञा वैधानिक आंदोलन का विशुद्धतम रूप है। हां, यदि उनका सविनय अर्थात अहिंसक रूप केवल क्षदमावरण है तो वो घटिया तथा तिरस्करणीय है। यदि अहिंसा पर पूरी ईमानदारी से दृढ़ रहा जाए तो उग्र से उग्र अवज्ञा भी हिंसा को नहीं भड़काएगी, अतः उसकी निंदा का अवसर ही नहीं आएगा। कोई बड़ा या तेज आंदोलन भरपूर जोखिम लिए बिना नहीं चलाया जा सकता, और बड़े बड़े जोखिमों से भरी ना हो तो जिंदगी जीने योग्य नहीं मानी जा सकती। क्या संसार का इतिहास ये नहीं बताता कि अगर जोखिम ना होता तो जिंदगी में कोई रोमांच ही ना होता। सविनय अवज्ञा नागरिक का जन्मजात अधिकार है। वो अपनी आदमियत को खोए बगैर इस अधिकार को छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। सविनय अवज्ञा से अराजकता कभी उत्पन्न नहीं होती, वह आपराधिक अवज्ञा से उत्पन्न हो सकती है। प्रत्येक राज्य आपराधिक अवज्ञा को बलपूर्वक कुचल देता है, यदि नहीं तो वो स्वयं नष्ट हो जाता है। सत्याग्रही

विवेकपूर्वक तथा स्वेच्छा से समाज के नियमों का पालन करता है, क्योंकि वो इसे अपना पवित्र कर्तव्य मानता है। समाज के नियमों का इस प्रकार पालन करने से ही वो ऐसी स्थिति में आ पाता है कि ये निर्णय कर सके कि कौन से नियम अच्छे तथा न्यायोचित हैं और कौन से अनुचित तथा अन्यायपूर्ण। तभी सुनिश्चित परिस्थितियों में किन्हीं नियमों की सविनय अवज्ञा करने का अधिकार उसे मिलता है। सविनय प्रतिरोध आंदोलन की पहली अपरिहार्य पूर्व शर्त यह है कि उसमें भाग लेने वालों या सामान्य जनता की ओर से हिंसा शुरू न किए जाने की पक्की गारंटी हो। हिंसा भड़क उठने पर यह कहना बेमानी होगा कि वो राज्य अथवा सविनय प्रतिरोधकारियों के विरुद्ध अन्य तत्वों द्वारा प्रेरित थे। ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि सविनय प्रतिरोध हिंसा के वातावरण में प्रगति नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सत्याग्रही के पास अब कोई उपाय शेष नहीं रहा, उसे सविनय अवज्ञा के अलावा अन्य उपाय ढूंढने होंगे। सत्याग्रह की खूबी यही है कि आदमी को इसकी कहीं बाहर जाकर खोज नहीं करनी पड़ती, वो उसके सामने खुद आखड़ा होता है। स्वयं सत्याग्रह के सिद्धांत में ही ये गुण अंतर्निहित है। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग, और अब प्रस्तुत है भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, वाचक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी।
1: ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने आपके लिए चुना है चांदनी फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और बाबला की है। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, संगीत शिव हरि का है।

ये गीत आपने सुना फिल्म थी आँखियों के झरोके से, आवाज़ हेमलता की थी, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है अनुराग, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत SD बर्मन का है।

0: चाइना टाउन फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख है नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। ग्वालियर जिले के लिए ये महीना मिला जुला रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर में राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन का शुभारंभ करने भी पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सभी को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़कर प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर में पशुओं के केयर एंड वेलनेस सेंटर खोलने, पशु स्वास्थ्य एवं उपचार केंद्र का उन्नयन करने और डबरा में नया पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के साथ अन्य अतिथिगणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ऋषि गालव विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार भूमि पूजन किया। गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण मध्य भारत शिक्षा समिति के द्वारा ग्वालियर जिले के बेला गांव के अंतर्गत लगभग 55 बीघा जमीन पर 110 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा से यहाँ शैक्षणिक सत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण विश्वविद्यालय 3 वर्ष में बनकर तैयार होगा। ग्वालियर जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय के द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने शहर में चल रहे जनगणना कार्य का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू दर्पण कॉलोनी में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तुस्थिति को जाना। गौरतलब है कि बीते 1 मई से शुरू हुई जनगणना का प्रथम चरण 30 मई तक चलेगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हाल ही में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया। इस श्रमदान कार्यक्रम के तहत लक्ष्मीगंज स्थित ऐतिहासिक मेहराब साहब की तलैया पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अगुवाई एवं कलेक्टर रुचिका चौहान की प्रेरणादायक मौजूदगी में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजनों ने एक साथ तलैया की सफाई में अपना योगदान दिया। ग्वालियर जिले में भी भूमि नामांतरण प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। इसके साथ ही इस व्यवस्था से नागरिक सुविधाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाया गया है। साइबर तहसील 2.0 वर्तमान में जिले की सभी तहसीलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। वहीं जिले के विकास खंड घाटी गांव की ग्राम पंचायत आरोन में जलगंगा संवर्धन अभियान एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 के तहत यहां बने कोलीझोरा तालाब ने यहां के 50 हेक्टेयर बंजर नुमा सूखे क्षेत्र के रकबे को उपजाऊ खेतों में बदल दिया है। अब इन खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें लहलहाने लगी हैं। ग्वालियर जिले में समर्थन मूल्य पर सुव्यवस्थित ढंग से गेहूं का उपार्जन जारी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 40 केंद्र संचालित हैं। 22 मई तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में 7,448 किसानों से 9,97,494 क्विंटल गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। बीते दिनों प्रदेश के जल संसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पेयजल प्रबंधन के साथ साथ जनहित के अनेक मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह अहलूवालिया ने संत योगी हुजूर मालिक साहब के जीवन पर आधारित पुस्तक दिव्य चरितामृत का विमोचन किया। आध्यात्म निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के भी उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता संत कृपाल सिंह ने की।

0: कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर हुए शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की नौकरी दिलाई जा रही है। जिले में वर्तमान में शक्ति दीदी के तहत पहले से ही 112 महिलाएं ये भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही हैं। पिछले दिनों ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने जायजा लिया। गौरतलब है कि गाय के गोबर से सीएनजी बायोगैस उत्पादन के क्षेत्र में यह प्रदेश के सबसे बड़े प्लांट में से एक है। आदर्श गौशाला लाल टिपारा ने गौवंश के प्रबंधन के साथ साथ गाय के गोबर व कचरे से वायु गैस उत्पादन कर देश प्रदेश के लिए अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्वालियर जिलेवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक फैसलों तथा सरकारी और जनहित से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी सीधे आपके मोबाइल फोन पर मिलेगी। कलेक्टर ने हाल ही में इससे संबंधित एक व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया है। ग्वालियर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख था नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।

0: नमस्कार सखियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला संसार और मैं आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा। और आज के लाइव फोन इन कार्यक्रम का विषय है अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए। घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की देखभाल, ऑफिस के काम और परिवार की चिंता, इन सब के बीच महिलाएं अक्सर खुद को ही भूल जाती हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुश रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार भी खुश रहेगा। तो आज हम बात करेंगे खुद के लिए समय निकालने की, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की, छोटे छोटे शौक अपनाने की और जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखने की। अगर आप भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहती हैं तो तुरंत फ़ोन मिलाइए। हमारे स्टूडियो नंबर 07552660902 पर और जुड़ जाइए महिला संसार के इस खास लाइव कार्यक्रम से। आइए देखें हमसे कौन जुड़ रहा है।
1: हेलो
0: मैम,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार जी,
1: मैं भावना यादव सूनी से बोल रही हूँ।
0: स्वागत है आपका बहुत बहुत। बताएं कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: मासूम फिल्म का लकड़ी की गाठी गाठी का घोड़ा।
0: मासूम फिल्म का लकड़ी की काठी जी, बहुत प्यारी चॉइस है आपकी। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएं आप क्या करती हैं? आप हाउस वाइफ हैं, तो अपने लिए समय कैसे निकालती हैं? जैसा कि आपने सुना होगा कि आज हमारे कार्यक्रम का विषय है कि खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, तो आप अपनी दिनचर्या में अपने लिए समय कैसे निकालती हैं?
1: मैडम मुझे तो लगता है कि जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठ काम करो, थोड़ा बच्चों की तरफ देखो, फिर उसके बाद अगर बच्चों के बाद समय मिलता है तो अपना समय निकालो आराम करने के।
0: आप अपने मनोरंजन के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैं मनोरंजन के लिए तो एफएम सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: ध्यान देती हूँ अपने।
0: चलिए बहुत बढ़िया है, आप अपना गाना एंजॉय कीजिए ऐसे ही अपने। जी जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।

0: टगबग टगबग टगबग
1: तो सखियों देखें हमारे साथ फोन के जरिए और कौन जुड़ चुका है।
2: हेलो
1: हेलो
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार जी, कैसे हैं आप, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं ठीक हूँ और मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ। आप बताएं सबसे पहले कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
2: मूवी का नाम है कौन है जो सपनों में आया।
1: मूवी का नाम है कौन है जो सपनों में आया, और इस मूवी का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
2: टाइटल ट्रैक।
1: टाइटल ट्रैक, अच्छा कोई और चॉइस हो तो वो भी बता दीजिए आपकी।
2: कोई और चॉइस, नाम गुम जाएगा मूवी का नाम है।
1: नाम गुम जाएगा मूवी का नाम है
2: जी।
1: और इसका कौन और सा गीत?
2: इसमें सॉन्ग है तेरी पलकें जो उठी वाला।
1: तेरी पलकें जो उठी। अच्छा, जब तक हम आपका गीत ढूंढते हैं आप बताएं आप क्या करती हैं?
2: मेरा बीएससी फाइनल हो गया है।
1: अच्छा अच्छा, बीएससी फाइनल हो गया है आपका
2: जी।
1: तो आप अपने लिए समय कैसे निकालती हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे कार्यक्रम का आज का विषय है खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, तो आप अपने मनोरंजन के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कितना समय निकाल पाती हैं और कैसे निकालती हैं?
2: सुबह सुबह तो हमें काम ही रहता है घर का, और फिर इसके अलावा आपका ये अभी देखो टाइम निकाल लिया ना प्रोग्राम सुनने का, ऐसे ही निकालते रहते हैं।
1: चलिए बहुत बढ़िया है, ऐसे ही आप समय निकालते रहिए हमारे लिए और अपने लिए भी, और एंजॉय कीजिए आपके पसंद का ये गीत।
2: और जो गाना आपने ढूंढा है वो रानू दीदी के लिए डेडिकेट रहेगा।

0: और देखें इस वक्त फोन पर हमारे साथ कौन मौजूद है। हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी,
1: नमस्ते। ठीक
0: कैसे हैं
1: है, आप कैसे हो? बस
0: जी? मैं बढ़िया हूँ, बताएं आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं तिवारी।
0: स्वागत है आपका बहुत बहुत। बताएं आप कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मूवी को साजन
0: फिर से रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा मूवी का नाम।
1: मूवी को, साजन मूवी को।
0: साजन मूवी का? जी, साजन मूवी का कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
1: तुमसे मिलने की तमन्ना
0: तुमसे मिलने की तमन्ना है जी। बताएं आप क्या करती हैं?
1: है। कुछ नहीं, घर में की काम करते हैं।
0: अरे नहीं ऐसा मत कहिए, आप घर का काम भी बहुत जिसको कहते हैं टाइम टेकिंग होता है, बहुत मेहनत लगती है घर का काम करने में भी। ऐसा मत बोलिए कि कुछ नहीं करते
1: अरे तो
0: आप
1: घर में
0: सब
1: जो काम
0: करती हैं
1: होते हैं
0: तभी
1: वो
0: सबके
1: आते
0: काम अच्छे से आराम से चल पाते हैं। और बताइए आपका क्या शौक है, क्या देखना क्या करना पसंद करती हैं खाली समय में?
1: कुछ नहीं।
0: कुछ नहीं। अच्छा चलिए, आपकी पसंद का गीत मिल गया है हमें, आप एंजॉय कीजिए अपने पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: तो आइए हमारे साथ एक और सखी जुड़ चुकी हैं, देखिए कौन।
1: हेलो हेलो मैम,
0: जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके घर में कोई महिला सदस्य हो तो कृपया फोन उन्हें दे दें।
1: जी मैम, प्रोग्राम चल रहा है। हेलो
0: क्योंकि ये हमारा एक महिला कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि कोई आपके घर में महिला सदस्य हो तो उन्हें आप फोन कृपया ट्रांसफर कर दें।
1: इस वक्त टाइम तो नहीं है मैम।
0: चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपने कॉल किया, नमस्कार।

0: और हमारे साथ फोन पर एक और सखी जुड़ रही हैं, चलिए इनसे भी बात करते हैं।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार जी।
1: हाँ
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी,
0: बताएं आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती से बात कर रही
0: हैं। कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: इंदौर से।
0: इंदौर से, स्वागत है आपका। जी बताएं आप कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फकीरा मूवी की।
0: फकीरा मूवी की कौन सी गीत सुनेंगी?
1: तोता मैना की कहानी।
0: तोता मैना की। आप अपने खाली वक्त में क्या करना पसंद करती हैं? आपकी थी क्या वक्त निकालती हैं आप? टीवी देखते हैं। अच्छा चलिए, आपके लिए ये गाना आपका जो पसंद का है मिल गया है, आप एंजॉय कीजिए अपना सॉन्ग। नमस्कार।

0: तो सखियों हमारे साथ फोन के जरिए जुड़ चुकी हैं हमारी एक और प्यारी सखी। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: नमस्कार जी, बताएं आप कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हाँ, मूवी का नाम है बोल राधा बोल।
0: बोल राधा बोल,
1: और उसी में एक सॉन्ग है, मैं हूँ गाँव की गोरी।
0: मैं हूँ गाँव की गोरी
1: जी।
0: अच्छा, कोई और ऑप्शन भी है आपके पास, कोई और गाना सुनना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल है, अगर ये ना मिले तो मैं दूसरा बता दूंगी।
0: अच्छा चलिए ठीक है, पहले ये ढूंढ लेते हैं। अच्छा बताइए रानू जी, आप क्या काम करती हैं, कैसे आप?
1: मैं हाउस मेकर हूँ।
0: बहुत बढ़िया, आप हाउस मेकर हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे आज का कार्यक्रम का विषय है अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए, तो कैसे समय निकालती हैं आप घर में अपने कामों के साथ पूरे जिम्मेदारियों को बैलेंस करते हुए, आप अपने लिए कैसे समय निकाल सकती हैं, थोड़ा बताएं
1: मैम। समय तो नहीं रहता, बट क्या है कि कोशिश कर लेते हैं कि जैसे कि थोड़ा, जैसे शॉप में रहती हूँ क्योंकि हमें, हमारे भी तो शौक है, हमारी भी तो लाइफ है, तो थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं। मतलब
0: क्या शौक है आपके, क्या क्या करना पसंद करती हैं?
1: देखिए, मुझे ड्राइविंग करना पसंद है और शॉपिंग करना तो हर महिला को पसंद है।
0: शॉपिंग करना। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करती हैं दिन भर की?
1: मैं मेरे स्वास्थ्य के लिए मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, सुबह अंकुरित अनाज लेती हूँ। हाँ, हमेशा से।
0: चलिए बहुत बढ़िया है।
1: शहद नींबू का पानी भी लेती हूँ, और ये सॉन्ग डेडिकेट आपको, नंदिनी को, रश्मि तिवारी को, और जिन जिन को आप कॉल लगा सकते हो।
0: चलिए आप अपना गाना एंजॉय कीजिए। नमस्कार।
1: ओके, नमस्ते मैम।

तो सखियों, आज के कार्यक्रम से हमने फिर से अपने आप को एहसास दिलाया कि दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी समय निकालना उतना ही ज़रूरी है। खुद से प्यार कीजिए, अपने स्वास्थ्य और खुशियों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही पूरे परिवार की ताकत है। आपके विचार हमारे लिए खास रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ दीजिए अनुमति आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा को। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला संसार। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन राग है चारुकेशी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन, राग था चारुकेशी। ये आकाशवाणी भोपाल है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान श्री अमित शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात भी करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन उन्होंने देहरादून में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सुदृढ़ीकरण, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। CBI ने त्रिशा शर्मा मौत मामले में उनकी सास गिरबाला सिंह को गिरफ्तार किया है।

0: गिरिबाला टुशा किसास और सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने करीब 7 घंटे तक उनके घर पर पूछताछ और तलाशी ली। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सतना और भिंड सहित प्रदेश के 10 जिलों में तीव्र लू के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां औरों के नाम करना भी जिंदगी है। सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है। अपनी खुदगर्जी पर गुरूर करके क्या साबित होगा, कभी औरों के दर्द को समझना भी जिंदगी है। इसी सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार के साथ आइए शुरू करते हैं आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। नमस्कार जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम संदलपुर से कार्य कर रहा हूँ। आपके आवाज कम आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है।
0: अच्छा, आवाज कम आ रही है, चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं, अब ठीक है।
1: हाँ बाबा भाई, बढ़िया
0: जी, बताइए।
1: मेरे को गाना सुनना है।
0: हाँ जी, किस फिल्म का गाना सुनना है और कौन सा गीत के बोल बताइए।
1: गाना लता की आवाज में, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: छोड़ दे सारी दुनिया, ठीक है।
1: हाँ, पुराने गाने पसंद है मेरे को
0: जी। आप क्या करते हैं?
1: मैं पान की खेती करता हूँ। देसी पान होता है हमारे गाँव में, संदल पर माधुरी पास गाँव मेरे ग्वाली के पास में।
0: जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी पसंद का गीत।
1: आप मैडम कौन बोल रही हैं?
0: जी मैं प्रियंका बात कर रही हूँ,
1: दोस्तों को नाम लेना चाहता हूँ, गाना सुनना चाह रहे हैं मेरे संग साथ में।
0: जी बिल्कुल, उनसे कहिए, फोन करेंगे तो हम बिल्कुल उनकी फरमाइश शामिल करेंगे।
1: नाम तो बोल देना, मैं नाम बता रहा हूँ
0: जी, दो नाम बता दीजिए जल्दी से।
1: मरार से गुड्डू मिश्रा, संतर मरार से।
0: हाँ जी,
1: गाना
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार
1: नमस्कार बहन जी।
0: जी। कौन बात कर रहे हैं बताइए, अपना नाम और अपनी पसंद भी बताइए।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: जी, मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। बताइए, कैसे हैं आप?
1: बस दीदी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ,
0: जी
1: और इस वर्ष से यही आशा करता हूँ कि हमारी दीदी भी ठीक है।
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं तभी हम इतने स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जी बताइए, दुआएं तो हमेशा काम करती ही हैं मांगीलाल जी, बताइए, है ना?
1: सही है, दुआ ही सबसे बड़ी बात है, दुआ बहुत बड़ी
0: जी,
1: चीज
0: एक
1: है।
0: बार दवा काम करना चाहे भूल जाए, लेकिन
1: भूल
0: दुआएं
1: जाए
0: कभी न
1: लेकिन दुआ नहीं
0: कभी,
1: भूलेगी,
0: जी,
1: दुआ
0: दुआएं कभी न कभी जरूर काम करती हैं।
1: सही है
0: जी
1: लेकिन इंसान को सच्चे दिल से देना चाहिए।
0: बिल्कुल, तभी तो वो, और वो जल्दी भी होती
1: हाँ
0: है, जो सच्चे दिल से दी जाती है वो बहुत
1: जी
0: जल्दी भी परिणाम देती है हमें।
1: जी सही है बहन
0: जी
1: जी।
0: मांगीलाल जी, बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: बहन जी, फिल्म का नाम तो है तलाश,
0: जी
1: आज क्या जुनिली आत्मा।
0: बहुत अच्छी पसंद है आपकी, बहुत
1: हाँ बहन जी, बढ़िया
0: पुरानी।
1: है पुराना गाना, और मैं भी आकाशवाणी भोपाल का बहुत पुराना और नियमित सोता हूँ।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: दमोह से कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम भी तो बताइए।
1: मल्थुराम केवलारी अहरवाल।
0: अच्छा जी, अब अपनी पसंद का गीत भी बता दीजिए।
1: सुना दीजिए, देख देख मेरे संसार की हालत।

0: क्या हो गई भगवान।
1: अच्छा, क्यों आप इतने निराश क्यों हैं?
0: हाँ मैं रास्ते जी सुनता हूँ सर, श्रीमान जी अच्छे अच्छे हाँ तो सुनता हूँ आकाशवाणी से, और
1: जी
0: आज से नहीं मैं 85 से सुनता चला आ रहा हूँ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमें सुनकर बड़ी खुशी होती है कि आप 1985 से तो सुन ही रहे हैं, तो और रेडियो भी अपना जो सफ़र है वो 90 वर्षों का सफ़र अभी हाल ही में जून में पूरा करने वाला है, और आप हमारे इतने
0: हाँ
1: पुराने पुराने
0: आज
1: श्रोता
0: श्रीमान
1: हैं।
0: जी मेरा निवेदन है, मैंने बड़ी मुश्किल से नंबर पकड़ पाया है आज, और मैंने अभी 4-5 बार लगाया भी है, नंबर तो लगा लेकिन उठा नहीं है,
1: जी, क्योंकि समय
0: लेकिन
1: नहीं
0: मैं
1: हुआ
0: सोचता
1: होगा।
0: था कि यार नंबर उठ नहीं रहा है। हाँ
1: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा। और
0: जी
1: इसी तरह कोशिश करते रहिए और कार्यक्रम में अपनी पसंद हमें बताकर हमें भी
0: हाँ
1: खुशी दीजिए। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए।
0: की कहते हैं नजरों से चाहत का इजहार करते हैं, और हम प्रेमी आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को बेहद प्यार
1: प्यार
0: करते हैं और
1: करते हैं।
0: बेसब्री से इंतजार करते हैं।
1: जी, तो आपका स्वागत है। हमारा भी बेसब्री से इंतजार था कि कब आपकी हम शायरी सुने हमको।
0: और कहते खुदा करे किसी से फिदा ना करे, और फिदा करे तो फिर जुदा ना करे। मैं बता दूं, ग्राम कल्पा जिला सतना से आपका जाना पहचाना चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना हिंदुस्तानी कलाकार।

0: जनगार्डन अशोक वाटिका कल्पा से बोल रहा हूँ।
1: जी, आपका स्वागत है महमूद जी। अब अपनी फरमाइश भी बताइए, क्योंकि आपकी ऐसी रंगीन शायरी से हम और हमारे श्रोता तो गदगद हो गए, खुश हो गए। अब हम आपको खुश करना चाहते हैं, आपकी पसंद का गीत सुनाकर।
0: समझ लो कि ईद तो है ही, आज ईद उल अजहा का त्योहार है, और समझ लो एक ईद और हो गई, आपसे बात हो गई तो।
1: जी, तो मुबारक हो आपको ईद की, और इस मुबारक मौके पर आपके लिए क्या पेश किया जाए बताइए।
0: हाँ बस गाना सुनना है मैडम जी, थोड़ी सी बात हम कहें कर लें सभी श्रोता बंधुओं को, हिंदुस्तानी जितने हमारे देशवासी हैं सभी को दिल से जो है तो नमस्कार और मुबारकबाद, और आप पूरे स्टाफ को।
1: जी जी शुक्रिया
0: जी जी और ज्यादा श्रोताओं के नाम लेना बिल्कुल उचित नहीं है, बस प्रेमदास बाबा जी के नाम रहेगा और गाना रहेगा। अब गाना आप वही सुनवा दो, तीसरी आंख का अगर मिल जाए तो बहुत सही रहेगा।
1: बोल बता
0: गीत के
1: दीजिए।
0: बोल हैं ईद देख।

0: बस आ जा,
1: एक फरमाइश
0: जाए तो मैडम जी सही रहेगा, नहीं फिर दूसरा बता दूं, क्योंकि गाना ये जो है तो शत्रुघ्न सिन्हा की शायद है, ऐसे दो तीन लोग मिलकर के इस फिल्म को बनाए, तीसरी आंख पुरानी।
1: जी जी, तो एक और बता दीजिए, अगर ये मिल गया तो हम इसे पहले सुना देंगे, और कभी खुदा न खास्ता न मिल
0: हाँ,
1: पाया
0: तो फिर गाना फिर एक और सुनवा दो, गेमलर फिल्म का है, पुरानी फिल्म का गेमलर।
1: अच्छा,
0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में है, और गीत के बोल है, अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, तेरी सांसों में मेरी सांस घुल जाए। और गीत अब शामिल करिएगा, और
1: जी
0: मैं
1: जी।
0: बता दूं यहाँ शीत लहर का प्रकोप जारी है, क्योंकि सतना जिले के कल्पा में
1: शीत लहर चल रही है।
0: हाँ हाँ गर्मी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा, बिल्कुल मीडियम, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे चारों तरफ से घेरे हुए हैं बिल्कुल, और नदी नाले चारों तरफ से पानी का अंबार लगा हुआ है, इसीलिए जो है हल्की फुल्की ठंडी महसूस होती है।
1: बहुत खूब, आप खुश नसीब हैं कि इतनी गर्मी में आपको इतना ही शीतलता मिल रही है
0: जी
1: चांदों
0: मैडम
1: में।
0: जी, गीत आप शामिल करिए, काफी दिनों में लगा,
1: जी
0: 15-16 दिन हो गए, एक हफ्ते के बाद ही लगा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद बिल्कुल आपके रेडियो सेट पर। धन्यवाद,
0: जी जी नमस्कार दिल से।
1: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्ते मैडम।
1: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
0: पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
1: मंडला से कौन बात कर रहे हैं?
0: सुमत कुमार जैन
1: जी शेमत
0: जी, रिटायर्ड शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ पिंडरी जिला मंडला से।
1: जी, शेमत कुमार जी, आप रिटायर्ड हैं, आपने बताया, आप शिक्षक भी हैं। कौन सा विषय पढ़ाते थे आप?
0: मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था, सोशल साइंस
1: तो
0: जी,
1: आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते थे या हिंदी माध्यम में?
0: हिंदी माध्यम में पढ़ाया था मैडम, सरकारी
1: बहुत बहुत
0: स्कूल में।
1: जी। तो आप और क्या आपके शौक हैं? अब रिटायर्ड हो गए हैं, तो अब आपकी कैसी है जीवन शैली?
0: बढ़िया जिंदगी कट रही मैडम। अभी तो हम गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
1: गर्मी का आनंद ले रहे हैं, ये भी अच्छी
0: और
1: बात है कि कोई सर्दियों का आनंद लेता है, लेकिन गर्मी भी अपने आप में जो है एक ईश्वर का ही तत्व है, तो उसे भी हमें आनंदित होकर ही स्वीकार करना चाहिए ना, शिकायत क्यों करें? जी
0: बिल्कुल
1: बताइए।
0: सही है मैडम। क्रोधी फिल्म का,
1: कौन सा गीत है?
0: क्रोधी फिल्म का गाना है वो, क्या कहती हैं, बहुत अच्छा गाना है मैडम। अभी कोई भी सुना दीजिए क्रोधी फिल्म का।
1: चलिए ठीक है, इसमें एक वो मसीहा आया है गीत भी है, और है रेखा जी और धर्मेंद्र जी पर फिल्म आया हुआ, तो हम
0: हाँ,
1: आपको
0: उर्वशी रवीन का सुना दीजिए
1: जी
0: आप।
1: जी तो हम आपको सुनवाते हैं क्रोधी फिल्म का ये गीत। शुक्रिया।
0: जी, धन्यवाद मैडम।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम, मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मवी जिला इंदौर।
0: विवेक व्यास जी बोल रहे हैं।
1: हाँ जी
0: कैसे हैं आप बताइए।
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैडम?
0: हम भी बहुत

0: अच्छे हैं और आपसे
1: और
0: बात हो रही है।
1: और ठीक ठीक तो क्या है, बस आपके प्रोग्रामों की ठंडक पे ये दिन गुजार रहे हैं क्योंकि हालत बड़ी खराब है गर्मी के कारण अपन सब की।
0: जी जी तो गर्मी में जो है हम अपना ध्यान किसी और तरफ केंद्रित करके और आनंद ले रहे हैं कि गीतों के साथ में गर्मी हमें कम महसूस हो रही है।
1: हाँ ये तो आपकी बात सही है, जैसे
0: जी
1: हमारा ध्यान आपके प्रोग्राम में रहता है
0: तो गर्मी का
1: और
0: एहसास नहीं
1: आपकी
0: होता है।
1: जी, और आपके मुझे आपका एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है। मतलब
0: बात आपकी गीत
1: बात हमारी
0: हमारे
1: गीत आप ऐसा कुछ है ना। हाँ
0: बात आपकी गीत
1: तो
0: हमारे जी
1: जी ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। फोन करके सुने तो कह रहे हैं ये अपनी जगह पर। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि आज रिकॉर्डिंग कौन से प्रोग्राम की है।
0: आज फोन करें गीत सुनने की है।
1: अच्छा तो मैं अपनी पसंद का गाना बताऊं, आप सुनाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कब से पूछ रहे हैं आपसे,
1: जी जी
0: बताएं।
1: तो आज देखिए, आज महबूब खान की पुण्यतिथि है तो मुझे मदर इंडिया फिल्म का गाना सुनवा दें जो मन्ना डे की आवाज में है। और इस गाने में एक बड़ा अच्छा संदेश है। वो गाना है कुछ इस तरह से है कि उमरिया घटती जाए रे,
0: जी
1: उमरिया घटती जाए। इसमें मैडम एक लाइन आती है,
0: हाँ
1: काल पड़ा है रोटी का और दुनिया बढ़ती जाए,
0: बा हाँ हाँ
1: है ना।
0: हाँ
1: तो ये
0: जी
1: गीत मुझे सुनना है और आपका नाम भी मुझे जानना था क्योंकि आकाशवाणी भोपाल के सभी अनाउंसरों की आवाज इतनी अच्छी है कि हमें सभी की आवाज एक जैसी ही लगती है।
0: जी
1: जी
0: बहुत खुशी हुई जानकर कि आप सभी को बिल्कुल समान रूप से देखते हैं और सुनते हैं। और आज
1: और
0: आपकी
1: आपको
0: बात
1: एक बात और मैं बताऊं कि मैं जॉब है मेरा यहाँ पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और मैं रहने वाला वैसे भोपाल का ही हूँ, कोटला सुल्तानाबाद का।
0: जी
1: जी
0: तो आज आपकी बात हो रही है आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका से।
1: अच्छा प्रियंका जी,
0: जी, तो विवेक जी आपका
1: ओ
0: बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना
1: जी
0: अच्छा संदेशात्मक गीत चुना है सुनने के लिए, तो आपकी ये
1: जी
0: पसंद और ये संदेश आपके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं आपके साथ, आपके पास और अन्य श्रोताओं के पास।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आप अपना बहुत ध्यान रखें गर्मी में,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये
0: जी
1: आपसे निवेदन है।
0: जी
1: ओके
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: जी दीदी, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से दीदी मनोज नामदेव बोल रहे।
0: अरे मनोज जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद दीदी, मैं तो बढ़िया हूँ दीदी, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप भी एकदम सही और स्वस्थ होंगी।
0: बिल्कुल, आपकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल खरी खरी है ना? क्या कर रहे हैं मनोज जी इन दिनों, आप बताइए।
1: बिल्कुल दीदी, कहें कि अपने शॉप पर काम कर रहे हैं और

0: दीदी मनोज नामदेव बोल रहे।
1: अरे मनोज जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: धन्यवाद दीदी, मैं तो बढ़िया हूँ दीदी, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप भी एकदम सही और स्वस्थ होंगी।
1: बिल्कुल, आपकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल खरी खरी है, है ना? क्या कर रहे हैं मनोज जी इन दिनों, आप बताइए।
0: बिल्कुल दीदी, कहें कि अपने शॉप पर काम कर रहे हैं, और इस समय गर्मी भी भीषण पड़ रही है, तो इससे भी बचाव कर रहे हैं, कहें कि
1: नौतपा भी चल रहा है तो और भी गर्मी विशेष है अभी तो इन दिनों में,
0: बिल्कुल सही आवाज।
1: है ना जी? तो अब बताइए, आप अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपको तो लगभग 8 से 10 घंटा शॉप पर बैठना पड़ता होगा।
0: बिल्कुल दीदी सही है। क्या है दीदी कि जब मैं सुबह शॉप शॉप पे आ जाता हूँ, तो दिन में जैसे कहीं जाना है तो बिल्कुल भी दिन में धूप में निकलने का कोई चांस बिल्कुल नहीं है। अगर इमरजेंसी जैसे कहीं जाना हुआ तो पूरी बहन के कपड़े हुए, और एकदम कान को बांध कर एकदम पूरा पैक होके ही घर से निकलता हूँ मैं। और वैसे तो सुबह शाम जो काम है वो ही सुबह शाम कर लेता हूँ दीदी, और सभी से मैं यही कहता हूँ कि धूप से अगर बचना है तो दिन में बिल्कुल ना निकले, और
1: जी,
0: अपने जो छोटे बच्चे हैं और जो अपने बूढ़े माता पिता हैं,
1: बुजुर्ग
0: खास
1: हैं।
0: तौर पे उनका अगर अपन विशेष ध्यान रखें तो कुछ सही है दीदी।
1: जी बिल्कुल, गर्मी में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम सर्दियों में रखते हैं वैसा ही ध्यान हमें गर्मियों में भी रखना चाहिए। बस तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हर मौसम का अपना मिजाज होता है, उससे हम मना नहीं कर सकते हैं
0: बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
1: जी। तो मनोज जी बताइए, अपनी पसंद तो आपने अभी तक बताई नहीं है।
0: हाँ दीदी पसंद बता दूँ, दीदी पसंद है, फिल्म का नाम है दीवाना, उसमें गाना है तेरे दर्श दिलावाद रहा कुछ भूल गया कुछ याद रहा, ये है गाने की वो।
1: अच्छा, पुरानी वाली दीवाना सुनना चाह रहे हैं
0: हाँ
1: आप?
0: दीदी पुरानी में है ये गीत।
1: अच्छा, जी,
0: हाँ
1: बिल्कुल ठीक
0: कुछ
1: ठीक
0: भूल गया कुछ याद रहा, एक फिल्म और बता दूँ अगर ये नहीं मिले तो।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये तो क्योंकि मेरे पास सुना है, मैंने आपके अंदर कई बार है, और अगर
1: जी
0: आपको कुछ दिक्कत दिखे तो फिर मैं एक और बता दूं
1: जी विकल्प साथ में रहे तो अच्छी बात है। बताइए।
0: दूसरी है फिल्म का नाम है आवारगी, और उसमें गजल है अल्ताफ राजा जी की आवाज में, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला इसमें।
1: जी, चमकते चांद को तो हमारी कोशिश रहेगी मनोज जी कि हम यही सुना दें, क्योंकि ईद भी है, ईद का मौका है, तो चमकते चांद को सितारा सुना दिया जाए,
0: हाँ शानदार मजा आ जाएगा
1: है
0: दीदी
1: ना? जी,
0: बिल्कुल। और
1: ठीक
0: मैं तो
1: है।
0: यही सोचता हूँ दीदी कि अगर मेरे हिसाब से आप परेशान ना हो ज्यादा तो ठीक है, जो मिल जाएगा वो सर बात
1: अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
0: है
1: आपकी हर पसंद हमारे पास है ना?
0: ये तो
1: लेकिन
0: बिल्कुल सही है।
1: मौके मौके को
0: आकाश
1: देखते हुए हम ये चाहते हैं कि चमकते चांद को
0: ठीक
1: सितारा हम हमारे जो ईद मनाने वाले हमारे श्रोता
0: है,
1: हैं तो उन्हें भी बड़ी खुशी होगी ये गीत
0: बहुत अच्छी
1: सुनकर,
0: बात
1: है
0: बहुत अच्छी बात।
1: ना जी?
0: ठीक
1: शुक्रिया मनोज जी, और ऐसे ही फ़ोन करते रहिए, हमसे बात
0: जी
1: करते रहिए। नमस्कार
0: धन्यवाद दीदी आपको।
1: जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार। मैं
0: नमस्कार। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
1: मालेगांव से बात कर रहा हूँ, तुलसीराम
0: जी, मालेगांव से, महाराष्ट्र।
1: व्यास। तुलसीराम व्यास, तुलसीराम।
0: अच्छा जी, तो मालेगांव में कैसा सुनाई देता है हमारा प्रसारण आपको?
1: मालेगांव में, मैं महाराष्ट्र में मालेगांव में, यहाँ बहुत अच्छा सुनाई देता है।
0: जी।
1: आकाशवाणी जिस तरह आकाश में अच्छी तरह विराजमान है, उसी तरह सबके दिलों में विराजमान है आकाशवाणी।
0: शुक्रिया
1: आकाशवाणी सबके दिलों में विराजमान है,
0: जी।
1: कहीं
0: इसीलिए
1: भी खड़े रहो आकाशवाणी के आप गीत आराम से सुन सकते हो। और हमारा एक भाई है, 1-1.2 साल का, वो नीमच में रहता है,
0: अच्छा,
1: वो आकाशवाणी से इतना लगाव है उसका कि
0: जी।
1: वो मोबाइल रखता नहीं उसका, लेकिन उन्होंने मेरे से कहा, एक पुराना गाना दिया उन्होंने मुझे कि
0: जी
1: बोले आपका फोन लग जाए, तो उनका नाम है आरसी जैन,
0: जी जी
1: वो पोस्ट मास्टर है रिटायर,
0: जी
1: 82 साल के हैं।
0: जी तो कौन
1: उनका
0: सा गीत
1: आकाश
0: उन्होंने
1: हाँ
0: आपको बताया है सुनवा उन्होंने कौन सा गीत बताया आपको सुनवाने के
1: उन्होंने
0: लिए?
1: एक बहुत पुराना गीत बताया है, ये आकाशवाणी को बहुत दिलों से चाहते हैं। उनका गीत है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम ना देना, खुशी देने
0: खुशी
1: वाले,
0: देने वाले,
1: ये
0: जी।
1: आकाशवाणी से कहा है उन्होंने कि
0: अच्छा।
1: मुझे प्यार, उनको प्यार की जिंदगी आकाशवाणी ने दी है। और वो कहते हैं कि मुझे कभी गम न देना, मुझे खुशी देना आकाशवाणी।
0: बिल्कुल, हमारा भरपूर ये प्रयास रहेगा कि हम कभी अपने श्रोताओं को निराश न करें, हम उन्हें कोई दुख न पहुंचाए, कोई गम न पहुंचाए। बिल्कुल, हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और इसको पूरी भी करते हैं, है ना? कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कुछ ऐसी बात कही है कि जो आपकी इस बात से थोड़ा तालमेल रखती है। जब आप कार्यक्रम सुनेंगे तो
1: आपका
0: आप
1: शुभ नाम,
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, प्रियंका बात कर रही हूँ मैं।
1: अच्छा प्रियंका जी, तो
0: जी।
1: ये गीत उनका, उनको सुना देना, तो उनको बहुत खुशी होगी।
0: जी, शुक्रिया आपका।

0: श्रोताओं, कभी कभी सबसे मुश्किल सफर कहीं पहुंचने का नहीं होता, बल्कि उस जगह को छोड़ने का होता है जहां हम अभी हैं। पर शायद यही जिंदगी का इशारा होता है, हमें अनजान रास्तों पर भरोसा करना सिखाने का, उस चलती नाव में कदम रखने का जब किनारा अब भी अपना सा लगता है। क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम सुकून से ज्यादा हिम्मत को चुनते हैं और यकीन करते हैं कि आगे जो है वो हमारे लिए और भी खूबसूरत होगा। तो आज का ये सफर कार्यक्रम फोन करे गीत सुने का आपने तय किया था आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका के संग। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: फोन करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। देश भर में बारिश औसतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। वर्ष 2026 से 2030 के बीच वैश्विक औसत तापमान 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। देश में जल संरक्षण के कार्य में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 जिला प्रशिक्षण वर्ग में योगाभ्यास किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में हिस्सा लिया और 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड

0: को 38 रन से हरा दिया। तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म हरजाई से, लता मंगेशकर की आवाज, निदा फाजली के बोल, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोरी वर्मा, दीपक वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

ये गीत है फिल्म गुलामी से, लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल ने बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ये गीत सुनना चाहा है।

अब आपको सुनवा रहे हैं रजनीगंधा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, संगीत सलिल चौधरी का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन इस गीत को सुनना चाहते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी है। तो आइए सुनते हैं रजनीगंधा फिल्म का ये गीत।

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। नीरज के लिखे गीत को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने। पसंद आप सब श्रोताओं की है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया ने इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। इसी गीत को पसंद किया है अनिल, नेहा फड़ से सीमा, सबीहा, फलक, पूजा, सुषमा, सविता, मनु और इनके पूरे परिवार ने, गुमाश्ता नगर इंदौर से। तो आइए सुनते हैं तेरे मेरे सपने फिल्म का ये गीत।

आशा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ है लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद आप सब श्रोताओं की। हुलास राम कटरे और नानेश्वरी कटरे ने ये गीत सुनना चाहा है बालाघाट से। इसी गीत को पसंद किया है धमनी केरवई के श्रोताओं ने। ये हैं समेलाल धीवर, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर। तो आइए सुनते हैं आशा फिल्म का ये नगमा।

0: आशा फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: कवि हेमंत देवलेकर,
6: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
7: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सिसकियां। आज सुनिए इसकी तीसरी कड़ी।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की तीसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सायरे के वालिद पैगाम भिजवाते हैं कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। ये खबर मिलते ही मुश्ताक सायरे को उसकी अम्मी के पास छोड़ आता है, लेकिन खुद वहां नहीं रुकता। अब आगे।

0: सारे
1: आ गए, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी।
0: ऐसी बात नहीं है सारे, मैं तो पहले ही आना चाहता था पर काम ही ऐसा पड़ गया कि फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी।
1: अच्छा जी, तो अब आपको फुर्सत मिल गई।
0: अरे तुम तो मजाक करने लगी।
1: नहीं जी, मैं क्यों मजाक करूंगी।
0: सारे जिस काम से आया था वो तो मैंने तुमसे कहा ही नहीं।
1: क्या
0: हाँ मैं अभी तुम्हें लेने आया हूँ।
1: अभी?
0: हाँ क्यों, तुम जाना नहीं चाहती?
1: ओ नहीं, ऐसा नहीं है, पर अभी कुछ दिन और रह लेती तो।
0: सारे अम्मी कह रही थी कि घर बड़ा उदास सा लगता है और
1: अच्छा, तो तुम अम्मी के कहने पर आए हो, अपने मन से नहीं।
0: सारे काम का बोझ पड़ गया है और काम छोड़कर आना क्या अच्छा होता।
1: तो क्या अब काम नहीं है?
0: सारे तुम मुझे नाराज लगती हो। हाँ तुम्हारी नाराजगी भी जायज है, इन दिनों में मैं तुमसे मिलने जो नहीं आ सका।
1: तुम्हें मेरा ख्याल भी है?
0: सारे तुम मेरा प्यार हो।
1: अगर ऐसा होता तो तुम इतने दिनों में कम से कम मिलने तो आ सकते थे ना।
0: अब अपना काम तो है नहीं सारे कि जब चाहे बंद कर दो, मुझे ग्राहकों को देखना होता है
1: और मुझे काम काम काम। क्या मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे लिए?
0: तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सारे? तुम मेरी जिंदगी हो, अगर मैं काम कर रहा हूं, दो पैसे जोड़ रहा हूं

0: तो किसके लिए? तुम्हारे लिए ही ना।
1: ऐसा भी पैसा किस काम का जो हमारे बीच दूरियां बढ़ा दे, आपको मिलने का मौका भी ना दे।
0: अब ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम मेरे काम को ही धत्ता बताई जा रही हो?
1: ऐसा नहीं है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दो पैसे जोड़ो, पर ये नहीं चाहती कि उन पैसों की होड़ में मुझे ही भूल जाओ।
0: सारे, तुम्हें भूलने की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन क्या करूं, काम ही ऐसा है कि छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और तुम्हारे घर भी आना हो तो एक दिन की छुट्टी हो जाती है। आज बड़ी दिक्कत से आ पाया हूँ यहाँ।
1: अगर इतनी ही दिक्कत थी तो ना आते।
0: ओह, तुम अभी भी नाराज हो?
1: नहीं, मैं बस।
0: देखो सारे, अभी काम का वक्त है, काम बढ़ गया है, ऐसे में काम छोड़कर आना ठीक नहीं लगता।
1: अब चलो छोड़ो इन बातों को, अब जल्दी से बताओ क्या खाओगे।
0: थोड़ी देर में चलेंगे सारे, सो खाने पीने का चक्कर छोड़कर तुम तैयार ही हो जाओ।
1: कौन जा रहा है अभी? अभी कोई नहीं जा रहा, मैं चाय लाती हूँ। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा रही, अभी अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं मुझे आए हुए, और अभी चली चलूं? इतने दिन तो अम्मी की तीमारदारी में गुजर गए, मायके का मजा तो अभी लिया ही नहीं। देखो कुछ दिन और रह लूं, फिर चलूंगी तुम्हारे साथ।
0: देखो सारे, मायके में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं होता, और अम्मी कह रही थी कि तुम्हारे बिना उनका मन नहीं लगता, घर भी उदास उदास सा, उजड़ा उजड़ा सा लगता है।
1: हाँ, घर तो उदास लगेगा ही, आखिर घर लोगों से ही तो बनता है। वैसे मुझे भी फजी अम्मी की याद आती है, पर क्या करूं, यहाँ भी तो दो चार दिन रुकने का मन कर रहा है ना।
0: सारे, तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उसे तुम्हें निभाना चाहिए, और मेरी मानो तो अभी मेरे साथ चलो।
1: अम्मी से भी तो पूछ लूं, वो क्या कहती हैं। लो अम्मी भी आ गई, आप लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: सलाम अम्मी।
2: सलाम बेटे, खुश रहो। करीम भाई कैसे हैं?
0: सब ठीक है अम्मी, आपकी तबीयत को पूछ रहे थे।
2: अब ठीक हूँ, सारे ना आई होती तो शायद ही बच पाती।
0: ऐसा क्यों सोचती हैं आप, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है।
2: एक बीमार को दवा से ज्यादा तीमारदारी की जरूरत होती है बेटा, आज सारे एक सहारा है।
0: आखिर बेटी है आपकी, अगर औलाद दुख में साथ ना देगी तो कब देगी?
2: अब तो तुम ही लोगों का सहारा है।
0: आप ऐसा क्यों सोचती हैं अम्मी?
2: किस्मत की मारी और सोच भी क्या सकती है।
0: आप ऐसा ना कहें।
2: क्यों ना कहूं, मेरी किस्मत ठीक होती तो सारे के अब्बा का काम ठीक ना चलता, किसी की आस तो ना देखनी पड़ती।
0: अम्मी, सुख दुख तो सारा जीवन चलता रहता है, पर इससे कोई बच भी तो नहीं सकता। पर दुख ज्यादा दिन नहीं रहते, खुशियों का सवेरा तो आता ही है।
2: हमारी छोड़ बेटे, अपनी बता, काम तो बेहतर चल रहा है?
0: जी अम्मी, बेहतर है।
2: आमदनी तो अच्छी होती होगी?
0: आमदनी ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, चार जनों का परिवार अच्छे से चल जाता है।
2: इतने से गुजारा तो चल जाता है, पर भविष्य के लिए दो पैसे भी तो जोड़ने चाहिए।
0: अम्मी, मेहनत से जो मिल जाता है मैं उसी में संतुष्ट हूँ।
2: अल्लाह ताला इसी में बरकत दें।
0: ये तो आप सब लोगों की दुआएं हैं।
1: अम्मी चाय।
2: सारे बेटे, मुश्ताक के लिए कुछ नमकीन भी तो ला, कितने दिनों बाद आया है ये।
1: जी अभी लाई अम्मी।
0: अरे रहने दो सारे, चाय काफी है।
2: काफी क्या है, हम गरीब लोग ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आज आए हो तो कुछ खातिरदारी तो करनी ही होगी ना।
0: आप परेशान ना हो अम्मी, मैं कोई दूर का मेहमान थोड़ी ना हूँ।
1: अम्मी ये मुझे ले जाने के लिए कह रहे थे।
2: अरे ऐसे कैसे ले जाओगे बेटा, आज आए हो, दो चार दिन

0: तो रुको, फिर ले जाना।
1: नहीं नहीं अम्मी, मेरा तो रुकना मुमकिन ना होगा।
2: आज की रात तो रुक लो, कल सुबह चले जाना।
1: नहीं सारे, मैं नहीं रुक पाऊंगा। अगर तुम साथ चलो तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा।
0: अरे एक दिन रुकने से क्या फर्क पड़ता है बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है।
1: वो तो है अम्मी, पर काम बहुत है और काम छोड़कर रुकना मुनासिब भी नहीं।
0: एक रात रुक जाते।
1: नहीं अम्मी, यह मुमकिन नहीं।
0: बेटा अगर तुम एक दिन भी ना रुके तो आस पास के लोग हंसेंगे हम पर कि दामाद एक दिन भी नहीं रुकता।
1: अब ऐसा क्यों सोचती हैं आप? क्या दामाद घर बैठा रहे ये लोगों को अच्छा लगेगा? और यूं तो घूमता नहीं कि लोग बदनामी करें।
0: समाज और बिरादरी को तुम नहीं जानते कि वो क्या सोचते और क्या बोलते हैं।
1: अम्मी मैं इन दकिया नुसी बातों पर

0: बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है।
1: वो तो है अम्मी, पर काम बहुत है और काम छोड़कर रुकना मुनासिब भी नहीं।
0: एक रात रुक जाते।
1: नहीं अम्मी, यह मुमकिन नहीं।
0: बेटा, अगर तुम एक दिन भी ना रुके तो आस पास के लोग हंसेंगे हम पर कि दामाद एक दिन भी नहीं रुकता।
1: अब ऐसा क्यों सोचती हैं आप? क्या दामाद घर बैठा रहे ये लोगों को अच्छा लगेगा? और यूं तो घूमता नहीं कि लोग बदनामी करें।
0: समाज और बिरादरी को तुम नहीं जानते कि वो क्या सोचते और क्या बोलते हैं।
1: अम्मी, मैं इन दकिया नुसी बातों पर एतवार नहीं करता। जो हमारे लिए बेहतर हो हमें वही करना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर या दिखावे के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान करना, ये भला कहाँ की समझदारी होगी।
0: तुम्हारा भी कहना सही है बेटा, पर हमें तो रहना इसी समाज में है और जवाब भी इसी समाज को देना होगा।
1: मैं सारे को लेने आया था अम्मी, अब मेरे पास इतना समय नहीं है। इस बात को तो आप समझेंगी ना?
0: सारे तुम्हारी पत्नी है बेटा, मैं उसे क्यों कर रोकूंगी। तुम जब चाहो ले जाओ, पर सारे बेटी है इस घर की। कुछ दिन और रह लेती तो अच्छा रहता। मेरा मन करता है कि बेटी मेरे पास रहे।
1: तो सारे अभी मेरे साथ नहीं जा रही है?
0: क्या कहूँ, थोड़े दिन और रुक जाती तो।
1: ठीक है अम्मी, जैसा आप बेहतर समझे। सारे को जब आना हो खबर भेज दीजिएगा।
0: तो तुम आज नहीं रुकोगे?
1: नहीं अम्मी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा रुकना मुमकिन नहीं।
2: मुश्ताक।
1: सलाम अब्बू।
3: सलाम, खुश रहो बेटे। कब आए?
1: अभी।
3: घर में सब कुशल तो है?
1: हाँ, घर में सब ठीक है। अम्मी बार बार कह रही थी कि घर उदास सा लगता है, सो सारे को लेने आ गया था।
3: अच्छा अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है बेटा?
1: जी ठीक है अब्बू, अभी तो बाजार ठीक है, पर बाजार का कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी तेज होता है और कभी मंदा।
3: हाथों का काम है, अल्लाह इसी में बरकत दे। ईमानदारी से काम करो बेटा।
1: हाँ अब्बू, पैसे कम हो पर सब्र होना चाहिए, और आप लोगों की दुआएं साथ हैं तो सब ठीक ही होगा।
3: ठीक कहते हो बेटा, कम पैसा हो पर संतोष हो, रोजगार रहे, यही बहुत है आज के समय में।
1: अब्बू, बाजार में काम की कमी थोड़े ही है।
3: हाँ बेटा, अब इस उम्र में जो भी कर रहा हूं वही ठीक है। कारीगर के हाथ पैर जितने चले उतने ही अच्छे हैं।
1: हाँ अब्बू, अब तो बाजार बदल रहा है, बाजार के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को क्यों नहीं बदलते अब्बू?
3: बेटा, मुझे अपने आप को बदल कर कौन सा विदेश में जाकर बस जाना है। अब रही सही जिंदगी भी यहीं पर कट जाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जन्नत यहीं से नसीब हो।
1: अबू जान, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो कश्मीर के हालात भी कितने अच्छे हो गए हैं कि किसी को रोजगार के लिए इस जन्नत को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है।
3: जो लोग चले गए हैं वो भी एक ना एक दिन अपने घरों को वापस लौट ही आएंगे। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं बेटा, जब मेरे बचपन का साथी शर्मा भी अपने पूरे परिवार के साथ लौट कर आ जाए।
1: अबू जान, वो जरूर लौट कर आएंगे, क्योंकि अब तो हुकूमत हमारी इस वादी में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे साधन जुटा रही है, और बाहर की कंपनी

0: कंपनियां भी नए उद्योग स्थापित कर रही है।
1: हाँ बेटा, नौजवानों में जो आक्रोश था वही भटकाव की जड़ था। अब जबकि लोगों को धीरे धीरे सुकून मिल रहा है तो भटकाव भी खत्म हो गया है। अब लोग अपनी वादी से जुड़ने लगे हैं।
0: हाँ अब्बू, आप सही कहते हैं। हमारी उम्र के लोग बाजार की चकाचौंध में डूब से गए थे। हमारी संस्कृति खत्म सी हो रही थी। अब्बू, उनके अंदर इस जमीन से लगाव छूटता सा जा रहा था और यही एक बड़ी वजह थी कि हम अपने यहाँ के बाजारों को नहीं बचा पा रहे थे।
1: सही कहते हो मुश्ताक, इन हाथों में रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए। अब कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी।
0: हाँ अब्बू,
1: वैसे हमारी हुकूमत ने इसकी पहल कर दी है।
0: हाँ अब्बू, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं। जिंदगी जैसी चलती है वैसी चलती रहे, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो बस दुआ कर सकते हैं अपनों की सलामती के लिए।
1: सही कहते हो बेटा, मैंने तो चौकीदारी करके ही जिंदगी गुजार दी, अब तुम लोगों के लिए ही दुआ करूंगा।
0: अच्छा अब्बू, तो मैं अब चलूंगा, नहीं तो बहुत देर हो जाए।
1: बेटा, सारे भी जा रही है?
0: नहीं अब्बू, वो कुछ दिन और रुकना चाहती है।
1: तुम नहीं रुकोगे?
0: नहीं अब्बू, मुझे जाना होगा।
1: अच्छा बेटा, करीम और फजी को मेरा सलाम कहना।
0: जी अब्बू, कह दूंगा। अच्छा अब्बू, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज बेटा।
2: सारे, खाना खा ले, बुत्सी बनकर क्यों बैठी है?
3: खाती हूँ अम्मी।
2: मैं जानती हूँ तू मुश्ताक के बारे में ही सोच रही है।
3: अम्मी, मैं वो...
2: मैं तेरी माँ हूँ मेरी बच्ची, तेरे दिल की बात मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा?
3: अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
2: तू फिर मुकर रही है, मुश्ताक आज नहीं रुका, तू यही सोच रही है ना?
3: वो उनको काम था अम्मी।
2: काम? काम तो हमेशा रहता है बेटी, पर क्या वो इतने दिन बाद आया था? तेरे कहने से एक दिन रुक नहीं सकता था? एक दिन में कितना नुकसान हो जाता उसका?
3: अम्मी, अब उनका काम ही ऐसा है तो क्या करें?
2: मन को बहलाने की कोई जरूरत नहीं है सारे। मुश्ताक चाहता तो रुक सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों?
3: अम्मी वो...
2: बस कर, सच तो ये है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता।
3: नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है, वो मुझे प्यार करते हैं अम्मी।
2: तू अब भी यही कह रही है? अगर मुश्ताक को तुझसे प्रेम है तो क्या वो एक दिन रुक नहीं सकता? और सिर्फ मुश्ताक ही तो काम नहीं करता, अब खजरी को ही लो।
3: कौन खजरी?
2: अरे वो रजिया की बेटी, उसकी तो चांदी हो गई।
3: क्यों?
2: खजरी की शादी एक दुकानदार से करवा दी है और वो खजरी के इशारों पर घूमता है, अच्छा पैसा कमाता है और रजिया को भी पैसे देता है। खजरी के साथ साथ रजिया भी खुश है, उसके अच्छे दिन आ गए। और एक मैं हूँ जो...
3: क्यों अपने को कोसती हो अम्मी?
2: कोसू ना तो क्या करूं?
3: अम्मी, सबका नसीब एक जैसा तो नहीं होता।
2: इसमें नसीब का क्या? खजरी अपने पति से प्रेम करती है और उसको अपने इशारों पर रखती है। वो दिन कहे तो दिन और रात कहे तो रात, और एक तेरा पति है।

0: जो बार बार कहने पर भी एक रात के लिए नहीं रुका, और तू कहती है कि वो तुझसे प्रेम करता है।
1: अम्मी, एक रात ना रुकने से प्यार कम तो नहीं होता, और मैं खजरी की तरह अपने पति को आगे पीछे घुमाऊं, ये मुझे पसंद नहीं।
0: मेरा नसीब ही खोटा है जो मेरी बेटी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती।
1: तुम ऐसा क्यों सोचती हो अम्मी?
0: बेटी है तू मेरी, और तेरी खुशी के लिए ही कहती हूँ। तुम्हें मुश्ताक को अपने वश में करना चाहिए, तू जो कहे उसे माने।
1: मगर अम्मी, ये मुमकिन नहीं है।
0: हाँ, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक करीम और फजी उस घर में हैं, और उनके रहते मुश्ताक तुम्हारा पति नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें मुश्ताक को उस घर से अलग रखना होगा।
1: मुश्ताक नहीं मानेगा अम्मी।
0: सारे अगर ऐसा नहीं हुआ तो करीम व फजी तुझको नौकरानी की तरह काम करवाते रहेंगे और खुद मुश्ताक के पैसों पर ऐश करेंगे।
1: अम्मी, ये मुमकिन है क्या?
0: इसे मुमकिन बनाने के लिए जरूरी है बेटी कि तुम और मुश्ताक करीम व फजी से अलग होकर रहो।
1: इसके लिए मुश्ताक से पहले बात करनी होगी अम्मी।
0: ठीक है, अब की मुश्ताक आए तो उससे साफ साफ कह दो कि तुम उस घर में नहीं रह सकती और अलग घर लेकर रहे। उस पर दबाव बनाओ ताकि वह मान जाए। घर खोजने में दिक्कत हो तो यहाँ आ जाए।
1: ठीक है अम्मी, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगी, ताकि मेरा मुश्ताक हमेशा मेरे पास रहे।
0: ठीक है, अब खाना खा ले और सो जा, रात भी बहुत हो गई है।
1: हाँ अम्मी।

0: राता, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो।
1: क्या अच्छा नहीं कर रही?
0: अपनी ही बेटी के घर में क्यों आग लगा रही हो?
1: या अल्लाह, मैं उसके घर में आग नहीं लगा रही, उसका घर बना रही हूँ।
0: वादा घर जोड़ने से बनता है, तोड़ने से नहीं। और तुम जो कर रही हो या करवाना चाहती हो, उससे सारे का घर नहीं बनेगा, बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने का रास्ता दे रही हो।
1: तुम चुप रहा करो। अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सके और जो कर सकता है उसके रास्ते में बाधक बनते हो।
0: क्या कह रही हो फाता? सारे तेरी बेटी है, उसको सही सलाह दिया करो, ताकि वो घर को संभाले, ना कि घर को बर्बाद करे। क्यों तुम दोनों की जिंदगी तबाह करने पर तुली हो?
1: या अल्लाह, तुम अपने काम से काम रखो ना, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं। और हाँ, मुश्ताक अगर अलग घर लेने को मान गया तो दोनों यहीं रहेंगे।
0: वादा बंद करो ये सब। तुम चाहती क्या हो?
1: मैं चाहती हूँ कि मुश्ताक इस घर में घर जमाई बनकर रहे।
0: वादा याद रखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। एक आबाद घर को उजाड़ रही हो, वो भी अपनी बेटी के घर को। वो मुश्ताक के साथ खुश है, और तुम उन्हें एक घर से अलग करके दुख क्यों देना चाहती हो?
1: ओफो, तुम अपनी बुद्धि को अपने पास रखा करो। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। और सुन लो, तुमसे कुछ पूछूं तभी कुछ कहा करो।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकिया की तीसरी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीतकार मोहनलाल, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अकरम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सुप्रिया और हरीश। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां की तीसरी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे। मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए कहा कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। सीबीआई ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके पहले कल भोपाल में सीबीआई ने करीब 7 घंटे तक उनके घर पर पूछताछ और तलाशी ली। गौरतलब है कि गिरबाला ट्विशा के सास और सेवानिवृत्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सतना, भिंड सहित 10 जिलों में तीव्र लू के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। देश भर में वर्षा और औसतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ब्रिस्टल में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में आज न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल मुकाबले में रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

पढ़ने योग्य लिखा जाए, इससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य पढ़ा जाए। इस विचार को लेकर आज का महिला सभा कार्यक्रम लेकर मैं हूँ दमयंती वाजपेयी, स्वीकारिए मेरा नमस्कार। बहनों, जब दुनिया में युद्ध रूपी आग फैलती है तो कुछ लोग अपने घर परिवार से दूर रहकर मानवता की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। वे किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति के प्रहरी बन जाते हैं। उनका उद्देश्य संघर्ष को रोकना नहीं वरन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ना होता है। ऐसे ही साहसी और समर्पित शांति सैनिकों के सम्मान में हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है, जो हमें शांति, सेवा, त्याग और मानवता का अमूल्य संदेश देता है। बहनों, हमारे देश का योगदान संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सदैव महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय सैनिकों ने अनेक देशों में जाकर साहस, अनुशासन और सेवा भाव का परिचय दिया है। भारतीय शांति सैनिकों की ईमानदारी और मानवता की भावना को सारी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखती है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा देश विश्व शांति के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। वर्तमान में कई जगह युद्ध, हिंसा, आतंकवाद और आपसी संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में तो शांति रक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वे हमें संदेश देते हैं कि समस्याओं का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि संवाद, धैर्य और सहयोग से संभव है। उनका जीवन त्याग, साहस और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। ये दिवस केवल सैनिकों का सम्मान करने का अवसर नहीं है वरन हमें अपने जीवन में भी शांति और सद्भाव अपनाने की प्रेरणा देता है। बहनों, यदि हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में प्रेम, सहनशीलता और एकता का वातावरण बनाएं, तो विश्व में भी शांति स्थापित करना आसान हो जाएगा। आज के दिन इस दिवस पर हमें उन सभी शांति रक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जो दूर देशों में रहकर मानवता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि शांति और एकता में होती है। जब पूरा विश्व मिलकर शांति का मार्ग अपनाएगा, तभी वसुदेव कुटुंबकम का सपना साकार होगा, तब होगा हर मैदान फतेह।

0: संजू। अभी हमने इस फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में सुना। शिखर अस्तित्व की रचना को संगीत से संवारा था विक्रम मॉन्ट्रोस ने। बहनों, चाहे भारत माँ हो या जन्म देने वाली माँ, माँ तो बस माँ है, जो बच्चे के दर्द को उसकी आवाज से पहले ही महसूस कर लेती है और हर परिस्थिति में अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी रहती है। उसकी ममता में सुकून है, उसकी दुआओं में शक्ति है और उसके आंचल में पूरी दुनिया का प्यार छिपा होता है। बहनों, सच कहा जाए तो माँ केवल जीवन देने वाली नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाली सबसे बड़ी शक्ति होती है। माँ का हमारे जीवन में और कितना महत्व है, ये जानने के लिए सुनते हैं वार्ता माँ का जीवन में महत्व। वार्ताकार हैं रागनी अग्निहोत्री।
1: बहनों, आज हम बात करेंगे माँ शब्द के ऊपर। इस संसार में यदि किसी शब्द में सबसे अधिक प्रेम, ममता, त्याग और करुणा समाई हुई है तो वह शब्द है माँ। माँ केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि जीवन की पहली गुरु, पहली रक्षक और पहली प्रेरणा होती है। जब एक शिशु इस संसार में जन्म लेता है तब सबसे पहले वह अपनी माँ की गोद में ही सुरक्षा और स्नेह का अनुभव करता है। माँ का हृदय समुद्र से भी गहरा, आकाश से भी विशाल और धरती से भी अधिक सहनशील होता है। माँ अपने बच्चे के लिए अनगिनत त्याग करती है। वह स्वयं दुख सहकर भी अपने बच्चों को चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। उसकी ममता

0: में कोई स्वार्थ नहीं होता। वह बच्चे की छोटी सी खुशी में प्रसन्न हो जाती है और उसके दुख में स्वयं टूट जाती है। माँ के बिना जीवन अधूरा और सूना लगता है। भारतीय संस्कृति में माँ को देवी के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मात्र देवो भव, अर्थात माँ को देवता के समान मानो। माँ का महत्व केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है। एक अच्छी माँ ही अच्छे संस्कार देकर आदर्श नागरिक तैयार करती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी माताओं के हाथ में होता है। माँ का अर्थ। माँ शब्द छोटा अवश्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विशाल है। माँ प्रेम, करुणा, धैर्य, त्याग और वात्सल्य का प्रतीक है। माँ वह होती है जो अपने बच्चे की हर पीड़ा को बिना कहे समझ लेती है। बच्चा जब बोलना सीखता है, तब उसके मुख से निकलने वाला पहला शब्द अक्सर माँ ही होता है। यह शब्द अपने आप में सुरक्षा, अपनापन और स्नेह का अनुभव कराता है। माँ और स्नेह का संबंध। माँ का प्रेम संसार के सभी रिश्तों से अलग होता है। उसका प्यार निस्वार्थ होता है। वह कभी अपने बच्चों से बदले में कुछ नहीं चाहती। माँ के प्रेम की विशेषताएं। निस्वार्थ प्रेम। माँ बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करती है। दूसरा, असीम धैर्य। तीसरा, त्याग की भावना। चौथा, ममता की करुणा। पांचवा, क्षमा और सहनशीलता। माँ बच्चे की छोटी सी तकलीफ में भी बेचैन हो जाती है। वह अपने बच्चे की खुशी के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार रहती है। अब हम बात करेंगे माँ के त्याग पर। माँ का जीवन त्याग से भरा होता है। वह अपने बच्चों के लिए अपने सुखों का त्याग कर देती है। माँ के त्याग के कुछ उदाहरण हम पेश करते हैं। माँ स्वयं भूखी रहकर बच्चों को भोजन कराती है, रात भर जाकर बच्चे की देखभाल करती है, अपने सपनों को छोड़कर बच्चों का भविष्य बनाना, कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को संभालना, माँ का त्याग शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ पहली गुरु के रूप में होती है। माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है। बच्चा बोलना, चलना, खाना और व्यवहार करना सबसे पहले माँ से सीखता है। माँ द्वारा दिए जाने वाले संस्कार, सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, अनुशासन, ईमानदारी, दया और प्रेम। यदि माँ अच्छे संस्कार देती है तो बच्चा जीवन में अच्छा इंसान बनता है। माँ और शिक्षा। माँ शिक्षा के महत्व को समझती है। वह अपने बच्चों को पढ़ाने, सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। कई बार गरीब परिवारों की माताएं स्वयं कठिन परिश्रम करती हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब हम बात करते हैं माँ और सुरक्षा पर। माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती है। चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, माँ का हृदय हमेशा उसकी चिंता करता है। सुरक्षा के रूप में बीमारी में देखभाल, गलत रास्ते से बचाना, नैतिक शिक्षा देना, कठिनाइयों में साथ देना। अब हम बात करेंगे माँ और भावनात्मक सहारा। जब व्यक्ति दुखी होता है तब माँ का स्नेह सबसे बड़ा सहारा बनता है। माँ अपने बच्चों की भावनाओं को समझती है और उन्हें हिम्मत देती है। माँ की गोद दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में माँ का महत्व। भारतीय संस्कृति में माँ का अत्यंत सम्मान दिया गया है। उदाहरण, धरती को धरती माँ कहा जाता है, देश को भारत माता कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है। यह हमारी संस्कृति में माँ के महत्व को दर्शाता है। धार्मिक दृष्टि से माँ का महत्व। सभी धर्मों में माँ को विशेष स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म माँ को देवी के समान माना गया है। इस्लाम में कहा गया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सिख धर्म माँ को सम्मान और सेवा का प्रतीक माना गया है। महान व्यक्तियों के जीवन में माँ की भूमिका। कई महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे उनकी माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही वीरता और देशभक्ति के संस्कार दिए। महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपनी माँ से सत्य और अहिंसा की शिक्षा प्राप्त की। APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया। माँ और समाज निर्माण। एक अच्छी माँ केवल अपने बच्चों का ही नहीं बल्कि अच्छे समाज का निर्माण करती है। यदि माँ बच्चों को अच्छे संस्कार देती है तो वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। माँ का संघर्ष। तो बहनों, अब हम बात करेंगे माँ के संघर्ष पर। माँ का जीवन आसान नहीं होता। वह अनेक कठिनाइयों का सामना करती है। संघर्ष के उदाहरण, आर्थिक समस्याएं, परिवार की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की शिक्षा, बीमारी और कठिन परिस्थितियाँ। इसके बावजूद माँ कभी हार नहीं मानती। कामकाजी माँ। आज अनेक महिलाएं घर और नौकरी दोनों संभाल रही हैं। चुनौतियाँ, समय का संतुलन, परिवार की देखभाल, कार्यस्थल का दबाव, फिर भी वे अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाती हैं। माँ और बेटी का रिश्ता। माँ और बेटी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। बेटी अपनी माँ से जीवन की अनेक बातें सीखती है। माँ और बेटे का रिश्ता। बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए वह हमेशा बच्चा ही रहता है। वृद्धावस्था में माँ की स्थिति। आजकल कई लोग वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करने लगे हैं। यह अत्यंत दुखद है। हमारा कर्तव्य माँ का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उन्हें प्रेम देना, उनकी भावनाओं को समझना। माँ और प्रकृति। माँ की तुलना अक्सर प्रकृति से की जाती है। कारण, धरती की तरह सहनशील, नदी की तरह निर्मल, वृक्ष की तरह देने वाली। साहित्य में माँ, कवियों और लेखकों ने माँ के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। प्रसिद्ध पंक्तियाँ, माँ की ममता का नहीं कोई मोल, उसके चरणों में बसता है संसार का अनमोल। माँ का बच्चों का कर्तव्य, बच्चों का कर्तव्य है कि वे अपनी माँ का सम्मान करें। बच्चों को क्या करना चाहिए? माँ की आज्ञा मानना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उन्हें दुख न देना, वृद्धावस्था में उनका सहारा बनना। माँ के बिना जीवन अधूरा लगता है। माँ के बिना जीवन सूना, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। माँ का स्नेह जीवन भर व्यक्ति के साथ रहता है। आधुनिक समय में माँ की भूमिका, अब हम इस पर बात करेंगे। आज के बदलते समय में माँ की जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। आधुनिक माँ की जिम्मेदारियाँ, बच्चों को संस्कार देना, तकनीक का सही उपयोग सिखाना, शिक्षा और नैतिकता में संतुलन बनाना। माँ और राष्ट्र निर्माण। एक शिक्षित और संस्कारी माँ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा जाता है, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। माँ का सम्मान क्यों आवश्यक है? माँ हमारे जीवन की सबसे बड़ी शुभचिंतक होती है। उसका सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सम्मान के तरीके, मधुर व्यवहार, समय देना, उनकी भावनाओं का आदर, सेवा और देखभाल। माँ और प्रेरणा। माँ हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वह कठिन समय में साहस प्रदान करती है। माँ की महानता की बात करते हैं अब हम। माँ की महानता का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। वह स्वयं दुख सहकर भी बच्चों को खुश देखना चाहती है। माँ जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। उसका प्रेम, त्याग, ममता और संघर्ष अतुलनीय है। वह परिवार की नींव और समाज की शक्ति होती है। माँ बच्चे को केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि उसे संस्कार, शिक्षा और जीवन जीने की दीक्षा भी प्रदान करती है। हमें सदैव अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। माँ का स्थान संसार में सबसे ऊंचा है। उसकी ममता का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। यदि जीवन एक सुंदर कविता है तो माँ उसकी सबसे मधुर पंक्ति है। यदि जीवन एक दीपक है तो माँ उसकी उज्ज्वल ज्योति है। यदि जीवन एक बगीचा है तो माँ उसकी सुगंधित मिट्टी है। माँ के चरणों में ही संसार का सबसे बड़ा स्वर्ग बसता है।
1: माँ का जीवन में महत्व। अभी हम ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी रागिनी अग्निहोत्री। बहनों, आज की भागम भाग भरी जिंदगी में कामकाजी बहनों के सामने बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। घर की देखभाल, बच्चों की चिंता, कार्यस्थल का दबाव के साथ ही परिवार और समाज की अपेक्षाएं, और इन सब के बीच कई बार मन अनावश्यक सोच में उलझ जाता है। छोटी छोटी बातों को बार बार सोचते रहना, भविष्य की चिंता या फिर पुरानी बातों को मन में दोहराना, ये सब ओवरथिंकिंग कहलाता है, जो धीरे धीरे मानसिक शांति और आत्मविश्वास को प्रभावित करने लगता है। महिलाएं स्वभाव से संवेदनशील और जिम्मेदार होती हैं। वे हर रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाना चाहती हैं, लेकिन कई बार यही संवेदनशीलता अधिक सोच का कारण बन जाती है। लोग क्या कहेंगे, यदि ऐसा हो गया तो मैं सब कुछ सही कर पा रही हूँ या नहीं, इस तरह के विचार मन को थका देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव, चिंता, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। तो बहनों, ओवरथिंकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना सीखें। जो बात हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में बार बार सोचने से समाधान तो निकलता नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि हर परिस्थिति का हल समय के साथ निकलता है, इसलिए अनावश्यक चिंताओं को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। बहनों, पूर्णता की अपेक्षा जीवन को कठिन बना देती है। हर व्यक्ति से कभी न कभी गलती तो होती ही है, इसलिए स्वयं को दोष देने के बजाय अपनी अच्छाइयों पर भी ध्यान दीजिए। आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति ओवरथिंकिंग को कम करने में बहुत मदद करती है। अपनी भावनाओं को मन में दबा कर न रखें। किसी विश्वसनीय मित्र या परिजन से खुलकर बात कीजिए। जब मन की बातें साझा होती हैं, तो मन का बोझ हल्का महसूस होता है। अपने लिए समय जरूर निकालिएगा। योग, ध्यान, प्राणायाम, पुस्तक पढ़ना या फिर अपनी पसंद का कोई काम करना मन को शांति देता है। और हाँ, अपनी पसंद के गीत भी सुनिए। लेकिन आज तो हम आपको एक ऐसा गीत सुनवा रहे हैं जिसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। ये गीत 30 से भी ज्यादा फिल्मों के नाम से बना है। आइए सुनते हैं।

0: चोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम

एक दूजे के लिए। इस फिल्म का गीत हमने एसपी वाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुना। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। बहनों, तपती धरती, गर्म हवाएं और बढ़ता हुआ तापमान, गर्मी का मौसम अपने साथ ये सभी चुनौतियां लेकर आता है। दो भर की लू तो ऐसी महसूस होती है मानो प्रकृति आग बरसा रही हो। तो इस मौसम में छोटी सी भी लापरवाही शरीर को कमजोर और बीमार बना सकती है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। इसलिए गर्मी सहना ही नहीं बल्कि उससे बचाव ही बहुत आवश्यक है।

दिनों दोपहर में सूर्य की किरणें बहुत ही तेज हो जाती हैं, इसलिए इस समय अनावश्यक रूप से बाहर किसी को भी ना जाने दें। ऐसी गर्मी से शरीर में पानी की कमी जल्दी हो जाती है, तो केवल प्यास लगने पर ही नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। साथ में नींबू पानी, सत्तू शरबत, आम पना, नारियल पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थ शरीर को ठंडक देते हैं और ऊर्जा बनाए रखते हैं। भोजन भी मौसम के अनुरूप हल्का, ताजा और पौष्टिक लीजिए। मौसमी फल, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और दही का उपयोग जरूर कीजिए। किसी को भी तेज बुखार, चक्कर, अधिक प्यास या बेहोशी जैसी समस्या होने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कीजिए और स्वस्थ बने रहिए। और अब चलते चलते कहना चाहूंगी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। फर्क सिर्फ इतना है कि समय के अनुसार कुछ लोगों का मन बदल जाता है और कुछ लोगों के दिन। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए दमयंती वाजपेयी को। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1:27 होने को है, वक्त है अंतराल का।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहाँ संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1:30 हो चुके

हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आज आप सुनेंगे भगवान सिंह ठाकुर को, रजनी भास्कर को और मथुरा प्रसाद सुमन को।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे दीपाली भोजक के गाए भजन। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: इसके साथ ही दीपाली भुजक के गाय भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: हो रही भारत में तैयारी।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है कलंक फिल्म से, आवाज श्रेया घोषाल और वैशाली भाड़े की। अमिताभ भट्टाचार्य के गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

कल हो ना हो। लीजिए सुनिए फिल्म से सोनू निगम को, जावेद अख्तर का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं।

0: प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक पर है।
1: मध्यप्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इतने आश्वस्त करना चाहूंगा, किसान कल्याण के सारे काम सरकार लगातार करती रहेगी।
0: त्रिशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी, जिसे जज ने मंजूर कर लिया। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर के एक मकान में छापा मारकर अवैध कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 10 लोगों को हिरासत में लिया। मौके से ऑफ कप ब्रांड की करीब 1.5 करोड़ रुपए की नशीली सिरप, 700 से ज्यादा पेटियां और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गईं। मकान मालिक फरार है और एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाकर अपलोड करना जरूरी होगा। रीवा में आज जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। कार्यशाला का मकसद ग्राम पंचायतों को नल जल योजनाओं का संचालन सौंपना और सरपंचों तथा सचिवों के साथ अनुबंध प्रक्रिया पूरी करना था। भारत के लिए पेट्रोलियम लेकर आ रहा तेल टैंकर निसोस केरोस हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और उसके 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। ये जहाज 21 मई को शारजाह से रवाना हुआ था और आज सुबह उत्तरी अरब सागर में देखा गया। ईरान ने इस महीने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क वसूलने की घोषणा की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अवैध बताया है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अजब रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में 46.5 डिग्री तापमान के साथ भीषण गर्मी का कहर है तो दूसरी तरफ ग्वालियर और मुरैना में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर समेत 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से राहत मिलने के आसार है। वहीं 30 मई से 1 जून के बीच प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के आष्टा में आगामी जून माह में 2 से 8 जून तक राष्ट्रीय स्तर का संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बैतूल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

दिल्ली से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर

0: क्षेत्र दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने,

सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को चार दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और

0: प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है जहर फिल्म के इस गीत की, जिसको आवाज दी है श्रेया घोषाल ने। गीत सईद कादरी का और संगीत रूप कुमार राठौर का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप।

सोनू के टीटू की स्वीटी लीजिए सुनिए इस फिल्म से अरिजीत सिंह और रोचक कोहली को, कुमार का गीत और रोचक कोहली का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश राजी फिल्म की, जिसे आवाज़ दी है हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन ने, गुलजार का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, इकबाल अहमद, नुरेशा बेगम कापसीदा नई दिल्ली से, नशरीन आज़ाद, आमना आसमा और इमरान अहमद। साथ ही कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली।

गुलजार का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, इकबाल अहमद, नुरेशा बेगम कापसीदा नई दिल्ली से, नशरीन आज़ाद, आमना आसमा और इमरान अहमद। साथ ही कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली।

अगली फरमाइश भेजी है विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ओम प्रकाश नेमा, श्रीमती किरण नेमा, आकाश, विकास, नंदिनी एवं समस्त नेमा परिवार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सबने सुनना चाहा है माय नेम इज खान फिल्म का ये नगमा शफकत अमानत अली की आवाज में, निरंजन एंगर का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कुछ कुछ होता है। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की आवाज़ों में, समीर का गीत और जतिन ललित का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत प्रिंस और एकांश गवाणकर। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये नगमा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एकजुट हैं। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। ट्रीशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी गई, जिसे जज ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर के एक मकान में छापा मारकर अवैध कफ सिर्फ फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा है कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। और रीवा में आज जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30, रात 8:15 और रात 9:45। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00। रात 9:30 खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद सोहेब की वार्ता, कौन बनेगा IPL 2026 का विजेता। 10:00 आनंद लीजिएगा आपकी फरमाइश का। और 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन, राग होगा भाव कौंस।

ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगी। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत सुगम संगीत।

0: और अंत में सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में मथुरा प्रसाद सुमन का गाया ये गीत।
1: के भैया बर के रइयो रे, भैया बर के रइयो रे।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे दीपाली भुजक के गाए भजन। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत लोफर फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अनुराग फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर को, आनंद पक्षी का गीत और एस डी बर्मन का संगीत।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और आर डी वर्मन का संगीत। इसके बाद आप सुनेंगे अमर प्रेम फिल्म का ये नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, जिसमें हम सुनवा रहे हैं चित्रपट संगीत। अब सुनिए लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में इज्जत फिल्म का ये नगमा। उसके बाद आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वासना फिल्म का गीत।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 3:58 हुए हैं, वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 1.4 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 2,585 रूपए न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रति क्विंटल 40 रूपए बोनस का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। भारत के लिए पेट्रोलियम लेकर आ रहा तेल टैंकर निसोस केरोस हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। उसकी 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। ये जहाज 21 मई को शारजाह से रवाना हुआ था, आज सुबह उत्तरी अरब सागर में देखा गया। प्रदेश में कक्षा 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। मंत्रालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन का गायन 1 जून को प्रातः 10:15 बजे किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने वल्लभ भवन, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन के सभी अधिकारी कर्मचारियों को गायन में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर समेत 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत नीलकमल फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़, साहिल लुधियानवी का गीत और रवि का संगीत।

और अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में ब्रह्मचारी फिल्म का ये नगमा, हसरत जयपुरी का गीत और शंकर जयकिशन का संगीत।

तुमसे अच्छा कौन है। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में हसरत जयपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

मन हरदास और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में सुनिए विश्वास फिल्म का ये नगमा, गुलशन बाबरा का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक सिसकियां की तीसरी कड़ी।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की तीसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सायरे के वालिद पैगाम भिजवाते हैं कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। ये खबर मिलते ही मुश्ताक सायरे को उसकी अम्मी के पास छोड़ आता है, लेकिन खुद वहां नहीं रुकता। अब आगे।

0: सारे
1: आ गए, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी।
0: ऐसी बात नहीं है सारे, मैं तो पहले ही आना चाहता था, पर काम ही ऐसा पड़ गया कि फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी।
1: अच्छा जी, तो अब आपको फुर्सत मिल गई।
0: अरे तुम तो मजाक करने लगी।
1: नहीं जी, मैं क्यों मजाक करूंगी।
0: सारे जिस काम से आया था वो तो मैंने तुमसे कहा ही नहीं।
1: क्या
0: हाँ मैं अभी तुम्हें लेने आया हूँ।
1: अभी?
0: हाँ क्यों, तुम जाना नहीं चाहती?
1: नहीं, ऐसा नहीं है, पर अभी कुछ दिन और रह लेती तो।
0: सारे अम्मी कह रही थी कि घर बड़ा उदास सा लगता है और
1: अच्छा, तो तुम अम्मी के कहने पर आए हो, अपने मन से नहीं।
0: सारे काम का बोझ पड़ गया है और काम छोड़कर आना क्या अच्छा होता।
1: तो क्या अब काम नहीं है?
0: सारे तुम मुझे नाराज लगती हो। हाँ तुम्हारी नाराजगी भी जायज है, इन दिनों में मैं तुमसे मिलने जो नहीं आ सका।
1: तुम्हें मेरा ख्याल भी है?
0: सारे तुम मेरा प्यार हो।
1: अगर ऐसा होता तो तुम इतने दिनों में कम से कम मिलने तो आ सकते थे ना।
0: अब अपना काम तो है नहीं सारे कि जब चाहे बंद कर दो, मुझे ग्राहकों को देखना होता है
1: और मुझे काम काम काम। क्या मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे लिए?
0: तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सारे? तुम मेरी जिंदगी हो, अगर मैं काम कर रहा हूं दो पैसे जोड़ रहा हूं तो किसके लिए, तुम्हारे लिए ही ना।
1: ऐसा भी पैसा किस काम का जो हमारे बीच दूरियां बढ़ा दे, आपको मिलने का मौका भी ना दे।
0: अब ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम मेरे काम को ही धत्ता बताई जा रही हो।
1: ऐसा नहीं है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दो पैसे जोड़ो, पर ये नहीं चाहती कि उन पैसों की होड़ में मुझे ही भूल जाओ।
0: सारे तुम्हें भूलने की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन क्या करूं, काम ही ऐसा है कि छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और तुम्हारे घर भी आना हो तो एक दिन की छुट्टी हो जाती है, आज बड़ी दिक्कत से आ पाया हूं यहां।
1: अगर इतनी ही दिक्कत थी तो ना आते।
0: ओ, तुम अभी भी नाराज हो।
1: नहीं, मैं बस।
0: देखो सारे अभी काम का वक्त है, काम बढ़ गया है, ऐसे में काम छोड़कर आना ठीक नहीं लगता।
1: चलो छोड़ो इन बातों को, अब जल्दी से बताओ क्या खाओगे।
0: थोड़ी देर में चलेंगे सारे, सो खाने पीने का चक्कर छोड़कर तुम तैयार ही हो जाओ।
1: कौन जा रहा है अभी? अभी कोई नहीं जा रहा। मैं चाय लाती हूँ। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा रही। अभी अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं मुझे आए हुए, और अभी चली चलूं? इतने दिन तो अम्मी की तीमारदारी में गुजर गए, मायके का मजा तो अभी लिया ही नहीं। देखो कुछ दिन और रह लूं, फिर चलूंगी तुम्हारे साथ।
0: देखो सारे मायके में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं होता, और अम्मी कह रही थी कि तुम्हारे बिना उनका मन नहीं लगता, घर भी उदास उदास सा उजड़ा उजड़ा सा लगता है।
1: घर तो उदास लगेगा ही, आखिर घर लोगों से ही तो बनता है। वैसे मुझे भी फजी अम्मी की याद आती है, पर क्या करूं, यहां भी तो दो चार दिन रुकने का मन कर रहा है ना।
0: सारे तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उसे तुम्हें निभाना चाहिए, और मेरी मानो तो अभी मेरे साथ चलो।
1: अम्मी से भी तो पूछ लूं वो क्या कहती हैं। लो अम्मी भी आ गई, आप लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: सलाम अम्मी।
2: सलाम।

0: सलाम बेटे, खुश रहो। करीम भाई कैसे हैं?
1: सब ठीक है अम्मी, आपकी तबीयत को पूछ रहे थे।
0: अब ठीक हूँ, सारे ना आई होती तो शायद ही बच पाती।
1: ऐसा क्यों सोचती हैं आप, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है।
0: एक बीमार को दवा से ज्यादा तीमारदारी की जरूरत होती है बेटा, आज सारे एक सहारा है।
1: आखिर बेटी है आपकी, अगर औलाद दुख में साथ ना देगी तो कब देगी।
0: अब तो तुम ही लोगों का सहारा है।
1: आप ऐसा क्यों सोचती हैं अम्मी?
0: किस्मत की मारी और सोच भी क्या सकती है।
1: आप ऐसा ना कहें।
0: क्यों ना कहूं, मेरी किस्मत ठीक होती तो सारे के अब्बा का काम ठीक ना चलता, किसी की आस तो ना देखनी पड़ती।
1: अम्मी, सुख दुख तो सारा जीवन चलता रहता है, पर इससे कोई बच भी तो नहीं सकता। पर दुख ज्यादा दिन नहीं रहते, खुशियों का सवेरा तो आता ही है।
0: हमारी छोड़ बेटे, अपनी बता, काम तो बेहतर चल रहा है।
1: जी अम्मी, बेहतर है।
0: आमदनी तो अच्छी होती होगी।
1: आमदनी ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, चार जनों का परिवार अच्छे से चल जाता है।
0: इतने से गुजारा तो चल जाता है, पर भविष्य के लिए दो पैसे भी तो जोड़ने चाहिए।
1: अम्मी, मेहनत से जो मिल जाता है मैं उसी में संतुष्ट हूँ।
0: अल्लाह ताला इसी में बरकत दे।
1: ये तो आप सब लोगों की दुआएं हैं।
2: अम्मी चाय।
0: सारे बेटे, मुश्ताक के लिए कुछ नमकीन भी तो ला, कितने दिनों बाद आया है ये।
2: जी अभी लाई अम्मी।
1: अरे रहने दो सारे, चाय काफी है।
0: काफी क्या है, हम गरीब लोग ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आज आए हो तो कुछ खातिरदारी तो करनी ही होगी ना।
1: आप परेशान ना हो अम्मी, मैं कोई दूर का मेहमान थोड़ी ना हूँ।
2: अम्मी ये मुझे ले जाने के लिए कह रहे थे।
0: अरे ऐसे कैसे ले जाओगे बेटा, आज आए हो, दो चार दिन तो रुको फिर ले जाना।
1: अब नहीं नहीं अम्मी, मेरा तो रुकना मुमकिन ना होगा।
2: आज की रात तो रुक लो, कल सुबह चले जाना।
1: नहीं सारे, मैं नहीं रुक पाऊंगा, अगर तुम साथ चलो तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा।
0: अरे एक दिन रुकने से क्या फर्क पड़ता है बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है।
1: वो तो है अम्मी, पर काम बहुत है और काम छोड़कर रुकना मुनासिब भी नहीं।
0: एक रात रुक जाते।
1: नहीं अम्मी, यह मुमकिन नहीं।
0: बेटा अगर तुम एक दिन भी ना रुके तो आस पास के लोग हंसेंगे हम पर कि दामाद एक दिन भी नहीं रुकता।
1: अब ऐसा क्यों सोचती हैं आप, क्या दामाद घर बैठा रहे ये लोगों को अच्छा लगेगा, और यूं तो घूमता नहीं कि लोग बदनामी करें।
0: समाज और बिरादरी को तुम नहीं जानते कि वो क्या सोचते और क्या बोलते हैं।
1: अम्मी मैं इन दकिया नुसी बातों पर एतवार नहीं करता, जो हमारे लिए बेहतर हो हमें वही करना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर या दिखावे के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान करना, ये भला कहाँ की समझदारी होगी।
0: तुम्हारा भी कहना सही है बेटा, पर हमें तो रहना इसी समाज में है और जवाब भी इसी समाज को देना होगा।
1: मैं सारे को लेने आया था अम्मी, अब मेरे पास इतना समय नहीं है, इस बात को तो आप समझेंगी ना।
0: सारे तुम्हारी पत्नी है बेटा, मैं उसे क्यों कर रोकूंगी, तुम जब चाहो ले जाओ। पर सारे बेटी है इस घर की, कुछ दिन और रह लेती तो अच्छा रहता, मेरा मन करता है कि बेटी मेरे पास रहे।
1: तो सारे अभी मेरे साथ नहीं जा रही है।
0: क्या कहूँ, थोड़े दिन और रुक जाती तो।
1: ठीक है अम्मी, जैसा आप बेहतर समझे, सारे को जब आना हो खबर भेज दीजिएगा।

0: तो तुम आज नहीं रुकोगे?
1: नहीं अम्मी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा रुकना मुमकिन नहीं।
2: मुश्ताक,
1: सलाम अब्बू।
3: सलाम, खुश रहो बेटे, कब आए?
1: अभी।
3: घर में सब कुशल तो है?
1: हाँ, घर में सब ठीक है। अम्मी बार बार कह रही थी कि घर उदास सा लगता है, सो सारे को लेने आ गया था।
3: अच्छा अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है बेटा?
1: जी ठीक है अब्बू, अभी तो बाजार ठीक है, पर बाजार का कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी तेज होता है और कभी मंदा।
3: हाथों का काम है, अल्लाह इसी में बरकत दे। ईमानदारी से काम करो बेटा।
1: हाँ अब्बू, पैसे कम हो पर सब्र होना चाहिए, और आप लोगों की दुआएं साथ हैं तो सब ठीक ही होगा।
3: ठीक कहते हो बेटा, कम पैसा हो पर संतोष हो, रोजगार रहे

0: बार बार कह रही थी कि घर उदास सा लगता है, सो सारे को लेने आ गया था।
1: अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है बेटा?
0: जी ठीक है अब्बू, अभी तो बाजार ठीक है, पर बाजार का कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी तेज होता है और कभी मंदा।
1: हाथों का काम है, अल्लाह इसी में बरकत दे। ईमानदारी से काम करो बेटा।
0: हाँ अब्बू, पैसे कम हो पर सब्र होना चाहिए, और आप लोगों की दुआएं साथ हैं तो सब ठीक ही होगा।
1: ठीक कहते हो बेटा, कम पैसा हो पर संतोष हो, रोजगार रहे, यही बहुत है आज के समय में।
0: अब्बू, बाजार में काम की कमी थोड़ी ही है।
1: हाँ बेटा, अब इस उम्र में जो भी कर रहा हूं वही ठीक है। कारीगर के हाथ पैर जितने चलें उतने ही अच्छे हैं।
0: हाँ अब्बू, अब तो बाजार बदल रहा है, बाजार के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को क्यों नहीं बदलते अब्बू?
1: बेटा, मुझे अपने आप को बदल कर कौन सा विदेश में जाकर बस जाना है? अब रही सही जिंदगी भी यहीं पर कट जाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जन्नत यहीं से नसीब हो।
0: अब्बू जान, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो कश्मीर के हालात भी कितने अच्छे हो गए हैं कि किसी को रोजगार के लिए इस जन्नत को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है।
1: जो लोग चले गए हैं वो भी एक ना एक दिन अपने घरों को वापस लौट ही आएंगे। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं बेटा, जब मेरे बचपन का साथी शर्मा भी अपने पूरे परिवार के साथ लौट कर आ जाए।
0: अब्बू जान, वो जरूर लौट कर आएंगे, क्योंकि अब तो हुकूमत हमारी इस वादी में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे साधन जुटा रही है, और बाहर की कंपनियां भी नए उद्योग स्थापित कर रही है।
1: हाँ बेटा, नौजवानों में जो आक्रोश था वही भटकाव की जड़ था। अब जबकि लोगों को धीरे धीरे सुकून मिल रहा है तो भटकाव भी खत्म हो गया है। अब लोग अपनी वादी से जुड़ने लगे हैं।
0: हाँ अब्बू, आप सही कहते हैं, हमारी उम्र के लोग बाजार की चकाचौंध में डूब से गए थे, हमारी संस्कृति खत्म सी हो रही थी। अब्बू, उनके अंदर इस जमीन से लगाव छूटता सा जा रहा था, और यही एक बड़ी वजह थी कि हम अपने यहाँ के बाजारों को नहीं बचा पा रहे थे।
1: सही कहते हो मुश्ताक, इन हाथों में रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, अब कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी।
0: हाँ अब्बू,
1: वैसे हमारी हुकूमत ने इसकी पहल कर दी है।
0: हाँ अब्बू, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं, जिंदगी जैसी चलती है वैसी चलती रहे, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो बस दुआ कर सकते हैं अपनों की सलामती के लिए।
1: सही कहते हो बेटा, मैंने तो चौकीदारी करके ही जिंदगी गुजार दी, अब तुम लोगों के लिए ही दुआ करूंगा।
0: अच्छा अब्बू, तो मैं अब चलूंगा, नहीं तो बहुत देर हो जाए।
1: बेटा, सारे भी जा रही है?
0: नहीं अब्बू, वो कुछ दिन और रुकना चाहती है।
1: तुम नहीं रुकोगे?
0: नहीं अब्बू, मुझे जाना होगा।
1: अच्छा बेटा, करीम और फजी को मेरा सलाम कहना।
0: जी अब्बू, कह दूंगा। अच्छा अब्बू, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज बेटा।

0: सारे खाना खा ले, बुत्सी बनकर क्यों बैठी है?
1: खाती हूँ अम्मी।
0: मैं जानती हूँ तू मुश्ताक के बारे में ही सोच रही है।
1: अम्मी मैं वो,
0: मैं तेरी माँ हूँ मेरी बच्ची, तेरे दिल की बात मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा?
1: अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है।
0: तू फिर मुकर रही है, मुश्ताक आज नहीं रुका, तू यही सोच रही है ना?
1: वो उनको काम था अम्मी।
0: काम? काम तो हमेशा रहता है बेटी, पर क्या वो इतने दिन बाद आया था? तेरे कहने से एक दिन रुक नहीं सकता था? एक दिन में कितना नुकसान हो जाता उसका?
1: अम्मी अब उनका काम ही ऐसा है तो क्या करें?
0: मन को बहलाने की कोई जरूरत नहीं है सारे, मुश्ताक चाहता तो रुक सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों
1: अम्मी? वो
0: बस कर, सच तो ये है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता।
1: नहीं अम्मी ऐसा नहीं है, वो मुझे प्यार करते हैं अम्मी।
0: तू अब भी यही कह रही है? अगर मुश्ताक को तुझसे प्रेम है तो क्या वो एक दिन रुक नहीं सकता? और सिर्फ मुश्ताक ही तो काम नहीं करता, अब खजरी को ही लो।
1: कौन खजरी?
0: अरे वो रजिया की बेटी, उसकी तो चांदी हो गई।
1: क्यों?
0: खजरी की शादी एक दुकानदार से करवा दी है और वो खजरी के इशारों पर घूमता है, अच्छा पैसा कमाता है और रजिया को भी पैसे देता है। खजरी के साथ साथ रजिया भी खुश है, उसके अच्छे दिन आ गए। और एक मैं हूँ जो।
1: क्यों अपने को कोसती हो अम्मी?
0: कोसूं ना तो क्या करूं?
1: अम्मी सबका नसीब एक जैसा तो नहीं होता।
0: इसमें नसीब का क्या? खजरी अपने पति से प्रेम करती है और उसको अपने इशारों पर रखती है। वो दिन कहे तो दिन और रात कहे तो रात। और एक तेरा पति है जो बार बार कहने पर भी एक रात के लिए नहीं रुका, और तू कहती है कि वो तुझसे प्रेम करता है।
1: अम्मी एक रात ना रुकने से प्यार कम तो नहीं होता, और मैं खजरी की तरह अपने पति को आगे पीछे घुमाऊं ये मुझे पसंद नहीं।
0: मेरा नसीब ही खोटा है जो मेरी बेटी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती।
1: तुम ऐसा क्यों सोचती हो अम्मी?
0: बेटी है तू मेरी, और तेरी खुशी के लिए ही कहती हूँ, तुम्हें मुश्ताक को अपने वश में करना चाहिए, तू जो कहे उसे माने।
1: मगर अम्मी ये मुमकिन नहीं है।
0: हाँ ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक करीम और फजी उस घर में हैं, और उनके रहते मुश्ताक तुम्हारा पति नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें मुश्ताक को उस घर से अलग रखना होगा।
1: मुश्ताक नहीं मानेगा अम्मी।
0: सारे अगर ऐसा नहीं हुआ तो करीम व फजी तुझको नौकरानी की तरह काम करवाते रहेंगे और खुद मुश्ताक के पैसों पर ऐश करेंगे।
1: अम्मी ये मुमकिन है क्या?

0: मुश्ताक से पहले बात करनी होगी अम्मी।
1: ठीक है, अब की मुश्ताक आए तो उससे साफ साफ कह दो कि तुम उस घर में नहीं रह सकती और अलग घर लेकर रहे। उस पर दबाव बनाओ ताकि वह मान जाए। घर खोजने में दिक्कत हो तो यहाँ आ जाए।
0: ठीक है अम्मी, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगी ताकि मेरा मुश्ताक हमेशा मेरे पास रहे।
1: ठीक है, अब खाना खा ले और सो जा, रात भी बहुत हो गई है।
0: हाँ अम्मी।

0: प्रातः, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो।
1: क्या अच्छा नहीं कर रही?
0: अपनी ही बेटी के घर में क्यों आग लगा रही हो?
1: या अल्लाह, मैं उसके घर में आग नहीं लगा रही, उसका घर बना रही हूँ।
0: वादा घर जोड़ने से बनता है, तोड़ने से नहीं। और तुम जो कर रही हो या करवाना चाहती हो, उससे सारे का घर नहीं बनेगा, बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने का रास्ता दे रही हो।
1: तुम चुप रहा करो। अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सके और जो कर सकता है उसके रास्ते में बाधक बनते हो।
0: क्या कह रही हो फाता? सारे तेरी बेटी है, उसको सही सलाह दिया करो, ताकि वो घर को संभाले, ना कि घर को बर्बाद करे। क्यों तुम दोनों की जिंदगी तबाह करने पर तुली हो?
1: या अल्लाह, तुम अपने काम से काम रखो ना, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं। और हाँ, मुश्ताक अगर अलग घर लेने को मान गया तो दोनों यहीं रहेंगे।
0: वादा बंद करो ये सब। तुम चाहती क्या हो?
1: मैं चाहती हूँ कि मुश्ताक इस घर में घर जमाई बनकर रहे।
0: वादा याद रखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। एक आबाद घर को उजाड़ रही हो, वो भी अपनी बेटी के घर को। वो मुश्ताक के साथ खुश है और तुम उन्हें एक घर से अलग करके दुख क्यों देना चाहती हो?
1: ओफो, तुम अपनी बुद्धि को अपने पास रखा करो। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। और सुन लो, तुमसे कुछ पूछूं तभी कुछ कहा करो।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की तीसरी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीतकार मोहनलाल, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अकरम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सुप्रिया और हरीश। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना सिसकियां धारावाहिक का तीसरा भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम

0: मीडियम वेव 188 यानी 1593 किलो हर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूँ में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 1.4 करोड़ मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने गेहूँ उत्पादक किसानों को 2585 रूपए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 40 रूपए बोनस का लाभ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 तक चलेंगी और सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहारा में कजाकिस्तान 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का है।

सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको सिर्फ एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इसी सुविचार के साथ युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी मित्र शिल्पी अग्रवाल, तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं, वार्ता और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए गीत संगीत। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की पहली चर्चा से, जिसका विषय है ड्रग्स एवं नशे का सेवन ना करें। साथियों, आज के समय में नशा समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। चाहे वह शराब हो, तंबाकू हो, गुटखा हो या फिर ड्रग्स, हर प्रकार का नशा व्यक्ति के शरीर, मन, परिवार और भविष्य को नुकसान पहुँचाता है। शुरुआत अक्सर शौक या दोस्तों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत बन जाती है। नशे का सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ रहा है। जो युवा देश का भविष्य हैं, वे नशे की गिरफ्त में आकर अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर को बर्बाद कर रहे हैं। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कम करता है और कई बार अपराध तथा हिंसा की ओर भी ले जाता है। साथियों, नशा करने से फेफड़े, लीवर, दिल और दिमाग प्रभावित होते हैं। कई बार कैंसर, हार्ट अटैक या मानसिक बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ड्रग्स एवं नशे के सेवन से गुस्सा, तनाव, डर, अवसाद और याददाश्त कमजोर की समस्या बढ़ सकती है। इससे कैरियर व हमारे काम पर भी असर पड़ता है। साथियों, ड्रग्स एवं नशे के सेवन से झगड़े, आर्थिक परेशानी और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। एक नशे की लत व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी कमजोर बना देती है। कई परिवार टूट जाते हैं और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य अंधकार में चला जाता है। साथियों, ड्रग्स एवं नशे का सेवन न करें। इसके लिए अपना खाली समय उन गतिविधियों में बिताएं जो आपकी पसंद की हों, जैसे कि पेंटिंग, खेल, संगीत या किताबें पढ़ना। नियमित रूप से व्यायाम और योगा करने से शरीर में प्राकृतिक रूप से एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे नशे की तलब कम होती है। साथियों, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस, परिवार के सहयोग और सकारात्मक सोच से करना चाहिए। माता पिता, शिक्षक और समाज की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों और युवाओं को सही मार्गदर्शन दें। साथियों, ये तो हमने छोटी सी चर्चा की ड्रग्स एवं नशे का सेवन न करें, और अब आपका मनोरंजन करवाते हैं इस मधुर गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आपने सुना मन फिल्म का ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीतकार थे समीर और संगीतबद्ध किया था संजीव दर्शन ने। साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में ले चलते हैं आपको एक और चर्चा की ओर। साथियों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के सच्चे मसीहा और भारतीय राजनीति में सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर चर्चा करेंगे। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हर साल 29 मई को मनाई जाती है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे उस किसान की आवाज थे जो खेतों में पसीना बहाता है और गांव में बसता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित किया। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर वर्ष 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गाँव में हुआ था। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होने के कारण उन्होंने किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा और समझा। यही कारण था कि आगे चलकर उनकी राजनीति का केंद्र गांव, किसान और कृषि बने। उन्होंने वर्ष 1923 में आगरा कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर 1925 में इतिहास में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। साथियों, चौधरी चरण सिंह का स्पष्ट विचार था कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने किसानों को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। साथियों, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कानून ने लाखों किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाई और उन्हें भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ। वे बड़े उद्योगों की अंधाधुंध नीतियों के बजाय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देते थे। वे अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। सत्ता के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उनके व्यवहार में विनम्रता व ईमानदारी बनी रही। साथियों, वर्ष 1979 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने।
1: साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो,
0: उनके सिद्धांत व विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सत्ता का नहीं। दूसरा, किसान केवल अन्नदाता

0: ही नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ है। तीसरा, सादगी, ईमानदारी और नैतिकता ही सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का निधन 29 मई सन 1987 को हो गया था। उनकी समाधि स्थल जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है, भारत माता के ऐसे महान सपूत को हमारा सत सत नमन।
0: साथियों, ये तो मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर, और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ले चलते हैं आपको एक वार्ता की ओर, जिसका विषय है गर्मी में जल संरक्षण। वार्ताकार हैं भूमिका चतुर्वेदी।
2: जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। प्रकृति पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे तथा सभी जल जीवधारी जल पर निर्भर करते हैं। जल केवल पीने के लिए ही नहीं आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन, सफाई, भोजन निर्माण तथा दैनिक जीवन के लगभग हर कार्य के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जल को जीवन कहा जाता है। गर्मियों का मौसम आते ही जल का आवश्यक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस मौसम में तापमान बढ़ने के लिए नदियाँ, तालाब और कुएं सूखने लगते हैं। भूजल स्तर नीचे चला जाता है तथा लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। गांवों में महिलाएं कई किलोमीटर दूर तक जाकर पानी लाती हैं। शहर में पानी की सप्लाई कम हो जाती है और लोगों को टैंकर पर निर्भर होना पड़ता है। कई स्थानों पर जल संकट गंभीर हो जाता है। पीने के पानी के लिए संघर्ष की स्थिति बन जाती है। आज बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए गर्मियों में जल संरक्षण केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जल का महत्व। जल मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। बिना भोजन के मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना होता है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है तथा शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। जल का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। घरेलू उपयोग, पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने, नहाने और सफाई के लिए आवश्यक है। खेती पूरी तरह जल पर निर्भर करती है। फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। कारखानों में मशीनों को ठंडा करने के लिए, वस्तुएं बनाने तथा सफाई के लिए जल का उपयोग होता है। विद्युत उत्पादन, विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण संतुलन, नदियाँ, झीलें तथा समुद्र प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के लिए भी जल आवश्यक है। गर्मियों में जल संकट के कारण। गर्मियों में पानी की कमी कई कारणों से उत्पन्न होती है। तापमान में वृद्धि, गर्मी के मौसम में सूर्य की तीव्रता, गर्मी के कारण जल तेजी से वाष्पित होता है। इससे तालाब, नदियाँ और झीलें सूखने लगती हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन, लोग जरूरत से ज्यादा पानी निकालने लगते हैं। बोरवेल और ट्यूबवेल में लगातार उपयोग से भूजल स्तर नीचे चला जाता है। वर्षा की कमी, यदि वर्षा कम होती है तो जल स्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं भर पाता। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई, पेड़ वर्षा लाने में सहायता करते हैं। पेड़ों की कटाई से वर्षा कम होती है और जल संकट बढ़ता है। जल प्रदूषण, नदियाँ और तालाबों में कचरा तथा रसायन डालने से पानी प्रदूषित हो जाता है। जल की बर्बादी, लोग नल खुला छोड़ देते हैं तथा आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करते हैं। जल संरक्षण का अर्थ। जल संरक्षण का अर्थ है जल का सोच समझकर उपयोग करना और उसे व्यर्थ होने से बचाना। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना ना करना पड़े। जल संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। गर्मियों में जल संरक्षण की आवश्यकता। गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में

0: जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पीने के पानी की उपलब्धता, यदि पानी बचाया जाएगा तो सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिल सकता है। कृषि की सुरक्षा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और फसलें सुरक्षित रहेंगी। भूजल स्तर बनाए रखना, जल संरक्षण से भूजल स्तर नीचे नहीं जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने से नदियाँ, तालाब और झीलें सुरक्षित रहेंगी। भविष्य की सुरक्षा, आज जल बचाने से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। जल संरक्षण के उपाय, वर्षा का चयन, वर्षा के पानी को एकत्र करके उपयोग करना वर्षा जल चयन कहलाता है। यह जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। लाभ, भूजल स्तर बढ़ता है, पानी की कमी दूर होती है, भविष्य के लिए जल संग्रहित होता है। नलों को बंद रखना, कई लोग पानी का उपयोग करने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, इससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है, इसलिए उपयोग के बाद नल तुरंत बंद करना चाहिए। रिसाव रोकना, टूटी हुई पाइपलाइन और टपकते नलों से बहुत पानी बर्बाद होता है, इन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए। बाल्टी से स्नान करना, शॉवर की तुलना में बाल्टी से नहाने पर कम पानी खर्च होता है। पेड़ लगाना, पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं, अधिक पेड़ लगाने से पर्यावरण संतुलित रहता है। जल पुनर्चक्रण, रसोई, कपड़े धोने तथा अन्य कार्यों में उपयोग किए गए पानी को पौधों में डालने या सफाई के कार्य में पुनः उपयोग किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई, कृषि में ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने से कम पानी में अधिक सिंचाई संभव होती है। लोगों को जागरूक करना, जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों तथा सामाजिक संस्थाओं को अभियान चलाने चाहिए। विद्यार्थियों की भूमिका, विद्यार्थी समाज का भविष्य हैं, वे जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पानी व्यर्थ करना, दूसरों को जागरूक करना, स्कूलों में अभियान चलाना, पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना। सरकार की भूमिका, सरकार को जल संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जैसे नए तालाब और बांध बनाना, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करना, जल प्रदूषण रोकना, जागरूकता अभियान चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुविधाएं बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट, गांवों में गर्मियों के दौरान जल संकट अधिक गंभीर होता है, कई गांवों में महिलाएं दूर दूर से पानी लाती हैं, पशुओं को भी पानी नहीं मिल पाता, खेती प्रभावित होती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या के समाधान के लिए तालाबों का निर्माण, कुओं की सफाई तथा वर्षा जल संचयन आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में जल संकट, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी इमारतें और उद्योग भूजल का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप कई शहरों में गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है। जल संरक्षण से पर्यावरण संतुलित रहता है, यदि पानी की कमी होगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ, बूंद बूंद से सागर भरता है, यदि जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा, जल है तो कल है, हर बूंद कीमती है, जल संरक्षण अपनाओ, भविष्य सुरक्षित बनाओ, पानी की बर्बादी रोको। गर्मियों में जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, यदि हम आज पानी की बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनानी चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए जल है तो जीवन है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता गर्मी में जल संरक्षण, वार्ताकार थी भूमिका चतुर्वेदी। साथियों, हमारी आखिरी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस। हर वर्ष 29 मई को यह दिवस उन बहादुर शांति रक्षकों के

सम्मान में मनाया जाता है जो दुनिया के विभिन्न संघर्षरत क्षेत्रों में शांति और मानवता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। यह दिन उन वीर सैनिकों, पुलिस कर्मचारियों और नागरिक कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की शुरुआत 29 मई वर्ष 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति स्थापित करना है जहां युद्ध, हिंसा और अस्थिरता के कारण आम जनजीवन प्रभावित होता है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक विभिन्न देशों से आते हैं और बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करते हैं। नागरिकों की सुरक्षा करने, राहत कार्यों में सहायता देने तथा शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे देश के हजारों सैनिकों ने दुनिया के अनेक देशों में शांति स्थापना के कार्यों में भाग लिया है। भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी, अनुशासन और मानवीय सेवा के लिए विश्व भर में सम्मानित किए जाते हैं। कई भारतीय शांति रक्षकों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। श्रोताओं, शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है बल्कि यह मानवता, सहयोग और अपनी विश्वासी का प्रतीक है। आज के समय में जब दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है तब संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, वे हमें यह संदेश देते हैं कि संवाद, सहयोग और सहिष्णुता से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाते हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 2026 का मुख्य विषय है शांति में निवेश करें, इन्वेस्ट इन पीस। यह विषय शांति सैनिकों को उनके महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने हेतु निर्णायक कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देता है। साथियों, ये तो हमने आपको जानकारी दी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर, और अब आपके मनोरंजन के लिए सुनवाते हैं लव ब्रेकअप जिंदगी से ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना लव ब्रेकअप जिंदगी से ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी सलीम मर्चेंट की, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। और साथियों, अब वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन

0: आमंत्रित करता है। पद का नाम है अप्रेंटिस, पदों की संख्या है 5000, आयु सीमा है न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 28 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 8 जून 2026। शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए।
1: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.bankin पर विजिट करें।
0: साथियों, ये तो रही आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, तो अनुमति दीजिए अपने मित्र शिल्पी अग्रवाल को। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है छोटे से अंतराल का।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: की तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
9: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
10: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत तुमको मेरी कसम फिल्म से। सुर और संगीत प्रतीक वालिया के, शब्द रचना विक्रम भट्ट की।

इस गीत के बाद लीजिए सुनिए सरगम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

द डिप्लोमेट। अब इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। वरुण जैन, रोमी और अनुराग सेकिया ने इस गीत को गाया है। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत दिया है अनुराग सेकिया ने।

और आइए अब सुनते हैं अमानत फिल्म का गीत, साहिर का लिखा हुआ। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत तेरे इश्क में फिल्म से। फहीम अब्दुल्ला ने इस गीत को गाया है, इरशाद कामिल ने लिखा है और संगीतकार हैं AR रहमान।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर

एक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त बनाना है। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश और स्वर्ण तथा विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। सीबीएसई ने घोषणा की है कि उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल 1 जून 2026 से खुलेगा, जबकि एक पारदर्शी त्रुटि मुक्त प्रक्रिया और उच्च मूल्यांकन मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ। और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा

0: बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है
1: जी।
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है
1: जी।
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजीत जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है
1: जी।
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं।
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहें। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
3: जय महाकाली। आयो खाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस

0: बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
1: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
2: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
2: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नु।
2: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
2: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
2: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी।

0: कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत स्काई फोर्स फिल्म से है। विशाल मिश्रा ने इस गीत को गाया है। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए हीरो फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नादानिया फिल्म का गीत। सचेत टंडन, असीस कौर और सचिन जिगर की आवाज़ें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं सचिन जिगर।

रिफ्यूजी फिल्म का गीत सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने गीत लिखा है और इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम के आखिरी में सुनिए आज़ाद फिल्म का गीत। अमित त्रिवेदी और मीनल जैन की आवाज़ हैं, अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

0: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
1: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री

0: धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और आरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण के लिए, तो आइए पहले आज के शेष कार्यक्रम हम आपको बता दें। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर खेल जगत में हम सुनवाएंगे राहुल गढ़वाल की वार्ता, कौन होगा आईपीएल 2026 का विजेता। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय रहेगा रात 10 बजे। 10:30 पर राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे राग भाव कौंस में पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन।

आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। लोक संगीत में 9:15 पर सुनिए रामदीन कुशवाहा और साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनेंगे झलकी लॉटरी खुल गई। इस झलकी के लेखक हैं अशोक बुलानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी हम आपको सुनवाएंगे 10:00। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर आप सुनेंगे पुतुर देवदास जोशी का वायलिन वादन। राग होगा तोड़ी।

ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का समय है 12 बजे और दोपहर 2:30। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनिए सिसकियां धारावाहिक की चौथी कड़ी। हमारे रीवा केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनेंगे दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां

सेवा केंद्र की होंगी। कल शाम 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। सुर्खियों में यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:00। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम युवा भारती और 10:00 सुनवाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें कल आप सुनेंगे स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण, सीबीआई करेगी जांच और दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। केंद्र सरकार ने कहा, देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं, रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चालू। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने जम्मू पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग आज 182 देशों में मौजूद है और पूरी मानवता को जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा कि आज की दुनिया में ध्यान विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन गया है और जीवन में ज्ञान, ध्यान और संगीत हमेशा साथ रहने चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी योग्य छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं की वजह से बर्बाद हो। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। श्री प्रधान ने कहा,
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में कहा है कि इस चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें एनटीए को हटाकर उसकी जगह एक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाने की मांग भी शामिल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। केंद्र सरकार ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में अभी रोजाना 92

0: हजार मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक से गैस की कमी की कोई शिकायत नहीं आई है।
1: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने महज 4 दिनों में पाकिस्तान को युद्ध विराम की अपील करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस अभियान को भारत के सैन्य इतिहास की अभूतपूर्व सफलता बताते हुए कहा कि तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट तालमेल और आधुनिक सैन्य क्षमता का जीवंत उदाहरण था। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक प्रकाशन का भी विमोचन किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता वैष्णो देवी धाम में दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर और भूशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। पीशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा के संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर इलाके में एक मकान पर छापा मारकर अवैध कफ सिरप बनाने के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यहां ऑफ कफ नाम की नशीली सिरप बनाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पूरे सेटअप की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रात 12 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई सुबह 3 बजे तक चली, जिसमें 700 से ज्यादा पेटियां, बोतलें और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गई हैं। 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 30,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक पर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 40 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लग चुके हैं, जिनमें प्रदेश के 1,21,000 से अधिक घर शामिल हैं। प्रदेश में इन संयंत्रों से 456 मेगावाट से ज्यादा स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये योजना भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जबलपुर शहर के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि NHAI करीब 3,540 करोड़ रुपए की लागत से 114 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बना रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज बताया कि ये 4-लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर खासतौर पर भारी और लंबी दूरी के वाहनों को शहर के बाहर से रास्ता देगा, जिससे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छिंदवाड़ा के खोखरा वाटरफॉल पर कल बुधवार को हुए हादसे में डूबे दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए। हादसे में एक शव गुरुवार को और दूसरा शव 36 घंटे बाद आज गहरे पानी से निकाला गया। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त वाटरफॉल के पास सेल्फी लेते वक्त संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में चले गए थे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने

देशवासियों से अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से खूब पानी पीने, बच्चों को हाइड्रेट रखने और घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शासकीय महाविद्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अशोकनगर में गर्मी में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया। दतिया में जल संरक्षण और मनरेगा में लापरवाही पर 11 सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। धार में वन विभाग ने छापा मारकर निजी कंपनी के गोदाम से विभिन्न प्रजातियों की छाल और बीजों का अवैध भंडारण जब्त किया। झाबुआ में आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक छात्र 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। देवास में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कुओं, तालाबों और नदियों की सफाई और गहरीकरण का काम जारी है। नर्मदापुरम में पवारखेड़ा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगर मालवा के नलखेड़ा में विधायक भैरव सिंह परिहार ने 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। गुना में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। निवाड़ी में भाजपा जिला कार्यालय में मोदी जी के 12 साल बेमिसाल विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। शिवपुरी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटिशियन प्रशिक्षण में 31 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर सेमिनार और मॉकड्रिल आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम सभा में बिराजे भाई सभी किसान भैया और बहनों को आनंद कृष्ण भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम। भैया बहनहरो का हाल चाल है आप और उनके? हम तो यही उम्मीद कराता है कि सभी जने नोने हुए और गर्मी के मौसम को आनंद से उठा रहे होंगे और अपने आप को पूरी तरह से बचात भय और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखत भय, अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं भी सब काम से निपटा रहे होंगे। भैया बहनहरो, हमें जवाब की बड़ी खुशी होती है देख के अपने किसान भैया बहनहरे नई नई तकनीकों का प्रयोग करके उनको पूरा लाभ उठा रहे हैं। अब जैसे आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम दूर दूर के जो भैया बहनहरे रेडियो पर नहीं सुन पाते हैं, वे DTH के माध्यम से सुन रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं और कोई मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं। तो आज को दिन तो कछु खास दिन है, कासे आज शुक्रवार को दिन और बहुत दूर दूर से हमारे बहुत से श्रोताओं ने, हमारे नीमे श्रोताओं ने और बहुत से नए श्रोताओं ने अपनी पसंद के गाना सुनने के लाने हमें चिट्ठी लिखी है। तो बतकाओ करत भाई, जा चिट्ठी आ गई हमारे हाथ में। दतरंगी से भागवत वर्मा, भाटापारा से हरमिंदर सिंह चावला, लेवई से गुलाबदास, रंगनी से दिनेश वर्मा और जय गीत के लाने चिट्ठी लिखी है। मेन चौराहा कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हेमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। तो इन सब की पसंद पे अपन सबसे पहले गाना सुनाते हैं, जो जगाना है गाँव है मुकेश ने और फिल्म है माई लव।

0: भैया बहन हेरो, देखो अब होगा हुए समाओ बुंदेली समाचारों को, तो सुनाते हैं बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार और बुंदेली समाचारों के संगे हम हैं आनंद कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण आए। संस्कृत को उद्धरण साझा करत भय बिन ने कही के जय गुणों के संगे देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। प्रदेश ने जसाल गेहूं खरीदी में नव रिकॉर्ड बनाओ है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104,22,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ खरीदोगो और 13 लाख से ज़्यादा किसानों को 23,708 करोड़ रुपया को भुगतान स्वीकारो जा चुके हैं। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताई कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज़्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक है। भारत कला ने पेट्रोलियम लेके आरओ तेल टैंकर निसोस कैरोस होरमुज स्ट्रेट पार कर चुको है और बाकी 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुँचने की उम्मीद है। जो जहाज 21 मई को शारजाह से रवाना भाव थो और आज सवेरे उत्तरी अरब सागर में देखो गो। ईरान ने जा महीना हुरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर शुल्क वसूलने की घोषणा करी है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने अवैध बताओ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 40 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लग चुके हैं, जिनमें प्रदेश में 1,21,000 से ज़्यादा घर शामिल हैं। प्रदेश में इन संयंत्रों से 456 मेगावाट से ज़्यादा स्वच्छ सौर ऊर्जा को उत्पादन हो रहा है। बिन्न ने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जय योजना भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनावे की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर बाहर सुनाओ जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमल बागची की पीठ ने कही कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सका थे, जमानत आवेदनों पे आदेश वैधना या अगले दिन सुना के अपलोड करवो जरूरी हुए। ट्वीसा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास गिरिवाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश करो, जहां दोइयों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी गई है, यह जज ने मंजूर कर ली। गिरिवाला सिंह पे सबूतों से छेड़छाड़ करने को आरोप है। कल 7 घंटा की पूछताछ के बाद इन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार करो गए। तो आपको बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्वीसा की संदिग्ध हालत में मौत भई थी। ससुराल पक्ष यह आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या को आरोप लगा है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर में एक मकान में छापा मार के अवैध कफ सीरप फैक्ट्री को भंडाफोड़ करो और 10 लोगों को हिरासत में लाओ। मौका से ऑफ कट ब्रांड की करीब 1.5 करोड़ रुपये की नशीली सीरप, 700 से ज़्यादा पेटियां और पैकेजिंग मशीन जब्त करी गई। मकान मालिक मालवीय फरार है और एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सरकार ने कही है कि देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस को पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम सही

0: स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कही कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस को उत्पादन हो रहा है, जो अब तक को सर्वोच्च स्तर है। उनने कही कि कोई भी LPG वितरक से रसोई गैस की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण को शुभारंभ करो या डिजिटल एप्लीकेशन को उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनावो है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम को अजब रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में 46.5 डिग्री तापमान के साथ भीषण गर्मी को कहर है, तो दूसरी तरफ ग्वालियर और मुरैना में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ग्वालियर समेत 6 जिलों में लू को ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी करो है। हालांकि कल से राहत मिलने के आसार हैं। वहीं 30 मई से 1 जून के बीच प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में आंधी बारिश और ओला गिरने की संभावना है। और यही के संगे बुंदेली समाचार समाप्त है।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया बहनों, आज है 29 मई को दिन, और आज ही के दिन सन 1953 में हिमालय पर्वत श्रृंखला में संसार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, बापे सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरके ने सफलतापूर्वक से चढ़ाई करी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर आए, और जब पूरी चढ़ाई बड़ी दुर्गम है। मनोज, जिस साहसी लोगों ने अपने जीवन से असंभव काम को संभव बना दो, और यही कारण से आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन की एक खास बात जस हुई है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही थे तेंजिंग नोरगे, आज उनको जन्मदिन से ही हुए थे। 29 मई 1914 को उनको जन्म भाव थो। तो कहवे को मतलब जो हुआ कि आज को दिन पर्वतारोहण के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा, और जो जब हम अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में जाए मनाते हैं, तो जाको महत्व ही जो है कि हमारे जीवन में वन पर्वत नदियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये पर्यावरण के घटक हैं, अतः कुल मिला के हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत रहना चाहिए, जो संदेश आज को दिन अपने दिए थे। अब अपने एक और बड़ा अच्छा गीत सुना थे, जिसके लिए चिट्ठी मिली हमें, और ये अपने नए श्रोता हैं नरसिंहपुर से भोले शंकर साहू, करकबेल से कमलेश कहार, और गंज बासोदा जिला विदिशा से भागचंद्र साहू। जय एक और चिट्ठी है ग्राम मूरटक्का माफी ओंकारेश्वर जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल की, और जय एक चिट्ठी है सरस्वती शारदा रेडियो श्रोता संघ चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल अनीता मोटवानी, राजेश, मुकेश, सोमेश, मनीषा और शुभम की। तो इन सब की पसंद पे अपन सुनाते हैं लता मंगेशकर और साथियों को गाओ भाव फिल्म हिमालय की गोद में को जो गीत।

तो भैया बहन रहो, अपन और जो अच्छो अमदा सो गीत तो सुन ही लो, अब जाके संगे संगे कशु जानकारी की बात हो जाए। प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय मिशन जब भारत सरकार के द्वारा शुरू करी गई एक बड़ी अच्छी योजना है, जाको उद्देश्य खेती की लागत को कम करवो और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लावो और रसायन मुक्त जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देवो, ये जाके मुख्य उद्देश्य हैं। और जाके उद्देश्यों में जासु ये कि लागत में कमी सुई आनी चाहिए, मतलब कहवे को जो किसानों को बाहरी जो महंगे उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इन पे जो निर्भरता है वह कम होना चाहिए। दूसरों है 15,000 क्लस्टरों के माध्यम से 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लावो और संगे संगे 1 करोड़ किसानों को एक संगे जोड़वो। जाके साथ साथ में जामे 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र से स्थापित करवे को उद्देश्य है। जाके बारे में अपन और कुछ और बात करें, मानो जहाँ हमारे यहाँ से चिट्ठी आ गई तो अपन और गाना सुन लिए थे। जहाँ चिट्ठी लिखी है दुर्गा चौक रायसेन से वीरेंद्र सेन, निर्मला सेन, रीता, रीना, रितेश, राहुल, मोहित, छाया और निहारिका और ममता सेन ने। जय चिट्ठी है प्रेम रेडियो श्रोता संघ ग्राम बनगांव तहसील पतेरा जिला दमोह से प्रहलाद यादव, राकेश यादव, मनोज, सुषमा, संगीता, गीता, कविता और गोविंद यादव की। और जय एक चिट्ठी हमारे नियमित श्रोता हैं सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से, योगेश्वर से भारतीय, डॉक्टर शेखावत से भारतीय, भैरव प्रताप से, लोकेंद्र प्रताप से, प्रेमाबाई, दुर्गाबाई और अमिता भारती ने। तो इन सब की पसंद पे अब अपनों ने सुना था फिल्म भाभी को जो गीत, देखो गाव है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

भैया बहन रहो, अपन राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में बात कर रहे थे, तो बाकी बारे में तो अपन ने जानकारी दे दी। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल जो आप सबके मन में उठ रहा हुआ कि जा मिशन में भाग लेवे से किसानों को कौन कौन से लाभ और का प्रोत्साहन मिला थे। तो जहाँ में सबसे पहले तो वित्तीय सहायता मिला थे किसानों को, आन फार्म इनपुट उत्पादन बुनियादी ढांचा के निर्माण के लाने 3 साल तक 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाती। दूसरा वो फायदा जो है कि जहाँ में प्रोत्साहन राशि दी जाते छोटे और सीमांत किसानों को प्राकृतिक खेती अपनावे के लाने 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष अधिकतम 1 एकड़ तक को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मिला थे। और तीसरी सुविधा जहाँ मिला था कि जाकर लाने प्रशिक्षण दौर थे, जहाँ में प्रशिक्षण देवे के लाने का कहा जाता कृषि सखियों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण और निरंतर मार्गदर्शन दौर थे। अब आप और सोच रहे हो कि जब मिशन की और विशेषताएं क्या हैं, जहाँ की विशेषता यह है कि स्वदेशी और स्थानीय संसाधन जैसे देसी गाय आधारित और स्थानीय संसाधनों जैसे जीवामृत बीजामृत को उपयोग करवो, पोर्टल और प्रमाणीकरण, पारदर्शी निगरानी के लाने एक आनदर्शी ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है और PGS इंडिया प्रणाली द्वारा प्राकृतिक उत्पादनों के प्रमाणीकरण व ब्रांडिंग की सहायता से करी जा रही है। तो भैया अच्छी योजना है जाको अपन उन्हों को लाभ लेना चाहिए, है नहीं। अब जय एक चिट्ठी आ गई हमारे हाथ में, जाहे लिखी अपने नियमित श्रोता हैं बनियापारा छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और समस्त माखीजा परिवार ने। तो इन सब की पसंद पे अपन सुनाते हैं फिल्म बैजू बावरा में लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी को गाओ जो गीत।

भैया बेनारो, देखो अपन और ने जा बात करी, अब जाके बाद में एक दूसरी जरूरी जो जानकारी है वह है खेती में मल्चिंग की बात। खेती में मल्चिंग एक बहुत प्रभावशाली तकनीक है जिसमें फसलों के बीच में मिट्टी की सतह को जैविक जो चीज़ें होती हैं जैसे पत्तियाँ, भूसा, पुआल या दूसरी अजैविक चीज़ें जैसे प्लास्टिक शीट, इनसे ढांक दो जाते हैं। ऐसे कहा होता है कि मिट्टी की जो नमी है वह बचत है और खरपतवार आगे बढ़ नहीं पाए, खरपतवार विकसित नहीं हो पाए और तापमान नियंत्रित करके पैदावार बढ़ाते हैं। मल्चिंग को खेती में मुख्य महत्व और जैसे मिलने वाले फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे नमी को संरक्षण, मल्चिंग शीट से पानी के वाष्पीकरण को रोका थे, ऐसे खेत में लंबे समय तक नमी बनी रहते और सिंचाई की आवश्यकता कम होते, जैसे पानी और बिजली की दोनों की बचत होते। फिर दूसरा फायदा जैसे जो होता है खरपतवार पर नियंत्रण होते, मिट्टी ढकी हुए कारण सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाए, जैसे अनावश्यक घास और खरपतवार नहीं उगे, निराई गुड़ाई को खर्चा और मेहनत दो ही बचत हैं। फिर तापमान को संतुलन से ही होते, गर्मियों में जब मिट्टी को ठंडो रखा थे और सर्दियों में पाले के असर को कम करके मिट्टी को तापमान अनुकूल बनाए रखा थे, जैसे जड़ों को विकास तेज़ी से हो सका थे। और एक बहुत अच्छा फायदा, बहुत बड़ा फायदा जो है कि बारिश या तेज़ हवा में खेत के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बेहद या उड़त नहीं है, जैविक मल्च जो सड़वे के बाद में खाद में बदल के मिट्टी की उर्वरा शक्ति यही है और बढ़ा दिए थे। और एक साथ साथ में गुणवत्तापूर्ण फसल मिला थे, फल और सब्जियां जैसे टमाटर, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा सीधे मिट्टी के संपर्क में आवे से सड़वे या दाग लगवे से बच जाते हैं, तो इसे उपज की गुणवत्ता अच्छी रहती है और बाज़ार में भाव से अच्छे मिला थे। तो जा एक अच्छा तरीका है और जाको अपन उनको उपयोग करना चाहिए। भैया मैंने अब देखो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से झग्गर राम साहू, मुरली मनोहर, जामुन देवी, नंदिनी, राजू, लल्ला, प्रांजल, समीक्षा और ग्राम सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी और मोहित गजेंद्र चंदन की चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने अपनी पसंद के गीत सुनावे के लाने कही है। जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ ग्राम कोहरवास तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर से विरोध कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, मनकोबाई निशा, प्रियंका बंटी, कपिल ब्रजभान, करण और छोटू कुशवाहा की चिट्ठी है। तो जिस सब ने लिखो, जिस सब ने सुनवो चाहो है फिल्म पड़ोसन में लता मंगेशकर और आशा भोंसले को गावो जो गीत।

भैया बहनहरों, शहरी क्षेत्रों के आसपास की सब्जियों के समूह के लाने वेजिटेबल क्लस्टर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना शहरी केंद्रों से 500 से 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में शहरी और अर्ध शहरी सब्जियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लाने बनाई गई है। जब PUVC योजना कहलाते हैं, जहाँ योजना को उद्देश्य टमाटर, प्याज

और आलू जैसे जो फसलें हैं, जैसी जो सब्जियां हैं, इनके साथ साथ में फलों और सब्जियों की कीमतों में हुए बार जो बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हुए थे, वह कम करवो है और जहाँ चरणबद्ध तरीका से लागू करवे को है। पहले चरण में 15 लाख या वहाँ से ज़्यादा की आबादी वाले जो शहर हैं और राज्यों की राजधानी हैं उनमें शामिल कर उन्हें शामिल करो गए है, और दूसरे चरण में 10 लाख या वहाँ से ज़्यादा आबादी वाले जो शहर हैं उन्हें शामिल करो जो है। और जय योजना किसानों की कम कीमत प्राप्त से संबंधित जो समस्याओं है बाको व्यापक रूप से समाधान करें। ये किलाने कई तरह से उपाय करे जाए जिनमें अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे वो, नई और उन्नत किस्म की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर वो, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ट्रेसिबिलिटी समाधान, सटीक खेती आदि जैसी जो आधुनिक तकनीकें हैं उनको उपयोग ही प्रोत्साहित कर वो को शामिल है। तो यह एक बड़ी अच्छी योजना है जो बड़े शहरों के आसपास में रहने वाले जो किसान हैं वे और चाहें तो जा योजना को अच्छी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। भैया मैंने जो एक बहुत दूर से चिट्ठी आई है, जो चिट्ठी लिखी है तीवरता डबरी पारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम श्रीमती जया जोगेंद्र और ग्राम अलगी डांड पाली से चंद्रपाल मरावी ओम प्रकाश मरावी राम प्रकाश मरावी की। और यह एक चिट्ठी है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमथरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा सूर्यकांत राकेश शुभम शिखा और शेफाली की। ग्राम सरखों नीला जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश साव रेखा साव कमलेश राव रावी साव हिमांशु सेजल और स्वप्निल इन सब की पसंद पर अब अपन सुनाते हैं फिल्म तीसरी कसम को जो गाना यह गाव है मुकेश ने।

अपन जानकारी सुने, खरीफ फसलों की तैयारी के लाने जनवरी के लाने जरूरी कार्य, और इतवार को 31 मई को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम में अपन सुने आगामी खरीफ फसलों के लाने उर्वरक प्रबंधन और समसामयिक कार्य। जाके लाने जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं को समाधान चाहते हैं वे 31 मई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पे फ़ोन लगा के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और अब एक ही संग चलवे की बिरिया हुई तो लेते हैं आप उन्हों से विदा। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया और बहनों को आनंद कृष्ण भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम।

0: सुर्खी। आकाशवाणी भोपाल से अभी ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
3: प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख मंच है, जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साझेदारी में परियोजनाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण की प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय में या रियल टाइम समीक्षा के माध्यम से उन्हें तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रगति इस बात का सशक्त उदाहरण है कि डिजिटल शासन किस प्रकार नीतिगत मंशा को वास्तविक और दृष्टिगोचर प्रगति में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया प्रगति भारत में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर चुका है। ये केवल एक समीक्षा मंच भर नहीं है, बल्कि नौकरशाही की निष्क्रियता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने तथा ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा की जाए और परिणामों का आकलन किया जाए। दीपक जी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं और ये बताएं, प्रगति किस तरह सरकार की अटकी हुई या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं को तेजी लाने में मदद कर रहा है और लागत में वृद्धि को भी चेक कर रहा है।
4: आपने जैसे कहा कि ये पूरा जो प्रगति है एक ऑनलाइन सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है। चाहे उसका जो शुरुआत में जब पहले समस्याएं आती हैं, जो जिस प्रोजेक्ट को इस पे रिव्यू किया जाता है वो भी आपके देखेंगे तो वेबसाइट पर इनका डिटेल डाला जाता है। जैसे आपने कहा इसकी जो मीटिंग होती है जो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होता है, तो देखा जाए तो एक तरह से एक पेपरलेस एक पूरा प्रोग्राम है। और दूसरी बात यहाँ तक की है कि प्रगति में हम देखेंगे तो आज तक की जब से शुरू हुआ है, आखिरी जो प्रगति हुई थी वो 51वां, तो इसपे ज्यादातर जो लिया जाता है वो डिलेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रकल्प जो है देर हो गए हैं, तो उस पे ज्यादातर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हीं का ही होता है, जैसे रोड, रेल, पावर, कोल, हाउसिंग, इस तरह के सब्जेक्ट ज्यादातर आते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम, जो बहुत बड़े स्कीम है, जैसे कि वन नेशन कार्ड, आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारे हॉकर भाई लोग हैं उनको जो 10-10 हज़ार उसके बाद 20 और 50 हज़ार की लोन देने का जो व्यवस्था किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, इनका भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जिसपे लोगों की बहुत सारे शिकायतें होती हैं तो उनका भी पूरा डिस्कशन होता है। उसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल देख सकता हूँ, कोरोना को लेकर हुआ था, रेरा जो हमारे रियल एस्टेट रेगुलेशन जो है, जो उसके लिए जो पूरे व्यवस्था की गई है, उनकी ग्रेवियंसेस को, उनकी जो लोगों की जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी मीटिंग हुई है। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर पे भी हुआ है, आपका जनधन योजना पे भी हुआ है। तो देखा जाए तो जो प्रगति है इस पे खाली आधारभूत या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि सरकार की बड़े बड़े स्कीम, लोगों की जो समस्याएं होती है उनका भी मीटिंग में बातचीत होती है। जैसे हम जानते हैं सब कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विलंब होता है या उसका लागत में बढ़ोतरी हो जाती है तो देखिए ये देश के लिए तो नुकसान है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये होता है जब आप देर होता है तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और जब आपका पैसे उसका जो लागत बढ़ जाता है तो हमारे

0: पे, हमारे सरकार पे वो दबाव बढ़ता है। तो प्रगति ने ये दो चीजों को तो बहुत ही सही तरह से देखा जाए तो पूरे तरह से एड्रेस किया है, क्योंकि उनको हर स्तर पे देखा गया कि किस प्रोजेक्ट के किस कारण से डिले हो रहा है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, चाहे वो आपको एनवायरमेंट और जंगल की जो एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो, कहीं पे आपका जैसे हम किसी को यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे बिजली के बड़े बड़े खंभे हटाना, कहीं पे आपको बड़े बड़े पानी की पाइप जो जमीन के नीचे होता है उनको हटाना, तो ये सब चीजें बारीकी से देखा जाता है। और बारीकी से देखने के बाद ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री तक जाता है, बहुत प्रोजेक्ट हैं जो उससे काफी पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं। जो चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं वो प्रधानमंत्री आखिरी में उसका रिव्यू करते हैं। तो प्रगति होने से एक तो व्यवस्था ये हुई है कि जो प्रोजेक्ट विलंब हो रहे थे, जिनका कॉस्ट बढ़ रहा था, अगर प्रगति नहीं होती उनके कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाते, तो इसके कारण क्या हुआ कि आपको कॉस्ट तो घटा नहीं पर कॉस्ट की जो बढ़ने में जो आगे की संभावना था उसको घटा दी गई। तो एक तरह से आपका जो जिसको हम कहते हैं फिस्कल बर्डन होता हमारे ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन होता, वो घटा और समय भी इसके कारण बचा जो बहुत डिले लगता है। जैसे आप हम सब जानते हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो रेलवे लाइन है जो कई सालों से अटका हुआ था वो प्रगति के कारण बहुत जल्दी संभव हुआ। जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, अगर वो जिस गति से जा रहा था और कई साल लग जाए तो उसको कंप्लीट होने में, प्रगति होने से उस पे उसका त्वरित गति में उसका काम हुआ है। इसका होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई मीटिंग कोई एक प्रोजेक्ट का जब हर ऑफिसर को हर ब्यूरोक्रेट को पता चलता है कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे तो आप देखिए कि वहां पे तत्परता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जितना मेरी जानकारी है मैं ये जानता हूं जैसे कि प्रगति मीटिंग की नोटिस आती है और जो जो प्रोजेक्ट का नाम आता है, आप कोई भी मंत्रालय में जाइए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में जाकर बात करिए, वो देखेंगे ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है क्योंकि वहां पे ये कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में ये कोई बोले कि आपने ये काम नहीं किया। और उसके कारण क्या होता है, अचानक से आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कोऑर्डिनेशन है मीटिंग के पीछे की, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, स्टेट गवर्नमेंट सोचिए कोई मिनिस्ट्री से बात कर रहा है कोई डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको रिजॉल्व करने के संपूर्ण तरह से प्रयास करते हैं। याद है वाक्य कि कोई एक मीटिंग होने वाली थी जिसपे ये आपका टेलीकॉम का जो फाइबर नेटवर्क डाला जाता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला था, काफी विलंब हो रहा था, मुझे क्योंकि मैं उसके बारे में लिखा था तो मुझे याद है, ठीक मीटिंग से एक दिन पहले जितने भी उसका स्टेक होल्डर हैं, जितने मंत्रालय हैं, सबने एक साथ कह दिया कि हमने सारी चीज रिजॉल्व कर ली है। तो देखिए इसका ब्यूटी है क्योंकि आप देखेंगे तो कि जो है यही इसका जो है सुंदरता है कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं तो उससे पहले ही बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाता है और जब कॉस्ट ओवररन नहीं होता है, लागत नहीं बढ़ने को हम रोक सकते हैं, समय की देरी को विलंब जो होता है उसको रोक सकते हैं, तो इसके देखिए सबका फायदा होता है, सरकार का होता है और जैसे मैंने कहा लोगों को सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया, सोचिए आपका जम्मू से श्रीनगर की जो रेलवे लाइन, सोचिए और 5 साल डिले हो जाता तो क्या होता, जो लोगों को इतना लंबा समय रोड से जाना पड़ता है या फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा देकर जाना पड़ता है, उससे तो बच गए ना।
1: प्रगति में जो परियोजनाएं लाई जाती हैं वो अक्सर ऐसा होता है जो रुकी हुई रहती हैं या डिलेड होती है, क्या कारण है कि ये परियोजनाएं रुक जाती हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? प्रगति तो करती है लेकिन क्या मंत्रालय स्तर पे या राज्यों के स्तर पे इनके भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
0: एकदम आपने सही कहा, और जैसे कि 4-5 जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, वो एक तो पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका लैंड एक्विजिशन, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना जमीन के आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि रोड आपको बनाने के लिए 100% आपको जमीन चाहिए, आप अगर पावर प्लांट बनाते हैं तो आपको जमीन चाहिए, अगर आप सोचिए कोई बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है तो सब में आपको जमीन चाहिए। अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत खाली प्रगति की बात नहीं, अगर आप हर साल की अगर सवाल देखेंगे जो पार्लियामेंट में आता है, हमारे संसद में आता है, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, या रेलवे मंत्रालय हो, या आपका सिविल एविएशन मंत्रालय हो, ये सब में देखेंगे तो जो भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्य कारण क्या है डिले का, तो कहा जाता है लैंड एक्विजिशन, जमीन के अधिग्रहण में देरी। दूसरा जो सवाल आता है वह आपका क्लियरेंसेस क्या क्या, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, इस पे देरी बहुत, एक ये दो जो है सबसे प्रमुख कारण है। इसके साथ जैसे मैं आपको पहले बताया था कि तीसरा कारण है कि जिसको हम यूटिलिटी शिफ्टिंग देखेंगे, जहां पे एक नया सोचिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है वहां पे पहले कभी बिजली के बड़े बड़े हाई टेंशन वायर का जो खंबे लगे होंगे और वो छोटे नहीं है कि अचानक रातों रात बदल सकते हैं, तो इनको सब शिफ्टिंग करने का भी बहुत टाइम लगता है। मेनली यही 3-4 चीजें हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होता है। और जब प्रगति होती है तो उसपे क्योंकि सारी बातें क्लियरली आती है, जैसे मैंने आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये प्रगति मीटिंग होती है उसपे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में होते हैं, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में होते हैं, सब वर्चुअली जुड़े होते हैं ऑनलाइन माध्यम से, फिर सारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं। तो जैसे जमीन अधिग्रहण की बात अगर हम करें, हम तीनों चीजें, जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण की बात करें और तीसरा जो यूटिलिटी शिफ्टिंग,

0: तीनों का जो मुख्य जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार का है। तो जब मीटिंग होती है इसकी, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या ये आपको जैसे कहें निर्देश दिया जाता है कि आप इसको जमीन के अधिग्रहण को जल्दी से संपूर्ण करें। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अभी प्रगति हुई थी उस पर, रेलवे का भी कोई प्रोजेक्ट था जहाँ पे, वहां पे भी कोई कंपनसेशन, जो आपका लोगों को जो पैसे देने की बात आई थी कुछ प्रोजेक्ट के कारण, तो उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया रेल मंत्रालय को कि जल्दी से लोगों को जो कंपनसेशन है दीजिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए। तो इस पे क्या होता है कि जो केंद्र का मंत्रालय हो या राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, देखिए केंद्र सरकार में देखा जाए तो सारे काम कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का उनका अंडर सेक्रेटरीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार का तो मुखिया ही देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक हेड है, वो तो चीफ सेक्रेटरी है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मुख्य सचिव को, तो उसका सीधा असर देखने को मिलता है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताऊं, दिल्ली के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये सब प्रोजेक्ट को पीएम ने एक एक करके प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है, और इस रिव्यू के कारण प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हुए।
1: जी, प्रगति की अभी तक 51 बैठकें हो चुकी हैं और इसमें 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा सका है और कुछ तो कंप्लीट भी हो चुके होंगे। ये मंच प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देख रेख में केंद्र और राज्यों के बीच वास्तविक समय में तालमेल सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही को और अधिक अच्छा करती है। जमीनी स्तर पर प्रगति और क्या बदलाव ला रही है, चाहे वो गवर्नेंस लेवल हो या लोगों के लिए आराम सुनिश्चित करना या ईज ऑफ लिविंग, जो कि सरकार का बहुत फोकस एरिया रहा है, वो सुनिश्चित करने में कैसे मदद कर रही है?
0: जैसे आपने कहा कि करीबन 85 लाख करोड़ और उसके साथ मिला दें तो पिछले हफ्ते 30,000 करोड़ का और प्रोजेक्ट हुए हैं, तो 85 लाख 30,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट का रिव्यू हुआ है और ये करीबन 3,300 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा हैं। पहला वाला तो था इसकी कीमत कितना कॉस्ट था, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 3,300 से ऊपर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं, ज्यादातर प्रोजेक्ट ही इस पे आपके एक्सपेडाइट हुए हैं। जितना भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे प्रगति में आई है, उनमें बहुत जल्दी उनकी गति पकड़ी है और ज्यादातर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इस पे जमीनी स्तर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब मीटिंग होती है जिसपे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और हर स्टेट गवर्नमेंट के, हर राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, तो देखिए एक मैसेजिंग होता है कैसे सबको साथ मिलकर काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई भी अगर प्रोजेक्ट, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पावर का प्रोजेक्ट हो, कोई मंत्रालय का जब आता है, उनको ये जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। तो ये जो कल्चर धीरे धीरे, ये मेरा नहीं है, इस पे मुझे सोचना नहीं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रेक द साइलोज, कि आप जो अपने अपने हिस्से में बंधे रहते हैं उससे थोड़ा बाहर जाइए। आप ये सोचिए कि खाली ये मेरा रोड का प्रोजेक्ट नहीं है, रेल का प्रोजेक्ट नहीं है, देश का प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है ये सोच, ये धीरे धीरे सबके जो अंडरस्टैंडिंग और जहन में ये आने लगा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कारण देर हो रहा है, तो आप सोचिए कि कोई सचिव जो है मुख्य सचिव को फोन करके बात करते हैं कि देखिए ये प्रगति में आ रहा है, ये प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए। जब आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी या कनेक्शन थोड़ा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाएगा, तो उसका असर ये भी होगा बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जो प्रगति में नहीं आ रहे, वहां भी अगर डिले हो रहा है तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर है, देखिए हर जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, अधिकारी हैं, जब उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट अगर कोई मेरा बहुत ज्यादा विलंब हो गया या कॉस्ट बढ़ गया तो प्रगति में चला जाएगा, प्रगति में गया तो फिर मुझे तो बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो इसका असर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं उनको वो लोग भी कोशिश करते हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक से होता है, ताकि वो प्रोजेक्ट प्रगति में ना जाए। तो मुझे लगता है पूरा जो है वार कल्चर को प्रगति ने काफी बदलाव लाया है।
1: जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि ब्रेकिंग द साइलोस, ये साइलोस को ब्रेक करने में मदद करता है। आपको लगता है कि ये जो बैठकें होती हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज या संस्थागत रूप देने में भी मदद कर रहा है?
0: आपने ये बात तो एकदम सही कहा कि एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये स्ट्रेंथन करता है, इसको जब मजबूत करता है। इसका कारण मैं आपको इसलिए बताया कि जैसे जितना भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट को तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी कामयाब हो सकता है जब राज्य सरकार संपूर्ण तरह से उसके साथ काम करे। वो तभी हो पाएगा जब दोनों में सहयोगिता होगा या कोऑपरेशन होगा, तो फेडरल कोऑपरेशन के बिना ये तो काम हो नहीं सकता। दूसरा बात क्या है कि जब हर व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे रहकर बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 50वां प्रगति हुई थी उसके बाद हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन शाह ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पे हम लोगों ने सवाल भी पूछा था कि जो है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कहा कि कोई भी राज्य सरकार या हर राज्य सरकार चाहता है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, और कोई सरकार नहीं चाहता उसका डिले हो, क्योंकि विलंब होगा, कॉस्ट ओवररन होगा तो सबको समस्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि हर सरकार चाहती है रोड बने, हाईवे बने, रेलवे लाइन डले, नया ट्रेन चले, अच्छे पावर प्रोजेक्ट आए ताकि वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके, और वो तभी कंप्लीट होगा जब केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर बात करेंगे। एक बात यह भी ध्यान देना पड़ेगा, कंप्लीटली ए पॉलिटिकल सिस्टम है।

0: इस पे केंद्र में सरकार, राज्य में कौन सरकार है, इसका कोई असर ही नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे हर राज्य के प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेडाइट किया गया है, कंप्लीट किया गया है।
1: जी दीपक जी, आपने बहुत विस्तार से प्रगति के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: यह कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। सुनते हैं फिल्म संगीत। सौदागर फिल्म के गीत से शुरुआत कर रहे हैं। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और लीजिए अब सुनिए संगीत फिल्म का गीत। ज्वाली मुखर्जी ने इस गीत को गाया है, संतोष आनंद ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अगला गीत सड़क फिल्म से है, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ें, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

कार्यक्रम के आखिर में लम्हे फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर ए हरिहरन ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है शिव हरि ने।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
5: कवि हेमंत देवलेकर,
6: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में

0: प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज

0: मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
4: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास है।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही, यही

कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त।

0: That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना मुल्क की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ड्रोन्स रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वजीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है कि चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट
1: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नवन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के TMC इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक़दा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुज़ाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम की भारत आमद मुतवक्का है जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल डीजल और LPG का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम

0: नहीं है। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है, जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन योमिया है।
1: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक हैं, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप हैं। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 TMT पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
0: मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है, जबकि 156 अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाज़े किया कि फैसला सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की ज़रूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत की जिम्मेदारियों पर ऑर्डर उसी रोज़ सुनाया जाना चाहिए, नहीं अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज़ उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी तादाद में हिदायत जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जमानत या सजा को मुअत्तल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द अज जल्द जेल हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और ज़ेरे समात मुलजमान को तरजीही तौर पर उसी रोज़ या ज़्यादा से ज़्यादा अगले रोज़ रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का ज़खीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों तक रसाई के लिए अलहदा दस्तावेजात की ज़रूरत नहीं होगी। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि खादों का इस्तेमाल सिर्फ ज़र्रई मकासद के लिए किया जाए।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज़्ज़म और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम को पूरा करने में हर किसी से तआवुन की अपील की।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अरादे की बेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को एक मजबूत और खुद मुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट UG के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट UG 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC की बसों में

0: मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर DTC बसों में मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की कौंसिल को फौरी असर से तहलील कर दिया। ताहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस अकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोछर को जुलाई 1988 में भारतीय बहरिया में कमीशन किया गया था। मिसाइल और गन सिस्टम के माहिर अजय कोचर ने अपने 37 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर के दौरान कमांड ऑपरेशनल और स्टाफ असाइनमेंट की वसी तर जिम्मेदारी संभाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है, क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने के मफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर JD वेंस ने तस्दीक की है कि मुजाकरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी जेरे इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालबा करता है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अलीग तावन काउंसिल GCC ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने अपनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज़म मैकेनिज्म के क़याम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक़्ता नज़र से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमतनामे पर जोर दे रहा है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयाँ और नकल मकानी अहकामात इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट PTM कारकुन फरीदुल्ला अफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतालिक अपने रिकॉर्ड के ज़िम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज़ उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल्स जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कांग हाईजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। IPL क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातिह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए 4 सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और IPL क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए

0: चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपीये। श्रोताओं, आईपीएल केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि जुनून, रोमांच और खेल भावना का एक ऐसा उत्सव है जो हर वर्ष करोड़ों दर्शकों को एक सूत्र में बांधता है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम अपने प्रदर्शन से प्रशंसकों का दिल जीतते हुए चैंपियंस बनने का सपना पूरा करती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी है उस टीम पर जो शानदार प्रदर्शन, बेहतरीन रणनीति और खिलाड़ियों के दमदार खेल के बल पर ट्रॉफी अपने नाम कर सके। 31 मई को खेले जाने वाले फाइनल में देखना होगा कौन सी टीम यह खिताब अपने नाम करेगी। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वार्ता, जिसका विषय है कौन होगा आईपीएल 2026 का विजेता। वार्ताकार है राहुल गढ़वाल।

श्रोताओं नमस्कार। देश भर में आईपीएल 2026 का रोमांच जारी है। आईपीएल सिर्फ एक सीजन नहीं है बल्कि रिकॉर्ड्स, भावनाओं, युवा जोश और बेहतरीन क्रिकेट की कहानी है। 28 मार्च 2026 को शुरू हुआ आईपीएल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आईपीएल में 10 टीमें उतरी थीं लेकिन अब सिर्फ 3 टीमें बची हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो फाइनल में पहुंच चुकी है, इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए आमने सामने हैं। अभी दोनों के बीच मुकाबला जारी है। आईपीएल 2026 का सफ़र बड़े ही उतार चढ़ाव भरा रहा। 10 टीमों के साथ शुरू हुए टूर्नामेंट में 70 लीग मुकाबलों के बाद 4 टीमों ने प्लेऑफ में जगह बनाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीमें इस बार प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाईं। पहले क्वालिफायर में RCB ने गुजरात टाइटंस को बुरी तरह हराया और फाइनल में जगह बना ली। इस मैच में RCB के 254 रन के टारगेट के सामने गुजरात टाइटंस की टीम सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई और 92 रन से मैच हार गई। आईपीएल की पॉइंट टेबल में पहले और दूसरे नंबर पर रहने से ये फायदा होता है कि अगर आप एक मैच हार भी जाएं, तो दूसरा मौका मिल जाता है। अब गुजरात टाइटंस के पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका है। आईपीएल के पहले क्वालिफायर के हीरो रजत पाटीदार रहे थे, जिन्होंने 33 गेंदों में 93 रन की पारी खेली थी। आईपीएल के प्लेऑफ में इस बार नेट रन रेट का बड़ा रोल रहा। जब प्लेऑफ की बारी आई तो 3 टीमों के बराबर 18 पॉइंट थे। नेट रन रेट ने तय किया कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे। आखिरकार बेंगलुरु पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे और हैदराबाद तीसरे नंबर पर रही। वहीं राजस्थान रॉयल्स 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंची। इस बार का आईपीएल कई मायनों में खास रहा। एक तरफ विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों ने फिर साबित किया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, तो वहीं दूसरी ओर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया। राजस्थान के इस युवा बल्लेबाज ने छक्कों की ऐसी बारिश की कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट गया। वैभव ने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल ने साल 2012 में 59 छक्के जड़े थे, लेकिन वैभव ने इस सीजन में अब तक 65 छक्के लगाकर रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली लिस्ट में

आंद्रे रसेल और जोस बटलर जैसे नामचीन पावर हिटर्स काफ़ी पीछे छूट गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की पारी खेली। वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन की पारी खेली। वैभव 3 रन से क्रिस गेल का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। क्रिस गेल ने 2012 में 30 गेंदों पर शतक लगाया था। क्रिस गेल ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। क्रिस गेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, वैभव कितना जबरदस्त खिलाड़ी है, शानदार नई सिक्स मशीन। वैभव सूर्यवंशी ने एक आईपीएल सीजन में किसी भी अनकैप्ड बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव इस सीजन में बुधवार तक खेले गए मैच तक 680 रन बना चुके हैं, जो कि आईपीएल के इतिहास में एक अनकैप खिलाड़ी के बल्ले से निकला सबसे बड़ा स्कोर है। अब बात करते हैं उन तीनों टीमों की जिन पर इस समय पूरे क्रिकेट जगत की नज़र है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 के खिताब की दावेदार हैं। इन तीनों टीमों की ताकत और कमजोरी पर हम चर्चा करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीज़न की सबसे संतुलित टीम नज़र आई है। पिछले कुछ सालों में आरसीबी के लिए कहा जाता था कि टीम सिर्फ बल्लेबाजी पर निर्भर है, लेकिन इस बार कहानी बदल गई है। विराट कोहली ने फिर साबित किया कि बड़े मंच पर उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। कप्तानी चाहे किसी के पास हो, लेकिन दबाव के समय पूरी टीम की धड़कन कोहली ही बने रहते हैं। उनके साथ युवा बल्लेबाजों ने और फिनिशर्स ने भी शानदार योगदान दिया। विराट कोहली ने अब तक खेले गए 15 मैचों में 600 रन बनाए हैं। विराट के नाम 4 अर्धशतक हैं। बेंगलुरु की दूसरी बड़ी ताकत टीम के कप्तान रजत पाटीदार हैं। पहले क्वालिफायर में रजत की बल्लेबाजी के दम पर टीम ने एक तरफा जीत हासिल की थी। रजत पाटीदार ने 14 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं। आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैटिंग की गहराई है। टीम के पास पावर प्ले में तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, बीच के ओवरों में स्पिन खेलने वाले देवदत्त पड्डीकल और कृणाल पांड्या हैं, और डेथ ओवर में बड़े शॉट लगाने के लिए टिम डेविड और जितेश शर्मा हैं। लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, इस बार आरसीबी की बॉलिंग ने सबको हैरान किया है। तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से विकेट निकाले और स्पिनर्स ने बीच के ओवर्स में रन रोककर मैच का रुख बदला। बेंगलुरु के लिए भुवनेश्वर कुमार खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार मैच की शुरुआत में विरोधी टीम के विकेट चटकाते हैं, जिससे विरोधी बल्लेबाज दबाव में आ जाते हैं। वे इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा 26 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार के पास ही पर्पल कैप है। भुवनेश्वर कुमार के अलावा कृणाल पांड्या भी बल्लेबाजों के लिए पहेली बने हुए हैं। उनकी अचानक आती बाउंसर का जवाब अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पास नहीं होता। कुल मिलाकर आरसीबी आईपीएल की खिताब की दावेदार तो है, लेकिन उसे दबाव वाले मैचों में बिखरने की आदत से बचना होगा, क्योंकि फाइनल मुकाबले का प्रेशर अलग होता है। गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल की शांत लेकिन खतरनाक टीम है। गुजरात टाइटंस को इस आईपीएल की सबसे बेहतर सिस्टम वाली टीम कहा जा रहा है। इस टीम में स्टार खिलाड़ियों की भरमार तो नहीं है, लेकिन हर खिलाड़ी अपनी भूमिका अच्छी तरह से समझता है। गुजरात टाइटंस की असली ताकत उसका संतुलन है, बल्लेबाजी में स्थिरता और गेंदबाजी में गहराई, यही उसकी पहचान रही है। टॉप ऑर्डर ने लगभग हर मैच में टीम को अच्छी शुरुआत दी। मध्यक्रम ने जिम्मेदारी निभाई और गेंदबाजों ने कम स्कोर को भी डिफेंड किया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने अब तक 652 रन बनाए हैं। कप्तान शुभमन गिल भी रन मशीन बने हुए हैं, वे 618 रन बना चुके हैं। गुजरात की गेंदबाजी भी दमदार है। कगिसो रबाडा अब तक 26 विकेट चटका चुके हैं और पर्पल कैप की रेस में हैं। स्पिनर राशिद खान के नाम 19 विकेट हैं। गुजरात टाइटंस की ताकत

संतुलित गेंदबाजी और शांत कप्तानी है, वहीं टारगेट का पीछा करते वक्त दबाव में आना कमजोरी भी है। अगर वो इस चुनौती को पार कर लेती है तो खिताब की ओर कदम बढ़ा सकती है। खिताब की रेस में दौड़ रही तीसरी टीम राजस्थान रॉयल्स है, जिसकी बल्लेबाजी 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के आसपास घूमती है। वैभव की आक्रामक शुरुआत बड़े बड़े बल्लेबाजों का हौसला तोड़ देती है। बुधवार तक खेले गए मैच में 15 साल की उम्र में 65 छक्के, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, आईपीएल के इतिहास का नया अध्याय है। अगर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलता है तो राजस्थान रॉयल्स की टीम 200 रन का स्कोर आसानी से बना रही है। वैभव बुधवार तक खेले गए 15 मैचों में 680 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप होल्डर हैं, उनके नाम 450 हैं। वैभव के अलावा यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल भी फॉर्म में हैं और हर मैच में रन बटोर रहे हैं। एक तरफ जहां राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी है, तो वहीं गेंदबाजी में निरंतरता की कमी नजर आती है। जोफ्रा आर्चर 24 विकेट चटका चुके हैं, लेकिन अकेले जूझते नजर आते हैं, दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल पाता। अगर राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल की ट्रॉफी अपने घर ले जानी है तो गेंदबाजी पर काम करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी। अगर मौजूदा फॉर्म देखें तो सबसे मजबूत दावेदार आरसीबी नजर आती है, क्योंकि टीम के पास अनुभव भी है और संतुलन भी, बल्लेबाज फॉर्म में हैं और गेंदबाजों में भी आत्मविश्वास दिख रहा है। आरसीबी ने पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को हराकर बाकी दोनों टीमों पर मानसिक दबाव तो बना दिया है। अगर राजस्थान रॉयल्स दूसरा क्वालिफायर जीतकर फाइनल में पहुंचती है तो उसका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा। वैभव सूर्यवंशी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच बदल सकते हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस को कम नहीं आंका जा सकता। शुभमन गिल की टीम कमबैक कर सकती है। इस सीजन ने सिखाया कि आईपीएल अब सिर्फ बड़े नामों का टूर्नामेंट नहीं रहा, अब यहाँ 15 साल का लड़का भी इतिहास रच सकता है। इस सीजन ने ये भी बताया कि सिर्फ स्टार खिलाड़ी काफ़ी नहीं, संतुलित टीम ही आखिर तक टिकती है। आरसीबी ने दिखाया कि कैसे पुरानी गलतियों से सीखकर उन्हें अपनी ताकत बनाया जा सकता है। गुजरात ने सिखाया कि अनुशासन और प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, वहीं राजस्थान ने दिखाया कि बिना डरे मैदान पर खुलकर खेलना हर चुनौती को छोटा साबित कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन बनेगा आईपीएल 2026 का विजेता। धन्यवाद।

0: अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था कौन होगा आईपीएल 2026 का विजेता। वार्ताकार थे राहुल गढ़वाल। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था।
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, सुहाना सफर फिल्म से। आवाज है मोहम्मद रफी की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का आखिरी गीत मेरे हम सफ़र फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

मेरे हमसफ़र फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपकी

फरमाइश कार्यक्रम के साथ हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खेमरिया। पहला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है, बिलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, भारेलाल, मुन्ना खान, और ग्राम पहरुआ से फरमाइश की है रामकुमार लोधी और गोविंद यादव ने। अगली फरमाइश आदर्श नगर मलोट पंजाब से है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है सिंदूर फिल्म के गीत की। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अंदाज लीजिए। इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए फरमाइश की है करियादंड हट्टा ज़िला बालाघाट से हुलास राम कटरे नानेश्वरी कटरे, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैतिक बिरक और मीका बिरक, आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से फरमाइश की है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने। आप सभी की फरमाइश पर पेश है अंदाज फिल्म का गीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश कार्यक्रम। अगली फरमाइश छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने की है। जयराज प्लॉट राजकोट से फरमाइश करते हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। आप सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मन की आँखें फिल्म के गीत की। साहिर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश की है अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर और टुक टुक गवाणकर। अगली फरमाइश है गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी, गौरीशंकर केशरी, शंभू केशरी, नया बाजार बक्सर से फरमाइश की है राजेश केशरी, पंकज केशरी, रोहन केशरी ने। नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर,

रिया रीत और ऋषभ राजावत ने। आप सभी ने सुनना चाहा है स्वयंवर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर डोंगर गांव जिला रातना गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। कंवर कॉलोनी बड़वाह से फरमाइश की है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। आप सभी सुनना चाहते हैं दूध का कर्ज फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं अनु मलिक।

दूध का कर्ज फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्वी

अभी आपने पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन राग भाव कौस में सुना। विलंबित और द्रुत तराना तीन ताल में निबद्ध थे। अब आज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे। और BSF

0: के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।